0: Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: सुनीता, तुम्हारे बेटे के मार्क्स काफी इम्प्रूव हुए हैं ना रिसेंटली?
3: हाँ, बस थोड़ा राइट गाइडेंस मिल गया है.
2: सेम टीचर, सेम स्कूल, फिर भी मेरा बेटा स्ट्रगल कर रहा है.
3: डिफरेंस स्कूल का नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का होता है.
4: Introducing Lumity Learning Center, Frisco Prosper or McKinney ISD aligned curriculum that doesn't just match, it exceeds. Personalized math or English plans, certified teachers, continuous feedback, on-demand support aur har bacche ke liye competitive edge. Try Lumity, you see the difference. Kids ages 5 to 13, Coit and Panther Creek in Frisco. Call 972-666-1181. Mention Fun Asia. Get $100 off your first month.
5: Tumne fir card use kiya?
6: Karna pada. Fees due thi aur already late हो चुके हैं पेमेंट्स में.
5: पर मैंने अभी चेक किया, हमारा क्रेडिट स्कोर और गिर गया. कैसे मैनेज होगा सब?
6: मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं.
4: हर घर की यही कहानी, पर सच यही है, क्रेडिट स्कोर अपने आप ठीक नहीं होता. जीनो क्रेडिट रिपेयर हेल्प्स यू चैलेंज इनएक्यूरेट, आउटडेटेड या अनवेरिफाइबल आइटम्स ऑन योर रिपोर्ट. नो अपफ्रंट फीस, फुल ट्रांसपेरेंसी एंड द राइट टू कैंसिल एनी टाइम. कॉल 1-800-400-9468. जीनो क्रेडिट रिपेयर, फिक्स योर स्कोर, फिक्स योर लाइफ. जीनो क्रेडिट रिपेयर डज नॉट गारंटी रिजल्ट्स. यू the right to dispute inaccurate information on your credit report yourself free of charge. Services provided under written contract with a 3-day right to cancel.
7: अरे भाई, वही तो नहीं होता हर बार हर ट्रिप के इतने झंझट.
8: बिकॉज यू डोंट ट्रैवल विद लॉसिन. चाहे शादी के लिए इंडिया जाना हो, दुबई की लग्जरी शॉपिंग या यूरोप की ड्रीमी वेकेशन फोटोज, एक परफेक्ट ट्रिप के पीछे होता है एक परफेक्ट ट्रैवल पार्टनर. लॉसिन ट्रैवल. फॉर नियरली 30 इयर्स लॉसिन ट्रैवल हैज बीन हेल्पिंग फैमिलीज प्लान स्ट्रेस फ्री इंटरनेशनल ट्रिप्स विद द बेस्ट एयरफेयर्स, वेकेशन पैकेजेस, क्रूजेस एंड कस्टमाइज्ड ट्रैवल सॉल्यूशंस. लॉसिन ट्रैवल मेक्स एवरी जर्नी स्मूथ, अफोर्डेबल एंड टेंशन फ्री. कॉल नाउ 214-631-2458 or visit lawsontravel.com.
9: Computer जी का सवाल ये है, business owners को लोन लेना मुश्किल क्यों लगता है? Option A, slow process. Option B, ज्यादा paperwork. Option C, credit score का concern. या option D, loan decline होने का डर.
10: मैं expert lifeline use करना चाहूँगा.
9: Computer जी, SBA loan expert से connect किया जाए.
11: SBA Loan Experts ने business loan process बहुत ही आसान बना दिया है. No tax returns needed to apply और credit पर hard check भी नहीं. Results सिर्फ 10 मिनट में.
0: Business loan options को clarity से समझने के लिए call करें 817-786-3338. 817-786-3338. The SBA Loan Experts. फैसला clarity के साथ.
12: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen, new flavors, new obsession.
13: Attention business owners, what if your everyday expenses could actually make you money? That's right, with Connecting America, you can turn your business expenses into a powerful stream of income via a unique insurance product. If you are looking to boost your bottom line, they got the strategy that works for you. Plus, they help homeowners pay off their mortgage in 10 years or less.
0: Don't wait. Call James at 321-888-7345 today or visit ConnectingAmericaFinancials.com and discover how to turn your daily expenses into income. Connecting America, where smart business owners turn costs into cash.
14: Attention store owners, Ravi's summer kickoff is back June 3rd and June 4th, 9 a.m. to 5 p.m. And this year, it's different. We are turning the warehouse into a full tropical experience with crazy deals you won't find anywhere. New product launches and free gifts all day. Meet vendors, discover your next best sellers and stock up like never before. Same Ravi's, just bigger, bolder and way more fun. Ravi's Import Warehouse, 11029 Harry Hines Boulevard, Building A,
2: Dallas, Texas 75229. Entry requires a valid tax number and tobacco license.
15: Dallas, are you ready for a mini India in one evening? On Sunday, May 31st, 3 p.m. to 9 p.m., join us at the Haggard Park, Plano, near downtown for the Ambuj Basant Mela, powered by Bana. Live performances, raffle prizes, and touch the truck from 4 to 5 p.m. Plus, a pan-India food festival from Litti Choka to Bengali, Marathi, Gujarati, Oriya, South Indian, Punjabi, Sindhi, and so much more. Free entry, free parking, fun for the whole family. Ambuj Basant Mela, powered by Bana. Supported by major Indian non-profit organization in DAW.
16: For booth and sponsorship contact admin@ambuj.us.
17: Hello, how are you all doing today? Kaise hain aap sabhi log? Kyunki ye kaun bola? Yes, that is right. This is me, myself and I. And you're listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. और अभी मैं बोलूंगी आप सबको हैप्पी ईद, ईद मुबारक टू ऑल माय मुस्लिम ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, माय फ्रेंड्स. ये गाना आपके लिए, और जब हम वापस आएंगे गाना सुनने के बाद तो मैं बताऊंगी कि मैं हूँ कौन, क्योंकि आप लोग जो पिछले दो दिनों से मेरा शो सुन रहे हैं आपको तो शायद पता ही चल गया होगा. जिनको नहीं पता चला है उनके लिए मैं दोबारा बोल दूंगी. ऐसा क्या है, चलो, दिस इज मी माई सेल्फ एंड आई एंड नाउ टाटा बाय बाय. तो एंजॉय द सॉन्ग, कम बैक एंड देन वी विल डू अ प्रॉपर इंट्रोडक्शन.

know it. छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है. वी ऑल लव फ्री स्टफ. ओके, तो अगर आपको चाहिए तो स्टिक अराउंड. वो 7:30 बजे के बाद मेरा क्वेश्चन आएगा और तब आप उसको आंसर करना. एंड वी गोना मेक इट अ लिटिल ट्रिकी दिस टाइम, बिकॉज़ यू नो दैट्स हाउ इट शुड बी. यू कैन मेक इट सो फन एंड सो ईजी, नहीं तो सब जीत जाते हैं गिव अवे. थोड़ा तो फाइट करो यार, मतलब फ्री भी चाहिए तुमको और मेहनत भी नहीं करोगे, ऐसे थोड़ी ना चलेगा. तो हम 7:30 बजे के बाद आते हैं एंड देन वी विल आंसर आवर क्वेश्चन. And then you can win this beautiful giveaway by Fun Pizza Kitchen, which is like free pizza and all that. So just come back, okay? Until then, enjoy this next tune.

Hello.

इसी गाने से एक सिंग मुझे याद आ गई जो मुझे बोलनी थी गाने को प्ले करने से पहले, लेकिन मैं कॉल में थी पर मैं अभी बोलती हूँ। पहले मुझे डर लगता था कि लोग क्या कहेंगे, पहले मुझे डर लगता था कि लोग क्या कहेंगे, अब लगता है कि मैं लोग कुछ ना बोल दूँ। कोई कहे कहता रहे, चाहे कुछ भी कहे जमाना, हम अपना करते रहेंगे। क्यों आप गाना?

0: Frisco is growing fast, and the future of our city needs experienced leadership. For more than 40 years, Rod Willhauer has helped build Frisco, creating jobs, supporting local businesses, improving infrastructure, and investing in the community he calls home. Rod believes in safer neighborhoods, smarter development, strong public services, and protecting the family values that makes Frisco special. This election, your vote matters. Vote Rod Willhauer for Frisco Mayor, because the next 4 years will define the next 40 for Frisco.
1: Dude, life में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं फ्रंट पेज पे रहूं।
2: फ्रंट पेज का तो पता नहीं, बट तेरा पेज 3 में होना मेरी गारंटी है।
1: कैसे?
2: पेज 3 ईटरी?
1: नो, नॉट अनदर रेस्टोरेंट अगेन।
0: डूड, इट्स पेज 3। स्टार्ट विद द बार, सिग्नेचर कॉकटेल्स, क्लासिक पोर्स एंड द फूड क्राफ्टेड टू सूट एवरी क्रेविंग, एवरी एपेटाइट।
1: मतलब ग्रेट फूड, ग्रेट ड्रिंक्स एंड ग्रेट कंपनी, यानी कि मैं।
3: पेज 3 ईटरी, ईट, सिप, गॉसिप, रिपीट।
4: सब कुछ साफ रख सकते हो,
5: पर मुझ पे किसी की नजर नहीं जाती, कोई नहीं सोचता मेरे बारे में।
6: क्योंकि ये कौन बोला?
5: ये हम बोल रहे हैं आपके घर का डक्ट, जिसमें है डस्ट, पोलन, एलर्जेंस जैसी चीजें जो आपका कंफर्ट छीन रही हैं। और अगर आप सोचते हो कि मेरा तो घर नया है, मेरा तो साफ ही होगा, तो आप सही नहीं सोच रहे। हैवी कंस्ट्रक्शन डस्ट होती है मुझमें, मुझे भी साफ करना होता है। मेरा काम था बताना, अब बीमार हवा या स्वच्छ साफ हवा, आपको क्या चाहिए?
7: इसीलिए आज ही कॉल करिए डक्ट टाइम को, जो 15 साल से घरों को साफ हवा दे रहा है। कॉल जीतू पटेल 9728772500।
8: दूर रहकर भी देसी रहना आसान नहीं होता, पर जब मिले अपनी कल्चर की खुशबू, अपने खाने का टेस्ट, तो दिल कहता है दिस इज होम। वेलकम टू देसी मंडी लुइसविल, डैलस का सबसे बड़ा देसी ग्रोसरी स्टोर, जहां हर देसी एक रूफ के नीचे। नॉर्थ से साउथ, स्ट्रीट से फेस्टिव, हर टेस्ट, हर कल्चर एक ही जगह। प्योर देसी, फुल मंडी एक्सपीरियंस, अनमैच्ड वैरायटी, अनबिलीवेबल डील्स, ओनली एट देसी मंडी। Desi Mandi, powered by Desi's, loved by Dallas.
9: Tune sunte hi brand click kar gaya na? Just like that. When it comes to taxes, only one name pops up: AG FinTax. This tax season, for a stress-free tax filing, file smart, file easy with Grandhi Tax Pros, an associate of AG FinTax. Saath hi saath, aapka refund maximize karna aur aapka financial future plan karna. That's our commitment. So is baar delay kyun? Call 972-618-8555 or visit agfintax.com. Grandhi Tax Pros, powered by AG FinTax. Plan today, profit tomorrow.
10: Yaar, boss ne fir se daat diya. Traffic alag. और ऊपर से ये स्ट्रेस।
11: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी।
10: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है।
11: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी।
10: ये क्या होता है?
11: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन।
12: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस, सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस, फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नूस किचन। सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कूल चा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस।
13: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
14: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
15: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
16: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं, बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
15: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
17: Please don't say your usual place again. I'm tired of the same food.
18: Excuse me. It's called being loyal.
17: It's called being predictable.
18: Okay then, let me surprise you. Let's go to Neon Cactus in Fairview.
17: And what's so special at Neon Cactus?
18: Went there with my office team last week. Mexican cuisine with global influences. Everything fresh, wonderful flavors, Zabia Halal options, and plenty of great vegetarian choices too.
17: Not bad.
18: Happy hours Monday to Friday, and amazing food and drink deals every day.
17: Okay, this I didn't expect from you.
18: Wait till you experience Neon Cactus. Neon Cactus, Fairview, Mexican cuisine with global influences.
19: If you're ever involved in a car accident, remember these important three tips. First, stay calm. Second, check for injuries and move to a safe place if possible. Third, gather information by taking pictures, exchanging contact information, and insurance details. Always, always file a police report. Remember, never ever admit fault at the scene. Even minor injuries can turn serious, so seek medical attention right away. The law offices of Omar Khwaja specializes in personal injury law, and we are here to help you navigate through the legal process. Call us for a free consultation at 1-833-GET-OMAR or visit our website at attorneyomar.com for your free consultation. We can't wait to hear from you.
20: Hello, hello everyone. We are back and you are listening to Hippie the Hippie on Fun Asia Radio 104.9 FM on my show. An evening in Dallas. I think I should really record that bit. Next time I say that, I probably should play like a recording or something with some music and some guitar and some keys in the background. So it's a little more fun, hai na? But anyways, jab tak I make that thing ready, as promised, this is the time for our giveaway. You know what the giveaway is? It is a gift card to the Fun Pizza Kitchen. Do you guys know about Fun Pizza Kitchen? Okay. I haven't had dinner, so ye bolte bolte mere muh mein bahut sara pani ikattha hone wala hai, but I will try and control my hunger, okay? Are you craving something cheesy with a desi twist? Exactly. Pizza meets desi, you guys. Fun Pizza Kitchen, where flavor meets fire. For all my veggie lovers, try the achari paneer pizza. Ya fir all my non-veggie lovers, try the tandoori chicken pizza. Yum, yum, yum. So good. Anyways, you all know how good that Pizza Kitchen is. They also had, what was that? Jam Lounge last month. Yeah, actually this month only, earlier this month. And I'm sure you guys had your delicious pizzas, cheesy goodness. Oh, so good. Dekho, fir se pani aa raha hai muh mein, bolte bolte. Anyways, time for the question. Okay, this is your chance to win a $10 gift card by answering a simple, mostly simple, yeah, it's not that hard, mostly simple, but also not so simple, question. I'm actually, today, actually before I tell you the question, today is actually the birthday of one of my all-time favorite artists, Stevie Wonder. Yes, who is Stevie Wonder? Yes, he's not an Indian musician, he's not a Bollywood musician, he's not even an Indian indie musician, he is an American musician, and I'm sure you guys have heard him a lot, if you are, which you are living in America, by the way. I'm sure you guys have heard of Stevie Wonder. He's such a legend, you know. The man has contributed so much, not only to American music, but also to Indian music. If you did not know, a lot of the songs that, you know, he wrote have actually been ripped off and been used in Bollywood music. Matlab, Bollywood ne kitne sare gaane Stevie Wonder ji ke gaane थोड़े से कॉपी करके डाल दिए हैं, बट वो हमें सबको पता ही होता है कि हमारे काफ़ी सारे बॉलीवुड कंपोजर्स गाने कॉपी करते हैं या चेंजेस बोरो करते हैं, ऐसे ऐसे करके मेलोडी भी पूरी ऐसे करते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, वो हम उस डिस्कशन पे नहीं जा रहे हैं, काइंड ऑफ उस डिस्कशन पे जा रहे हैं. तो आज जो है स्टीवी वंडर जी का जन्मदिन है, उनका जन्मदिवस है. तो द क्वेश्चन फॉर द फन पिज्जा किचन गिव अवे इज, मैं आपको, आई एम गोना प्ले यू द सॉन्ग विच इज बाय स्टीवी वंडर. ओके, आप उसको, आप उस गाने को सुनिए, उसको सुन के आप मुझे ये बताइए कि वो कौन सा हिंदी गाना है जिसने पूरी तरह से ये गाने को मतलब कॉपी करके पिक्चर में डाल दिया. मुझे वो पिक्चर तो बहुत पसंद थी, आई लव दैट मूवी. ओके, it's like this 90s movie where Salman Khan was still very, very young and he was totally not the, you know, gym bro and the muscle, the macho man that he is right now. He was kind of on the skinnier side and he had more hair, but also he was still very dashing, I have to say. I actually like young Salman Khan better than the older version of Salman Khan, to be honest. But you listen to this song and then you tell me which is that Hindi song which sounds exactly like this Stevie Wonder song, theek hai? And then I'ma put you on air. Bhai, mera question hi nahi, maine gana hi nahi bajaya, call pehle hi aa gayi. Ruko ek second, pehle call dekh lete hai. Main pehle gana baja lu, Mr. Vivek ji, aap pehle gana suniye, fir aap bataiye mere ko, theek hai? Call me back. Okay, let me play the song for you guys.

Exactly, guys. And our winner for the Fun Pizza Kitchen giveaway. मैं आपका नाम पूरी तरह से ले नहीं पाई क्योंकि बैकग्राउंड में बहुत साउंड आ रहा था, लेकिन आप ही जीती हैं. तो आप जरा प्लीज मुझे कृपया करके कॉल बैक करिए सो दैट आई कैन राइट डाउन योर नेम एंड योर इन्फो एंड देन वी कैन ऑल्सो ऑफिशियली अनाउंस दैट यू आर द विनर. हाँ, सो प्लीज कॉल मी बैक एंड प्लीज मेक श्योर दैट द रेडियो इज लाइक वॉल्यूम डाउन इन द बैकग्राउंड, नहीं तो मुझे अपनी आवाज सुनाई देती है एंड देयर इज अ लॉट ऑफ केओस एंड नॉइज. Anyways, guys, the next song that I'm going to play for you is actually really cool. We all have heard of Sona Mahapatra. She's a great, great, great singer. I actually admire her. But, however, trolls on the internet don't seem to think so. Because she came into this news a few... Anyways, you know, I'm getting that call. So, I'll tell you what. Main, aap gaana suniye. Main aake aapko puri story batati hu. But, until then, enjoy.

That was Sona Mahapatra, you guys, with Ajave. मैंने ये गाना बहुत साल पहले सुना था. I was so young. I was like maybe 17 or 18 years old, and I used to. I had a very interesting job. I was a party hostess, like a kid's birthday party hostess, at this fast food chain in India called Nirula's. You know, they used to have these weekend parties. और मेरा काम था टू जस्ट मेक द किड्स प्ले गेम्स एंड काइंड ऑफ मेक श्योर एवरीथिंग इज स्मूथ एंड कम्युनिकेट बिटवीन द क्लाइंट एंड द किचन सो दैट यू नो दे कैन गेट देयर फूड ऑन टाइम एंड ऑल ऑफ दैट बिकॉज दे नीडेड अ प्रीटी फेस टू बी देयर एंड वी लाइक अच्छा चलो बच्चों को गेम्स खिलाते हैं चलो केक काटने में मदद कर देते हैं एंड सो ऑन एंड आई डिड दैट जॉब फॉर आई थिंक 3 years और समथिंग लाइक दैट क्योंकि वो सिर्फ वीकेंड का जॉब था कई बार वीकेंड पे दो दो पार्टीज होती थी you know one afternoon party one evening party and I got to eat a lot of yummy cake a lot of french fries and a lot of pizza it was like the best job and sometimes I even got to take some home because I you know the manager was like okay you know Ippy you're kind of nice so yes you can take some pizza home okay and Nirula's actually it's really interesting because Nirula's pata kya tha I mean it was this big fast food chain in Delhi before like any of these international food chains had arrived before KFC, before McDonald's, before Pizza Hut. So they were like an Indian food chain and they still have, by the way, some of the best ice creams. Like it was like kind of like Baskin and Robbins, but you know, it was so yummy. And they had this one flavor called blackcurrant, which is of course not a new flavor. I'm sure every ice cream chain has that, but it was like this beautiful, vibrant, purple colored ice cream. And that was literally my favorite. I was like, मुझे तो purple ice cream ही खानी है because my goal in life to be different from everyone. So anyways, so basically when I was working one of the parties, they had this like TV in the background and ये Sona Mahapatra had just released her song and it was playing there all the time. So I was like, यार ये कौन है? ये गाना तो मुझे पसंद है. I kind of like the song and I'm talking about 2005 or something. It was like so long ago. Anyways, but what I was telling you guys earlier was ki what was the controversy? Why did she come back in the news? She's done a lot of great songs. She's done like a lot of Bollywood tunes also. Wo gaana nahi suna aapne? Bedardi Raja and all of these other songs. So unhone bahut sara gaana gaya. Of course, her husband is Ram Sampath, who has composed a lot of, you know, Bollywood tunes and stuff. He has given the music for a lot of Bollywood movies. But why did she come back in the news? There is this music-based podcast. I'm not remembering the name of the podcast right now, but they basically interview, like, really famous musicians who are current and, you know, very experts on music and everything to give them information about अच्छा ये कौन सा मतलब सुर कैसे लगाना है ताल कैसे and all that तो उनका interview चल रहा था and something she was talking about राग यमन तो जिन्होंने इंडियन क्लासिकल किया है जैसे कि मैंने और जिन्होंने नहीं किया है उनके लिए भी मैं बोल देती हूँ हम सबको सारे गामा पता है सारे गामा पता नहीं सा ठीक है यमन में क्या होता है हम लोग लगाते हैं तीव्र म ठीक है तीव्र म इज बेसिकली अ शार्प 4 और अ शार्प 11 विच काइंड ऑफ साउंड्स लाइक सारे गामा ऐसे सुर होता है उसका लेकिन अब वो जो थी ना इंटरव्यू में मे बी शी गॉट नर्वस मे बी उन्होंने अपना यमन बहुत दिनों से रियाज नहीं किया तो इंस्टेड ऑफ लगाने की तीव्र म की जगह ना उन्होंने कोमल ग लगा दिया और इतनी ट्रोल हुई ना वो उसके बाद ऑल ओवर द इंटरनेट ऑल दीज स्मॉल म्यूजिशियंस हु मेक रील्स ऑन द इंटरनेट एंड पोस्ट देयर कवर वीडियोस एंड ब्ला ब्ला एंड दे वर ऑल लाइक दिस इज एन अवार्ड विनिंग सिंगर फ्रॉम इंडिया हु डजंट नो द डिफरेंस बिटवीन कोमल ग एंड तीव्र म उसमें तो पूरे चार सुरों का फर्क है कोमल ग के बाद आता है रेगुलर ग शुद्ध ग आता है उसके बाद म आता है चार नहीं तीन एक्चुअली उसके बाद म आता है उसके बाद तीव्र म आता है तो उन्होंने ये कैसे गा दिया एंड मतलब आई मीन फॉर समबडी हु इज एज फेमस एज सोना महापात्रा आई फील लाइक She was like heartbroken because aapke kaam ko leke koi itna, you know, karta hai ki bhai tumhe aise kaise, you know, how can you be famous and call yourself a famous singer when you can't tell the basic difference between a teevra ma and komal ga. Aur ye jo sur hai na, वैसे now that I'm saying all this to my non-music friends,
टू माई नॉन म्यूजिक फ्रेंड्स जिन्होंने कभी गाना नहीं सीखा है वगैरह, आपको लग रहा होगा हाई ये तो बड़ा टेक्निकल है, बट गाइज अगर आपने थोड़ा भी म्यूजिक सीखा है तो अगर आप इंडियन क्लासिकल में जाओगे सबसे पहली चीज़ आपको यही सिखाते हैं, सारे गामा के अलावा एक यमन राग, पहला राग आपको जिंदगी में यमन ही सिखाएंगे, और दूसरा आपको सिखाएंगे काफ़ी या भीमपलासी जिसमें कोमल गा लगता है, ठीक है, एंड इट्स काइंड ऑफ अप्लाइड इन वेस्टर्न म्यूजिक ऑल्सो, इट्स देयर इन ऑल द म्यूजिक कल्चर्स, ठीक है, क्योंकि मैंने दोनों सीखा हुआ है तो मुझे पता है. एनीवेज बट दैट बीइंग सेड शी वाज रियली इन द न्यूज एंड पीपल रियली क्रिटिसाइज्ड हर एंड शी वाज ऑलमोस्ट टियरी आइड. फिर उन्होंने मतलब एक पब्लिक अपॉलोजी करी कि कोई बात नहीं हमसे कई बार गड़बड़ हो जाती है, पंडित बड़े गुलाम अली साहब ने भी कहा है अगर आपका भाव सही है तो सुर की इधर उधर गलती चलती रहती है, इट्स ओके. मुझे आप लोगों से ये सवाल करना है कि अगर आपकी फीलिंग है, भाव है, तो सुर की गलती चलेगी? डू यू थिंक ऑटो ट्यून एंड दिस बेसिक सुर की गलती इज एक्सेप्टेबल for somebody who is as famous and making so much money by singing Bollywood tunes and everything, do you think it's fair to people like them and then, you know, minting off of it? Or hame dusre singers ko chance dena chahiye who have been doing this for a long, long, long, long time and do not get the break because maybe they're not married to a famous composer or something like that. What do you think? You know, if you have an opinion on that, call me. We'll put you on air. आपको लगता है भाव ज़्यादा ज़रूरी है कि सुर ज़्यादा ज़रूरी है? आप मुझे कॉल करिए, बताइए, एंड वी विल हैव अ डिस्कशन. अंटिल देन आप ये गाना एंजॉय करिए, ये हमारे डांसर फ्रेंड्स के लिए है, ये सुर फ्रेंड्स के लिए नहीं है. वैसे सुर फ्रेंड्स के लिए भी हो सकता है, बट अगर आप पैरों में घुंघरू डाल रहे हैं तो ये घुंघरू के साथ डांस करिए ऑन दिस घुंघरू ट्यून.

0: एनीवेज लेट्स चेंज द टॉपिक. आई गेस किसी के पास ओपिनियंस नहीं है सूर्या भाव को लेकर. कोई बात नहीं, आपके पास आई एम श्योर और कुछ और लेकर ओपिनियंस होंगे तो हम आएंगे. लेकिन लेकिन जाने से पहले आई एम गोना शेयर विद यू समथिंग रियली फनी आई सॉ ऑन द इंटरनेट टुडे. आई वाज जस्ट यू नो डूम स्क्रोलिंग एज वी ऑल डू एंड देन आई केम अक्रॉस दिस रियली फनी वीडियो ऑफ दिस काउ. ठीक है, आई एम नॉट किडिंग, इट इज रियली अबाउट अ काउ. इट्स अबाउट गैया, गाय माता हमारी. गाय हमारी माता है लेकिन हमें सब कुछ आता है. ठीक है, हम वो नहीं बोलेंगे हमें कुछ नहीं आता है, हमें सब कुछ आता है यहाँ पे. ठीक है, क्योंकि हमारे पास चैट जीपीटी है, तो अगर कुछ नहीं भी आता है तो हम उसको चैट जीपीटी में डाल के हम सर्च कर सकते हैं, है ना. तो दिस थिंग वॉज सो फनी. आई सॉ दिस ऑन दिस इंस्टाग्राम पेज कॉल द जगरनॉट एंड देर रियली फनी. दे put stories from South Asia, all over Southeast, South Asia, not Southeast, South Asia, okay? So there was this video of this cow that looked exactly like Donald Trump. I mean the hair, you guys, the orange hair and the middle parting and everything. So people liked that cow so much that Eid ke afsar par he was spared from this sacrifice. Anyways, we have a caller. Before we go on a break, let's put this caller online. Hi, you're on air. Thank you for calling.
1: Hello. Good evening. This is Madhu.
0: Hi, Madhu. Thanks for calling.
1: I just heard part of your,
0: my question earlier.
1: Question on Bhav and
0: Bhav
1: Sangeet
0: and Sur.
1: And all that.
0: Yes.
1: Bhav and Sur, right?
0: Yes.
1: So, I mean, let me first say that I mean, we are pretty much dust compared to some of these geniuses and everything.
0: Yeah.
1: So I don't consider myself as anything at all. Mm-hmm. Just a honest comment.
0: Can I pause you for 1 second? We might, the call might interrupt and we might go into a commercial. But stay on the line,
1: okay?
0: Because when the commercial comes back, then I'm going to put you back on air, okay? So, because we need hear you, okay? So,
1: sure, yeah,
0: no, but you can keep going until then. We have about 30 seconds until the commercial. So, I just wanted to make sure you are aware of that.
1: So basically, my point is this. From a normal, person who is listening to any kind of classical music, which is wonderful as it is,
0: mm-hmm.
1: right? So, from a person who is just a listener,
0: yeah.
1: right? The most important thing for a listener is if the listener is happy about the song that is being sung.
0: That is true.
1: I mean,
0: so bhav.
1: Appreciates the song, right?
0: Yes.
1: So,
2: this is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Official tax and finance partner, AG Fintax. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
3: हीरे मोती मैं ना चाहूं.
4: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर. तन्मय ज्वेलर्स इन अविंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर. चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट. Luxury, brilliance, celebration. Tanmay Jewelers in Irving.
5: Attention store owners, Ravi's summer kickoff is back. June 3rd and June 4th, 9 a.m. to 5 p.m. And this year, it's different. We are turning the warehouse into a full tropical experience with crazy deals you won't find anywhere. New product launches and free gifts all day. Meet vendors, discover your next best sellers and stock up like never before. Same Ravi's, just bigger, bolder and way more fun. Ravi's Import Warehouse, 11029 Harry Hines Boulevard, Building A, Dallas, Texas 75229. Entry requires a valid tax number and tobacco license.
6: Attention passengers, flight Punjab 001 to Chandigarh Wale Irving is now boarding. Destination, real Punjabi flavor.
7: Arey yaar, Dallas mein Punjab?
8: Bilkul, Chandigarh Wale, jahan butter chicken bhi asli aur naan bhi tandoor se garma garam. From buttery curries and fresh naan to street-style Punjabi favorites, every bite takes you straight to Punjab. Shadi ho, party ho, ya corporate event, Chandigarh Wale brings live Punjabi catering straight to your celebration. Proudly awarded Best of Dallas for Indian Food by D Magazine. Skip the flight and take the shortcut to Punjab. Chandigarh Wale, Irving, where Dallas meets Punjab.
9: ओए होए भाई, एक और नई गाड़ी, सच बता लॉटरी लगी है क्या?
10: लॉटरी नहीं यार, अच्छी क्रेडिट थी। जीरो डाउन पे गाड़ी ली और सीधे के टू ड्राइव पे लिस्ट कर दी।
9: के टू ड्राइव मतलब
10: गाड़ी खुद पैसे कमा रही है, लिस्टिंग से लेके बुकिंग्स, DFW और लव फील्ड एयरपोर्ट पे ड्रॉप ऑफ और पिकअप, मेंटेनेंस सब के टू ड्राइव हैंडल करता है।
9: वाह, मैं भी अपनी पुरानी गाड़ी लिस्ट करा सकता हूँ?
10: 100%
11: नई हो या पुरानी, लिस्ट योर कार एट के टू ड्राइव एंड लेट योर कार अर्न यू मनी। विजिट K2Drive.com और कॉल 214-814-0402 Kato Drive, Dallas's smartest fleet partner.
12: Craving delicious Indo-Chinese and North Indian food? Red Hot Chili Pepper is the place to go. With locations in Frisco, McKinney, Richardson and now our newest location in Allen at Waters and 121. Whether you're dining in, taking out or catering, Red Hot Chili Pepper is Dallas's number one choice for Indo-Chinese and North Indian cuisine.
13: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
14: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
15: Aaja meri gaadi mein
16: बैठ जाऊं? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था।
17: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था।
16: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है।
18: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव
19: इन प्लेनो।
18: एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग और हाँ, कंपटीटर कोर्ट मैच भी। कॉल 4692983870। पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
15: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
20: बॉलीवुड का अल्टीमेट हार्टथ्रॉब अर्जुन रामपाल इज कमिंग टू डैलस विद अ स्पेशल डीजे परफॉर्मेंस। Get ready for the Rampage Tour on May 31st at Club Vivo Dallas. Doors open at 9 p.m. Strictly for 21 plus. For tickets and table reservations, contact Isha at 469-560-5560.
0: Hello, Dallas. We are back and you're listening to me, myself and I, AP the Hippie, the OG baddie, the OG Delhi girl from... Delhi, जो मैं एक्चुअली बोल चुकी हूँ, नाउ इन डैलस ऑफ कोर्स। दिल्ली टू डैलस का मेरा सफ़र कैसा रहा? काफ़ी थकान भरा रहा, बट कोई बात नहीं, अब उसके हम बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे थे कुछ सुर और भाव के बारे में, यू नो, वेदर इट्स सुर इम्पॉर्टेंट और वेदर इट्स भाव इम्पॉर्टेंट। एक्चुअली हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन आई एम गोना सर्कल बैक टू दैट बिकॉज जस्ट बिफोर वी वेंट ऑन द ब्रेक वी हैड अ कॉल फ्रॉम मिस्टर मधु who was calling to, because, you know, I asked the question, ki what is more important as a listener? What do you think is more important? Sur ki knowledge ya bhav, ya feeling? And one of the things that he said, which actually totally makes sense, is how it makes the listener feel. As long as the listener is happy, it does not matter to the listener ki agar usme sur sahi lage ya na lage, it does not matter. जब कॉन्सर्ट्स देखने जाते हैं लोग, जब ऑडियंस कॉन्सर्ट देखने जाती है, कोई बड़ा फेमस सिंगर आ रहा है या नॉट सो फेमस सिंगर भी आ रहा है एंड ऑल दैट, तो हम लोग वो छोटी छोटी गलतियां सबसे होती हैं वो हम इग्नोर कर देते हैं, बिकॉज एज लॉन्ग एज यू कम आउट ऑफ द कॉन्सर्ट फीलिंग रियली हैप्पी, रियली एक्साइटेड एंड इट गिव्स यू जॉय बेसिकली, इट डज नॉट मैटर वेदर आपने कोमल का लगाया या तीव्रमा लगाया या शुद्धमा लगाया या शुद्धगा लगाया या फिर दादरा में आपने गाया कि 4/4 की बीट थी या 3/4 की बीट थी, वेदर वाज अ वॉल्स और व्हाटएवर, इट डज नॉट मैटर। ओके, व्हाट मैटर्स इज how the audience feels by the end of it. Well, I would say yes, that in my opinion, yes, that is also very, very important, especially when you're doing concerts, right? Because concerts is supposed to be enjoyable, it's entertainment, it's fun. However, However, I'm also going to say a however in this, which is this, that this particular platform, jiske baare mein hum abhi baat kar rahe the, where Miss Sona Mahapatra was on, it's actually a musician's podcast, and it was not a concert. So she was actually giving her opinions as a singing expert. And in that case, the only people who basically watch a singing podcast like that, it's pretty technical, you know. I mean, somebody like a general audience is not going to sit through, unless they are really interested in singing and they really want to pick it up. They're not going to sit and watch a sur ke baare mein podcast. I mean, ye wala jo podcast tha, wahan pe sur ke baare mein hi charcha ho rahi thi. Main cheez usi ki thi. तो उसमें तो अगर आपने ये ऐसा गड़बड़ कर दिया तो इट्स काइंड ऑफ एम्बैरेसिंग यू नो एंड दीज काइंड ऑफ थिंग्स स्टे फॉर अ लॉन्ग टाइम ऑन द इंटरनेट हाउएवर व्हाट शी सेड आफ्टर इट वाज प्रीटी हार्ड वार्मिंग क्योंकि मतलब नर्वस सभी हो जाते हैं यार अगर यूर एट सच अ बिग पॉडकास्ट एंड देन यू नो यू आर सराउंडेड बाय ऑल सिंगर्स एंड एवरीथिंग मतलब नर्वस होके सुर की गड़बड़ ना सबसे होती है एंड आई नो दैट पर्सनली बिकॉज आई एम अ सिंगर माई सेल्फ I have been doing this for the last, I don't know, 30 years of my life at this point. And, you know, I actually came to Dallas just to get my education in jazz music. And uske pehle maine 8 saal Hindustani classicals kiya hua tha India mein. And I had this band. We toured all over India, you know, Mumbai, Delhi, Bangalore, wagaira, wagaira. We even got the opportunity to go to China and do a concert there. Anyways, so when I got the opportunity to move to Dallas to come and study at UNT, which is one of the best jazz schools in the whole country, actually the whole world, then I was like, "Haan bhai, yahan to jana padega yaar. Yahan pe to matlab Nora Jones ne padhai kari hai, to main bhi jaungi yahan pe padhai karne." Anyways, so because I would consider myself as an expert, so for me it was a little bit shocking ki bhai aapko तीव्र म में और कोमल ग में फर्क नहीं पड़ा ये कैसे हो सकता है यू नो आई मीन दैट्स काइंड ऑफ समथिंग वेरी बेसिक लाइक अ फर्स्ट ईयर स्टूडेंट वुड नो यू नो फर्स्ट ईयर सिंगिंग स्टूडेंट वुड नो एनीवेज दैट बीइंग सेड आई आल्सो डू अंडरस्टैंड दैट व्हेन यू आर सराउंडेड बाय सो मेनी एक्सपर्ट्स आई मीन मोर मिस्टेक्स हैपन बिकॉज इट्स सो ओवरवेलमिंग Given my level of experience and expertise, you are not going to believe it, guys. So we used to have like regular performances every semester at UNT. And all of my peers, all of my classmates and my teachers, they are all like the best of the best, okay? So when I moved to UNT, I was so nervous. Even though I had performed all over India and I had gone to China and played it in front of like 5,000 people and everything, I even, you know, performed at the Mahindra Blues Festival, which is Asia's largest blues festival. I mean, you guys, that was a big audience. And I did not get scared on that stage. But every time I had to perform in front of my, you know, 30 classmates or like 30 people who were in my program. And then every time I had to perform there, I was like, oh my God. I'm going to be so horrible. It's going to be so disastrous. I always felt underprepared. And it was simply because I knew everyone over there is the best of the best. And, you know, this fear of being judged all the time, you know, that fear kind of creeps in when you know that everyone who's around you is the best. So I do understand Ms. Mahapatra. Maybe her mistake was not intentional. Maybe she knew her sur. But kabhi kabhar ho jati yaar. I mean, it's pretty overwhelming when you're sitting with so many experts and on an expert panel. Sometimes we mess up and that's okay. Anyways, that being said, let's change the topic a little bit, okay? Before going into the break, I was also talking about the guy. And this guy, you are not going to believe this. This guy, aaj Eid ka mauka hai. Toh kuch cultures mein seviyan khate hain. Kuch cultures mein hum

अगर आपको नहीं पता वो कौन सा गाना था, उसका नाम था गैया कहाँ, फ्रॉम द मूवी होली काउ, एंड इट फीचर्स नवाजुद्दीन सिद्दीकी, संजय मिश्रा एंड तिग्मांशु धूलिया. ओके, आई थिंक आई हैव सीन दिस मूवी जिसमें उस बंदे की गाय गायब हो जाती है एंड द होल स्टोरी. यू नो आई लाइक दीज ऑफ बीट बॉलीवुड मूवीज, ये थोड़ी ना अनपॉपुलर सी होती है लेकिन उनकी स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग होती है. गाय खो जाना इंडिया में तो भाई बहुत बड़ी बात है, मेरी गाय गायब हो गई, मतलब यू नो तभी वो उस पर स्टैम्प वगैरह करके रखते हैं ताकि गाय गायब ना हो. एनीवेज, हम गायों के बारे में बात नहीं करेंगे. हम बात करेंगे बहुत ही मज़ेदार चीज़ है, तो अभी हम थोड़ी सी अपडेट्स के बारे में बात करेंगे, व्हाट्स हैपनिंग इन डैलस एंड अराउंड. बट आफ्टर दैट फ्रॉम 8:30 we're going to have this really fun segment where we are going to talk about love and relationships and PR and the dating culture here in Dallas, because I have first-hand experience of that and I'm telling you, it is not fun, you guys. Agar aapko koi mil gaya hai abhi tak, koi mil gaya, then very good, congratulations. But agar aapko nahi mila hai, to all the best. Mere ko bhi bol dena all the best, theek hai? Because I'm telling you, it is not easy, okay? But that being said, that comes after 8:30 and we're going to do that all the way till 10 o'clock, till the end of my show. But until then, I today want

0: ले जाना।
1: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं। 13 साल तक टेक्सस प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट, और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइज़रवे लोकेशन पर। लुनॉक्सी मेडिकल फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य, एडल्ट्स और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे। लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर ओपन 7 डेज अ वीक, 8 AM to 8 PM, वॉक इन एनी टाइम। 9191 काइज़रवे स्वीट 205 फ्रिस्को।
2: देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती, उनके लेवल्स होते हैं। लेवल 1 मिक्स वेज पकोड़ा, लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत। लेवल 2 मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़ा कंफर्ट। लेवल 3 अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना, फुल पंजाबी मोड ऑन, फुल्ली लोडेड। और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड, नो कॉम्प्रोमाइजेस।
1: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू। विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड PGBT। तंदूरी फ्लेम नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स। क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे।
3: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर।
4: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
1: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
2: इतना सब और प्राइस?
1: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
5: achievements deserve unforgettable celebrations. Host your kids' graduation party at the Flavor Lounge in Frisco, where great food meets great memories. And if you want to host the party at your place, no worries. You can also order for catering services only. Fresh Tray Catering, custom menus for small or large gatherings. Everything in perfect style. Call now 469-712-3591 or visit theflavorlounge.com. The Flavor Lounge. You celebrate. Flavor hum sambhal lenge.
6: Tune sunte hi brand click kar gaya na? Just like that. When it comes to taxes, only one name pops up: AG FinTax. This tax season, for a stress-free tax filing, file smart, file easy with Grandhi Tax Pros, an associate of AG FinTax. Saath hi saath, aapka refund maximize karna aur aapka financial future plan karna. That's our commitment. So is baar delay kyun? Call 972-618-8555 or visit agfintax.com. Grandhi Tax Pros, powered by AG FinTax. Plan today, profit tomorrow.
7: Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
8: Calculating. Rerouting.
7: अरे ये क्या, मुझे मेरे वाले ग्रोसरी स्टोर में जाना है।
8: लोकेशन अपग्रेडेड, नाउ हेडिंग टू इंडिया बाजार फोर्ट वर्थ।
7: क्यों?
8: क्योंकि फोर्ट वर्थ केलर, हैसलेट और हर्स्ट के स्मार्ट लोग जानते हैं। डेली ग्रोसरीज हो या पूजा एसेंशियल्स, ऑथेंटिक इंडियन प्रोडक्ट्स और घर की हर जरूरत, फाइंड एवरीथिंग देसी एट इंडिया बाजार इन फोर्ट वर्थ।
7: अच्छा तो सीधा वही ले चलो,
9: इंडिया बाजार एट 5152 क्वाड्रेंट वे फोर्ट वर्थ। स्विच द रूट,
8: योर न्यू डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड।
10: कभी कभी जिंदगी में कितनी भी कोशिश करो, बस सब अटक सा जाता है। पर दिक्कत आपके इंजन में नहीं, आपकी एनर्जी में है, और उसका एक ही समाधान, कालीपुत्र मास्टर जोशी। पीढ़ियों के अनुभव के साथ मास्टर जोशी जी पामिस्ट्री, हॉरोस्कोप रीडिंग, वास्तु और ग्रह शांति के विशेषज्ञ हैं। प्रेम, धन, आरोग्य, कोर्ट के मामले और बुरी नजर, हर समस्या का समाधान यहां मिलता है। साथ ही विवाह और गृह प्रवेश भी संपन्न कराते हैं। आज ही संपर्क कीजिए कालीपुत्र मास्टर जोशी जी से 2346-4611 और विजिट masterjoshiram.com। अपनी जिंदगी में शांति और समृद्धि वापस लाइए।
11: एस्ट्रोलॉजी रीडिंग्स फॉर गाइडेंस ऑन योर रिसर्च में वेद।
12: अरे भाई वही तो नहीं होता, हर बार हर ट्रिप के इतने झंझट।
13: बिकॉज यू डोंट ट्रैवल विद लॉसिन। चाहे शादी के लिए इंडिया जाना हो, दुबई की लग्जरी शॉपिंग या यूरोप की ड्रीमी वेकेशन फोटोज, एक परफेक्ट ट्रिप के पीछे होता है एक परफेक्ट ट्रैवल पार्टनर, लॉसिन ट्रैवल। फॉर नियरली 30 इयर्स लॉसिन ट्रैवल हैज बीन हेल्पिंग फैमिलीज प्लान स्ट्रेस फ्री इंटरनेशनल ट्रिप्स विद द बेस्ट एयरफेयर्स, वेकेशन पैकेजेस, क्रूजेस एंड कस्टमाइज्ड ट्रैवल सॉल्यूशंस। लॉसिन ट्रैवल मेक्स एवरी जर्नी स्मूथ, अफोर्डेबल एंड टेंशन फ्री। कॉल नाउ 214-631-2458 or visit lawsontravel.com.
14: Chicken banana. Chicken banana?
15: Bro, banana nahi, banana. Matlab, make the chicken right.
9: That's exactly what happens at Sal's Nashville Hot Chicken. They don't just make it, they make it unforgettable. Fresh ingredients, bold flavors, jumbo chicken tenders, Nashville sandwiches that actually hit. Located in Plano and Richardson, Sal's Nashville Hot Chicken, we fix hangry.
0: Hi, I'm Abhishek Bachchan and you're listening to Funasia Radio. Thank you all the listeners for always being there watching our films. Thank you Funasia Radio for spreading the word.
15: Hello and we are back. And who am I? Bole to kaun bola ye? This is Ippy the Hippie, the newest baddie on Funasia Radio 104.9 FM. And I'm going to be here har Monday se Thursday tak, har hafte, jab tak koi aur nahi aa jata. Matlab, mujhe nahi pata koi aur aayega ki nahi. But abhi ke liye to main hi hoon, to aapko meri awaaz jhelni padegi. And I will be here every Monday to Thursday from 7 to 10 p.m. on my show. This is called An Evening in Dallas. वैसे जिन्होंने पहले पूछा था या नहीं भी पूछा था, मैं कौन हूँ, I am actually a full-time musician and I have this like beautiful band and we play like really really awesome music, live music, not with a karaoke track, you guys, live music with real musicians and it is called the Dallas Bollywood Project. और अगर आपको हमें hire करना है for all your events and stuff, please do give me a call and then we'll let us entertain you and play some incredible, incredible songs. Anyways, हमारा नया segment, not नया, sorry, हमारा next segment जो है, it is for grown-ups, okay? Because we are going to be talking about dating life and dating apps and single people stories and first date ics and lots of different things. तो अगर आप बच्चे हैं या फिर अगर आप पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों के साथ सुन रहे हैं एंड इफ यू थिंक इट माइट बी टू स्कैंडलस फॉर योर चिल्ड्रन, वेल दिस इज द टाइम. 8:30 बज चुके हैं, उनके सोने का टाइम हो चुका है, वह ना. तो अरे और अगर आई मीन वैसे उतना भी कुछ खराब नहीं बोलूंगी, दे हैव टू बी अवेयर ऑफ व्हाट्स हैपनिंग इन द रियल वर्ल्ड. तो अगर इफ यू आर इंटरेस्टेड देन प्लीज स्टिक अराउंड. और अगर नहीं आपको लगता है कि हमारे बच्चों के कान खराब हो जाएंगे, तो भाई दिस इज द टाइम वेयर यू नो यू शुड मूव ऑन बिकॉज दिस इज माई segment. I'm the love guru. What makes me the love guru? Well, I have navigated this field for a long time and I'm still kind of navigating it. So, isiliye hum apni experience se advice share kar rahe hain. Aap bhi apni experience se apne advice share kariye. Theek hai? Aur agar aapko koi sawal hai ki koi bandi hai jo aapke dil mein guitar baja rahi hai, आपके दिल को धक धक धक धक कर रही है और आपको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे इसको अप्रोच करें, या फिर जैसे कुछ दिनों पहले हमारे पास एक मिस्टर भाटिया की स्टोरी आई थी जो फाइनली आई थिंक करीबन 15 साल के बाद दोबारा किक स्टार्ट हो गई है, गियर में दोबारा आ गई है, क्योंकि 15 साल पहले जब उनकी स्टोरी थी वो हाई स्कूल में ख़त्म हो गई थी लेकिन दोबारा से वो शुरू होने वाली है. तो हमने उनको ऑल द बेस्ट शेस्ट बोला, हमने बोला भाई जाओ, गो गेट दैट गर्ल मैन. ओके, तो अगर वैसी भी कोई स्टोरीज है ज़रूर आके शेयर करिए. ओके, एंड देन वी डोंट हैव टू पुट यू ऑन एयर, यू कैन टेल मी, I will listen to it in secret and then we can share it with the world and we'll change your name also. If you are a little self-conscious like that, ki nahi bhai, bahut embarrassing ho jayega, hum radio pe nahi bolenge, bhai, kisi ko nahi pata kaun hai aap, aapki shakal to dikh nahi rahi hai, to bol do yaar, kya farak padta hai, naam mat batana, hum aapne apne aap ko Mr. X bana dena ya Mr. Big bana dena, hum aapki girlfriend ko bana denge Carrie and then we will make another story, okay? Anyways, this part of the show is brought to you by Texas Primary Care. For 13 years, Texas Primary Care Clinic has proudly cared for our community, now growing with a brand new name and a second Frisco location. Introducing Lenoxy Medical, founded by Dr. Mandeep Acharya. Lenoxy Medical brings primary care, urgent care, in-house lab testing, x-rays, CT scans, cardiac diagnostics, oh my God, so many things, and Himalayan Med Spa services all under one roof. Stop. Really? That's so cool, right? Open 7 days a week from 8 a.m. to 8 p.m. 12 hours, you guys. Kabhi to time nikal ke jao. Walk in anytime. No appointment needed. Anyways, that being said, this is the time for Love Guru. Da da da da da. I should play some background music over here, but it's okay. Usme time lega, to hum usko bhi skip karenge. Next week se wo try karenge, theek hai? Today we are talking about some of the weirdest, absolutely ridiculous, crazy, wild, and weirdest first date ics. Matlab first date pe aapko koi aisi experience hui hai. Which basically just threw you off completely off your game. And then you're like, bro, I don't want to see this person ever again in my life. Kuch bhi ho jaye zindagi mein, main is person ke saath na coffee piyungi, na dinner karunga ya karungi, jo bhi hai, kuch bhi ho jaye, mereko baat bhi nahi karni, block karke, delete number, absolutely. Okay? Come on, tell me. You can call me at 972-235-5555. Okay, I found this like really incredible Reddit thread where I found all this, so I have to share it with you guys. If you relate to it, great. If not, that's okay. Sometimes, you know, when you're swiping on the dating apps, because you know the world has become like this, ki we don't meet people organically anymore. For someone like me who is behind a microphone or behind a screen, okay, for 3 hours of this prime time evening, okay, jab log, you know, bahar jaate hain, they're going to the bars, you know, hanging out with their friends or whatever, to meet new people, I am sitting here entertaining you guys, okay? Toh mujhe toh aise koi log milte nahi hai. Dusri baat, my other job, which is to be an entertainer, and I also teach, by the way, which I work with children most of all. I teach music, I play guitar, piano, I play a little drums also. And then I sing. So I do, basically I wear a lot of hats, okay? And I'm pretty good at it. Anyways, this is not my self-promotion. So I'm just saying ki because I work in these distinct fields, the only people I actually get to interact with on a regular basis are either children or parents of children, okay? Or I get to be like a performer and people are already overwhelmed ki there's a person standing on stage and singing. They don't want to approach that because it's a little overwhelming, you know. I mean, I get it. Or I'm behind the radio, so I don't really get to meet a lot of people, okay? So when it's someone like me, and I know a lot of people here are overworking, basically everybody's, you know, spending hours and hours on their job and everything, then you are basically forced to swipe left and right because there is no other way to meet people of your age. Ya to aap kisi ko apne office mein date kar lo, which nowadays is kind of frowned upon, or you meet someone in college which you must have met a long time ago. Ya fir, I don't know, where are you guys even meeting people? Anyway, so people are basically forced to go on dating apps because there is literally no other option. I mean, arranged marriage kya tha? That was purane zamane ka dating app. Bas aapke parents aapka kara dete the dating app pe swipe. Ab yahan pe aap khud kar rahe ho swipe, you know. Jeevan Sathi, Shaadi.com, pata nahi kitne saalon se chal raha hai. 10-20 saalon se chal raha hai. Wo kuch nayi baat hai nahi. Yahan pe bhi online dating bahut saalon se chal raha hai. You know, 90s ke zamane se chal raha hai. Apps ka zamana to abhi aaya hai, where it's become a little more open, but people have been using this for a long time. So anyways, these are some of the weirdest first date ics. I came across this thread on Reddit, okay? So, this guy, he writes, okay, I met this girl on a first date. And on the first date, look at the entitlement, you guys, okay? Like, just listen. She asked for $500 for rent. Oh my God, on a first date? She just said, give me $500 for rent money. And I mean, I don't know what that sounds like, but it sounds kind of wrong. It sounds wrong in a lot of places. Aur kai baar hum na samajh nahi aate hain, ek hot si ladki ki photo dekhte hain dating app pe, to hame lagta hai, wow, this girl is interested in me, wow. To kai baar ye bhi sochna padta hai aapko ki why is this person interested in me? Matlab usne mere andar kya dekh liya? Maybe shayad usne aapka wallet imagine kar liya hoga apne dimag mein ki aap unko $500 aisi slip kar doge niche se, to uska fayda ho jayega. And this next one more. This is not from the Reddit thread, by the way. This is one of my guy friends. Uska naam nahi main bolungi. He's a Bengali dude. But he actually shared this story with me. And I have to tell you, I was shocked to my core, okay? So he met this girl on a dating app. She was not Indian. He's Bengali, he's Indian. And she was not Indian. ठीक है? Dallas की बात है. And then they swiped and they met for drinks at a bar. And then they were like, okay, I mean, the chemistry was nice. They were hanging out, blah, blah. And then, you know, dheere dheere raat hoti gayi. And one thing led to another. So this girl said, do you want to come to my house? And so he said, sure. So this girl took this guy home, apne ghar le gayi. And then he realized ki dusre kamre mein to ladki ki mummy hai. तो मैंने मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि व्हाट व्हाई इज शी कॉलिंग यू टू हर हाउस व्हेन हर मॉम इज इन द अदर रूम दैट इज सो रॉन्ग एंड ही इज लाइक आई डोंट नो आई डिडंट रियलाइज फिर उसकी मम्मी ने बोला मैं तुम्हें कुछ खाने के लिए पैक बना के देती हूँ तो मैंने बोला अच्छा मे बी उसके इंटेंशंस काफ़ी क्लीन होंगे ऐसे नहीं होगा ठीक है तो खाना वाना खाया उसने कहता हाँ ठीक है और वो लड़की जो थी हिस्पैनिक लड़की थी तो उसने बंदे ने खाना वाना खाया खा पी के उसके बाद मम्मी कहती है ओके आई एम गोइंग टू स्लीप नाउ ठीक है मम्मी चली गई अपने कमरे में खाने पीने एंड देन दिस गर्ल एंड दिस गाय आर इन द लिविंग रूम एंड दे आर कनूडलिंग यू नो वन थिंग इज लीडिंग टू अनदर ब्ला ब्ला ब्ला ऐसे ऐसे करते करते रात खत्म ही हो गई ऑलमोस्ट फिर वो बंदा कहता है अच्छा नाउ इट्स टाइम फॉर मी टू गो और जाते हुए वो बंदी कहती है ओके या दैट इज लाइक $1,000 एंड दिस गाय वॉज लाइक एक्सक्यूज मी वट She's like, yeah, you came to my house and you spent time and you ate my food also. So that would be $1,000. And he's like, dude, I did not sign up. I thought we met on a dating app. What is this? I did not sign up for this at all. She's like, no, but now you have to pay. And somehow, उसके जेब में I think $500 या पता नहीं कितने थे उसने जितने भी पैसे थे उसके जेब में उसको देके वो भागा वहाँ से. Because he was like, dude, I got caught in this thing. And it was so risque and blah, blah, blah. Anyways, so guys, be careful out there. You don't know what's happening, okay? Be really, really careful because I know everyone is swiping left, right and center. Be careful. Just do your background checks when you do that. Anyways, when you come back, we're going to read some more juicy stories. If you have a juicy story like this and you want to share, either yours or your friends, I don't really care. Just share it. Call me on 972-235-5555. And then we will share it online. We can put you on air, but if you don't want to be on air, you can just tell me. And I will, you know, I'm a vault like that. I'm a vault. Ye jo mere andar jo baat jaati hai, wo bahar nahi nikalti hai. Theek hai? So we're going to keep it secret. Maybe share it with the audience, but we won't tell your name. Okay? Anyways, enjoy the song.

लड़की तो भाई खंबे जैसी खड़ी होगी, तो शी मस्ट बी लुकिंग लाइक सुपर हॉट एंड इलेक्ट्रिफाइंग यू गाइस. उसी से याद आया, माय नेक्स्ट रेडिट थ्रेड, उसी उसी रेडिट थ्रेड में एक नेक्स्ट स्टोरी. एक्चुअली इसके पहले मैं उस स्टोरी में जाऊं, आई वाज जस्ट गेटिंग अ कॉल फ्रॉम समवन एंड वो गाना शुरू हो गया तो उन्होंने कॉल काट दिया. लेकिन अगर आप मुझे दोबारा कॉल बैक करेंगे, सो आई विल पुट यू ऑन एयर एंड देन वी कैन टॉक अबाउट योर हॉरर फर्स्ट डेट स्टोरी. यस, इट इज अ फर्स्ट डेट स्टोरी. ओके, आई मीन इट कुड बी अ सेकेंड डेट स्टोरी टू. मे बी द फर्स्ट डेट वॉज रियली सेफ एंड द सेकेंड डेट वॉज लाइक समथिंग सुपर रिस्के. बट एनी वेज, कॉल मी बैक इफ यू हैव अ स्टोरी लाइक दैट टू शेयर. हे गाइज, देर इज नो शेम, वी ऑल गो थ्रू सम स्टफ, यू नो. समटाइम्स इट्स आउट ऑफ योर कंट्रोल, समटाइम्स यू डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग, बट एनी वेज वील सी. ओके, सो दिस नेक्स्ट रेडिट पोस्ट, यू गाइज यू हैव टू सी दिस, इट्स ओके, यू हैव टू हियर दिस. ओके, सो ही वॉज दिस ड्यूड वॉज ऑन अ डेट विद दिस गर्ल एंड ही सेड टू दिस गर्ल ऑन अ फर्स्ट डेट, बाय द वे, ओके, दैट ऑल हिज एक्सेस वर सुपर हॉट. बिल्कुल खंबे जैसी खड़ी है, पटाखे की लड़ी है, बिल्कुल. ऑल हिज एक्सेस वर सुपर सुपर हॉट, सो ही डिसाइडेड दैट ही वुड नेवर डेट अ गर्ल हु इज हॉटर देन हिम. आई मीन व्हाइल ऑन अ फर्स्ट डेट, सो वॉट इज दैट सपोज टू मेक द गर्ल हु इज ऑन अ डेट विद फील दैट शी इज नॉट एज हॉट एज यू? What does that even mean? How rude! Matlab, you think you are some kind of 9 and you are dating below you and so you are dating a 7? Guys, don't say that to a girl or a guy on the first date. Don't say that to anyone. That's kind of rude and not very nice, okay? Anyways, check out this next one and then we'll go into another song. This couple, they sat in the parking lot. Very chill first date, okay? Very chill first date. They sat in the parking lot of Lowe's and they were eating Chick-fil-A, okay? Very low effort, very casual. I like it. Sometimes, you know, first date has to be nice and casual so that, you know, the pressure is not there and you guys can actually talk and it's kind of cool like that. So they sat in a parking lot eating Chick-fil-A and then he proceeded to make moves on her. He got a little handsy, our friend over here. Then this girl, when she refused, he got super mad. He was like, yeah, get out of my car right now. So his main intention was basically to get handsy on her. And she was like, no, hey man, it's the first date. I don't even know you. Hands to yourself. And so he said, get out of my car. And so she stepped outside the car. And then you know what he tried to do? He tried to run her over with his car. OMG, girl, get out of there. It's giving like psycho killer, okay? It's giving psycho killer and it's giving ego issues over here. I mean, what do you guys think about that? Never date a person like that. How would you spot a red flag in such kind of people, you know? Baat karte hue to samajh nahi aata hai. Matlab itna gussa aa gaya ki gaadi se hi udane ka plan bana liya aapne, hai? Matlab ye to bilkul emotional atyachar ho gaya yaaro. तो गाना सुनो, बाकी बाद में आके बातें करते हैं.

0: What would you like to share today?
1: I'm enjoying this show, so yeah, for sure.
0: Do you have a request?
1: Go ahead.
0: You were saying something.
1: No. So the topic that you had, right? You know, mm-hmm. Girls has to, means everyone has to be careful, and they need to know. You know, they have to be just, you know, careful mm-hmm. with the world out there, and you know.
0: Yeah.
1: Be safe, I would say. You know.
0: Exactly. And I think that goes for both girls and guys.
1: Yeah.
0: Everyone has to
1: it
0: be
1: is,
0: safe.
1: Yes. Yes. Stick to your instinct and be careful.
0: Exactly.
1: That's all I can say.
0: Yes. Trust your intuition, guys.
1: It is, yes.
0: Exactly. All right. Well, thank you for calling.
1: Sure. All right. Thank you.
0: Bye.
1: Bye.
0: Well, that's right, you guys. I think that was really important. Trust your intuition. Intuition is very, very important. I'll finish the story that I had started off earlier. So Mr. G jo hai, unhone mujhe call kiya while we were listening to Emotional Atyachar. Aur wo keh rahe the ki dekho bhai, she should have had some intuition as well, jiski baat hum kar rahe hain abhi. कि यू नो शी शुड नो बेटर कि किसी बंदे के साथ आप अकेले गाड़ी में नहीं बैठो, ऑन अ फर्स्ट डेट तो नहीं बैठो. तो मैंने सोचा कि भाई कई बार यू नो वी गर्ल्स आल्सो थिंक, यू नो वी आर काइंड ऑफ थिंकिंग कि हाय व्हाट अ जेंटलमैन, ही इज पिकिंग मी अप फॉर माय डेट, हाउ नाइस, सो स्वीट ऑफ हिम. एंड ऑनेस्टली आई हैव गॉन ऑन डेट्स वेयर पीपल हैव पिक्ड मी अप. थैंकफुली नथिंग वाइल्ड हैज हैपन, नथिंग लाइक दैट हैज हैपन टू मी. But I just got lucky like that. But she probably did not get lucky, and he got really handsy with her, and then he tried to like run her over with his car. That was kind of risky, right? So he says that usko nahi baithna chahiye tha uski gaadi mein. I would say aap apni intuition ko trust karo. Agar aapko lag raha hai ki bande mein kuch red flags hain, कुछ डाउट हो रहा है, तो गाड़ी में मत बैठो किसी के साथ भी, ठीक है? आप ट्रस्ट योर इंस्टिंक्ट्स, ट्रस्ट योर इंट्यूशन, बिकॉज ट्रस्ट मी, इंट्यूशन इज गोज अ लॉन्ग लॉन्ग लॉन्ग वे. एनीवेज, एंड द सेकंड थिंग व्हिच मिस्टर जी वाज टॉकिंग अबाउट वाज द क्वेश्चन दैट आई हैड आस्क्ड अर्लियर अबाउट क्लासिकल सिंगर्स और फेमस सिंगर्स, कि उनको कॉन्सर्ट में या फिर किसी भी शो में इज भाव मोर इम्पॉर्टेंट या सुर इज मोर इम्पॉर्टेंट. तो मिस्टर जी सेड, विच आई ऑल्सो एब्सोल्यूटली 125% अग्री विथ. आई डोंट नो वाई आई सेड 125, इट जस्ट सीम्स लाइक अ नाइस नंबर, बट वॉट आई 125% अग्री विथ इज द फैक्ट दैट कि अगर आपको अपनी सुर की नॉलेज नहीं है तो आपको उस टाइप के फोरम में जाना ही नहीं चाहिए. एंड यू शुड नेवर क्लेम टू बी एन एक्सपर्ट इन म्यूजिक. कॉन्सर्ट्स अलग बात है, ठीक है, कॉन्सर्ट्स तो चलो अलग बात है, पर आप किसी फोरम में टॉक दे रहे हो, आप बिना उसके बारे में जान के, बिना अपने फैक्ट्स और अपनी बैकग्राउंड सॉलिडिफाई करके, बिना अपना रिसर्च करके अगर आप जा रहे हो किसी टॉपिक के बारे में बात करने के लिए, तो गाइस यू नीड टू बी अ लिटिल केयरफुल, बिकॉज यू गोना गेट कॉल्ड आउट. यू नो इट विल बी एम्बैरेसिंग. एंड लाइक ही सेड, ही इज एक्चुअली अ ट्रेंड हिंदुस्तानी क्लासिकल सिंगर, जैसे मैंने भी अपनी ट्रेनिंग करी थी बचपन में. You know, the India में काफ़ी popular actually. अगर आप इंडिया में आप गाने की कोशिश कर रहे हो, इनफैक्ट US में भी बहुत popular. मेरे यहाँ पे US में बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने बचपन में 5-6 साल कम से कम हिंदुस्तानी क्लासिकल ट्रेनिंग ली है, चाहे वो हिंदुस्तानी है या कर्नाटक क्लासिकल है या सम काइंड ऑफ अ क्लासिकल म्यूजिक ट्रेनिंग ली है सबने. तो इफ यू आर इन अ फील्ड लाइक दैट, देन यू मस्ट, हमारे जो टीचर्स होते हैं वो हमें स्टेज पर चढ़ने नहीं देते जब तक हमारी फाउंडेशन क्लियर ना हो जाए. अगर आपके पास फाउंडेशन नहीं है तो आप स्टेज पे मत चलो, तो नहीं तो आपका यू नो एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो जाएगा, मतलब चलते चलते हो जाएगा वैसे करके. स्टेज पे तो चलो आजकल खैर सभी चढ़ जाते हैं, यू नो कैरियोके है, इट्स जस्ट फॉर फन, इट्स एंड फॉर एंटरटेनमेंट, आई अंडरस्टैंड दैट. बट वेन यू आर ट्राइंग टू बी एन एक्सपर्ट एंड गो ऑन अ डिस्कशन पैनल लाइक दैट, देन आई थिंक यू नीड टू रियली नो where you're coming from, right? You need to know your roots. Anyways, that being said, let's talk a little less. Let's play you a song. This song is Bolo Bolo by one of my most favorite recent girl groups.

यू गाइज भाई, हम 20 साल की लड़कियों के बारे में क्या बोले, बुढ़े बुढ़े भी वैसे ही होते हैं। मतलब आज की पता नहीं कलयुग आ चुका है, कभी किसी को हम ट्रस्ट नहीं कर सकते। अभी मेरे पास एक कॉलर आई, ठीक है, उन्होंने एक स्टोरी शेयर करी फ्रॉम द रिटायरमेंट कम्युनिटी। ठीक है, देर वॉज अपेरेंटली दिस बुढ़ा बुढ़े अंकल, और उनको एक फ्लोरिडा से एक बुढ़ी आंटी मिल गई। तो बुढ़ी आंटी ने बोला, भाई मैं आ रही हूँ तुमसे मिलने। हाँ, तो अंकल खुश हो गए, कहते हैं अरे वाह, मेरी इस उम्र में भी मेरी गर्लफ्रेंड बनने वाली है, वाह। तो आंटी गई ऑल द वे बुढ़े अंकल से मिलने, फ्लाई करके फ्लोरिडा से दूसरे स्टेट, कौन से स्टेट वो मुझे नहीं पता, एंड दैट इज़ नॉट इवन इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो वो आई आंटी, उन्होंने थोड़ा अपना रिलेशनशिप रिलेशनशिप बनाया, थोड़ा जो भी है, जो भी करना था कर लिया, हम आगे नहीं बोलेंगे, यू कैन गेस वट एवर। उसके बाद वो आंटी कहती है, देखो मेरे पास, मुझे ना थोड़े पैसों की ज़रूरत है, बट आई डोंट वॉन्ट योर मनी, मुझे ना अपने गोल्ड बेचना है, मुझे अपने सोने के गहने बेचने हैं। तो उन्होंने बोला कि मैं एक सोने की दुकान में जाके आई वॉन्ट टू सेल इट। तो बुढ़े अंकल ने बोला कि आप बाहर क्यों जाओगे बेचने, मैं खरीद लेता हूँ तुम्हारा गोल्ड। गोल्ड इज अ वेरी गुड इन्वेस्टमेंट, वी ऑल नो इट, वी देसीज नो दैट गोल्ड इज ए ग्रेट ग्रेट ग्रेट इन्वेस्टमेंट, और क्यों नहीं इन्वेस्ट हमें करना चाहिए गोल्ड में, है ना, गोल्ड तो बड़े जा रहे हैं, बड़े जा रहे हैं, तो इसीलिए शादियों में भी गोल्ड देते हैं, ऑल दैट, यू नो, वी ऑल नो दैट। तो अंकल ने बोला कि भाई मैं तुम्हारा गोल्ड खरीद लेता हूँ, एंड गेस वॉट गाइस, वो सारा पूरा डब्बे भर का गोल्ड निकला फेक। तो मतलब यार, हम यंग लोगों को क्या ही बोले, जब आंटी बुड्ढे अंकल आंटी भी स्कैम कर रहे हैं, ऐसे प्यार का धोखा, हाय हाय हाय, दिल का धोखा ऐसे कैसे हो गया। एनीवेज, आप ये गाना एंजॉय करिए, वी आर इन द लास्ट 5 मिनट्स ऑफ माय शो। मैं कोशिश करूंगी, मैं आके दोबारा आपको टाटा बाय बाय बोल दूं, और अगर मैं नहीं आ पाई तो प्लीज ज्वाइन इन टुमारो फ्रॉम 7 to 10 PM, बिकॉज वील हैव ए लॉट मोर जूसी जूसी स्टोरीज। कल का हमारा सेगमेंट थोड़ा सा अलग है, कल हम डेटिंग सीक्रेट्स नहीं, अनहिंज्ड फैमिली सीक्रेट्स शेयर करेंगे, अनहिंज्ड फैमिली सीक्रेट्स। एंड आई फाउंड दिस रियली अमेजिंग रेडिट थ्रेड जिसमें लोगों ने अपनी फैमिली सीक्रेट्स बोली है, एंड यू आर नॉट गोइंग टू बिलीव सम ऑफ द थिंग्स दैट पीपल हैव टाइप्ड ऑन देयर और पीपल हैव शेयर्ड, ऑल एनोनिमस बाय द वे। आई डोंट नो किसकी स्टोरी है, क्या है, मुझे तो गॉसिप एंटरटेनिंग लगती है, और मैं आप सबको ये एंटरटेनमेंट देने वाली हूँ, बट प्लीज ज्वाइन इन टुमारो, इट्स गोना बी सुपर सुपर फन। आई होप यू हैव ए वंडरफुल वंडरफुल नाइट, एंड माया जी थैंक यू सो मच फॉर बींग अ डेडिकेटेड लिसनर। वी मे नॉट बी एबल टू टॉक अगेन अंटिल द एंड ऑफ द शो, बट मे बी टुमारो, सो आई होप यू हैव ए वंडरफुल नाइट, एंड आई होप यू हैव अ गुड नाइट एंड ए ब्यूटिफुल मॉर्निंग ऑल्सो, क्योंकि मैं सुबह तो नहीं रहूंगी। एनी वेज, इंजॉय दिस सॉन्ग, आई विल सी यू माई ब्यूटिफुल फ्रेंड्स। जाने से पहले मेरी एक सेंग जो मैं हर साल बोलती रहती हूँ, हमेशा बोलती रहती हूँ, वो ये है, शाइन लाइक अ हीरा, ओके, शेक योर हिप्स लाइक शकीरा, एंड डांस लाइक गरम तेल में जीरा। वाह वाह वाह वाह वाह वाह, तालियां तालियां तालियां, बिकॉज लाइफ इज टू बोरिंग, बिना जीरे के स्वाद तो आता नहीं खाने में, तो भाई शाइन, मतलब डांस लाइक अ जीरा, यू नो, बिकॉज दैट्स व्हाट लाइफ इज सपोज्ड टू बी। एंजॉय दिस सॉन्ग, एंड आई विल सी यू टुमारो एट 7 PM।

0: एक बार जो मैंने कमिटमेंट कर दी
1: तो फिर सिर्फ फन एशिया ही सुनूंगा।

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त जब गाने हो जबरदस्त। ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

0: जुड़ जाओ अपने।
1: डॉक्यूमेंट्स या पार्सल भेजनी है?
2: हाँ।
1: घर रिलोकेट करनी है?
2: हाँ।
1: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
2: हाँ भाई हाँ।
1: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर।
3: डॉक्यूमेंट्स शिपिंग, बॉक्सेस शिपिंग, कंप्लीट डोर टू डोर रिलोकेशन, ऑटो ट्रांसपोर्ट, सिर्फ इंडिया नहीं USA और दुनिया भर में ट्रस्टेड शिपिंग और मूविंग सर्विसेज। SFL Worldwide, हर मूव का परफेक्ट सॉल्यूशन। विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335।
4: Dude, लाइफ में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं फ्रंट पेज पे रहूं।
5: फ्रंट पेज का तो पता नहीं, बट तेरा पेज 3 में होना मेरी गारंटी है।
4: कैसे?
5: पेज 3 ईटरी?
4: नो, नॉट अनदर रेस्टोरेंट अगेन।
5: Dude, इट्स पेज 3। स्टार्ट विद द बार, सिग्नेचर कॉकटेल्स, क्लासिक पोर्स एंड द फूड क्राफ्टेड टू सूट एवरी क्रेविंग, एवरी एपेटाइट।
4: मतलब ग्रेट फूड, ग्रेट ड्रिंक्स एंड ग्रेट कंपनी, यानी कि मैं।
6: पेज 3 ईटरी, ईट, सिप, गॉसिप, रिपीट।
7: दूर रहकर भी देसी रहना आसान नहीं होता, पर जब मिले अपनी कल्चर की खुशबू, अपने खाने का टेस्ट, तो दिल कहता है दिस इज होम। वेलकम टू देसी मंडी लुइसविल, डालस का सबसे बड़ा देसी ग्रोसरी स्टोर, जहां हर देसी एक रूफ के नीचे। नॉर्थ से साउथ, स्ट्रीट से फेस्टिव, हर टेस्ट, हर कल्चर एक ही जगह। प्योर देसी, फुल मंडी एक्सपीरियंस, अनमैच्ड वैरायटी, अनबिलीवेबल डील्स, ओनली एट देसी मंडी। Desi Mandi, powered by Desi's, loved by Dallas.
8: Are you a self-employed or business owner and have profits? Stressed out business ke kuch symptoms hai. Profits hai, but no cash liquidity. Har saal tax bills ke saath tax season ka anxiety. Diagnosis clear hai. Aapke business ko chahiye smart tax planning, clean bookkeeping aur ek strong financial strategy. AG Fintax, founded by Forbes Council member Anil Granthi. From taxes to CFO advisory. Business owners ke har challenge ka ek hi solution. Call 425-395-4318 or visit agfintax.com. Plan today. Optimize your cash flows with AG Fintax's advisory services.
5: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ, बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू, लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा, जिन्होंने अपने कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई। डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर, thejagotimes.com। फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टेक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 6825516500। The Jago Times Commission. Jago bhi, jagao bhi. Exclusive media partner, Panacea.
9: Goodness is a beautiful thing, and good begets good. One act of compassion becomes a circle of virtue that keeps turning. At SIUT, that translates into free treatment with dignity. Hundreds of thousands of patients are given hope when they need it most. Every life touched creates another ripple of good. This Eid, step into that cycle. Remember SIUT North America for your sadqa and donation. Visit siutna.org. SIUT North America is a qualified, tax-exempt, 501c3 nonprofit organization.

पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग।

0: पिक्चर
1: अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है
2: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फनी।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

0: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खान ज़ादा जिन्होंने अपने कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर thejagotimes.com फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टैक्ट राजा जाहिद अख्तर खान ज़ादा 6825516500 The Jago Times Commission. Jago bhi, jagao bhi. Exclusive media partner, Panacea.
1: Same order again? Same pizza, same taste, same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
2: Hi, this is Varun Sharma and you are listening to the most popular FM station in the US, 104.9 FM, Fun Asia Radio.

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैट। डैलस में रेडियो का डैड फनीशा 104.9 FM।
1: Yeah, it's coming up.

104.9 FM. Turns up the heat in Dallas.

0: कभी कभी जिंदगी में कितनी भी कोशिश करो बस सब अटक सा जाता है। पर दिक्कत आपके इंजन में नहीं आपकी एनर्जी में है और उसका एक ही समाधान कालीपुत्र मास्टर जोशी। पीढ़ियों के अनुभव के साथ मास्टर जोशी जी पामिस्ट्री, हॉरोस्कोप रीडिंग, वास्तु और ग्रह शांति के विशेषज्ञ हैं। प्रेम, धन, आरोग्य, कोर्ट के मामले और बुरी नजर, हर समस्या का समाधान यहां मिलता है। साथ ही विवाह और गृह प्रवेश भी संपन्न कराते हैं। आज ही संपर्क कीजिए कालीपुत्र मास्टर जोशी जी से 6823464611 और विजिट masterjoshigram.com। अपनी जिंदगी में शांति और समृद्धि वापस लाइए।
1: Astrology readings for guidance only and results may vary.
2: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession. Hey Dallas, still performing only for your bathroom mirror or the family WhatsApp group? Nah, it's time to level up. If you got talent, we got you. Whether you sing, dance, rap, do stand-up, play an instrument, or have a hidden talent nobody sees coming, Fun Asia Network and Desi Got Talent USA are ready for you. Ages 4 and above, solo or squad, registrations are officially open. Register now at DesiGotTalentUS.com. Grand finale in Dallas. Because the next viral Desi star could be literally you. For sponsorship details, call 201-962-5500. Desi Got Talent USA. Your talent, your spotlight.

लेकिन आपकी आंखों से नींद कोसों दूर है, पर हम है ना आपके करीब, आपके रेडियो डायल पर सारी रात आपके साथ। फन इज योर रेडियो 104.9 FM।

दोस्तों, नॉलेज इज द ओनली थिंग जो बांटने से कम नहीं होती बल्कि बढ़ती जाती है. नॉलेज इज दैट लाइट जो आपकी जिंदगी को रोशन करती है. और सबसे इंटरेस्टिंग बात, आज के जमाने में नॉलेज सिर्फ किताबों में नहीं, हर कॉन्वर्सेशन, हर सफर, हर गाने में मौजूद होती है. तो क्यूरोसिटी रखिए, सवाल कीजिए, क्योंकि जानने का जुनून ही बनाता है इंसान को बड़ा. नॉलेज ही पावर है, और पावर तो आपको फनी रेडियो भी देता है विद दिस नेक्स्ट सॉन्ग, फील द पावर.

क्या आप जानते हैं कि लाफ्टर इज लाइक अ 15 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज। जैसे वर्कआउट किया हो आपने, मतलब अगर आप हंसी हंसी में हमारा शो सुन रहे हैं तो समझ लीजिए कि आपकी कैलोरीज भी बर्न हो रही हैं। तो रेडियो सुनना अब हेल्दी भी है, तो सुनते रहिए फनीशर रेडियो।

Thank you for tuning in to 104.9 FM Fun Asia Radio. एक मशहूर कहावत है, बूंद बूंद से दरिया बनता है, मतलब छोटी छोटी एफर्ट से बड़ी बड़ी चीजें बनती हैं। छोटे छोटे मसलों के हल ढूंढिए, बड़े बड़े मसलों के हल खुद ही निकल आएंगे। जैसे छोटे छोटे गाने मिलकर बनते हैं फन एशिया की बहुत बड़ी और कमाल की प्लेलिस्ट। सो कमाल धमाल फन मस्ती और एंटरटेनमेंट के लिए बने रहिए फन एशिया रेडियो के साथ।

0: Thank you, Father. Thank you very much. Come on.
1: मुझे आज स्कूल में नहीं जाना है.
0: अरे क्यों?
1: नहीं मुझे अच्छा नहीं लगता.
0: बेटी देखिए आप कुछ दिन यहाँ रहिए, आपको अच्छा लगने लगेगा. और भी तो बच्चे रहते हैं यहाँ.
1: मैं दिल्ली में नहीं रह सकता.
0: नहीं आपको यहीं रहना है हॉस्टल में कुछ दिन, समझे?

0: वेरी गुड। और ये कौन है?
1: ये मैं हूँ और मेरे पापा।
0: आपके पापा चश्मा पहनते हैं?

दोस्तों, मुस्कुराहट को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लीजिए। स्माइल ज्यादा कीजिए, फ्री है और सबको अच्छी भी लगती है। वो कहते हैं ना, चेहरे पे मुस्कान हो तो मुश्किलें भी शर्मा जाती हैं। तो आप अपनी स्माइल से, अपनी मुस्कुराहट से आधी से ज्यादा मुश्किलों को तो वैसे ही मात दे सकते हैं, और बाकी आधी को मात देने के लिए फन एशिया रेडियो के साथ बने रहिए।

तन्हाई में, अकेले में, महफिल में और मेले में, आपके साथ है फनीशिया।

एक रात वो गया था जहाँ रात रुक के, अब तक रुका हुआ हूँ वहीं रात रुक के. डोंट चेंज दैट डायल, कीप इट राइट हियर ऑन फन एशिया रेडियो 104.9 FM.

जिंदगी एक लंबी फिल्म है और हर दिन एक नया सीन। वो कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। सो जब भी मुश्किल हो, समझ लो कि डायरेक्टर ऊपर वाला है और स्क्रिप्ट उसकी सुपर हिट ही होती है। बस पॉपकॉर्न लेकर चिल करो, बिकॉज लाइफ इज वर्थ वॉचिंग, जस्ट लाइक वन एशिया रेडियो इज वर्थ लिसनिंग।

क्या आपको पता है कि आपकी हार्ट बीट सिंक हो सकती है म्यूजिक के साथ? अगर गाना फास्ट हो तो दिल की धड़कन तेज हो जाती है, और अगर गाना स्लो हो तो काम हो जाती है, हल्की हो जाती है। तो अगला गाना सुनते ही अपना दिल जरूर चेक कीजिए। फनी एशिया रेडियो, लिटरली प्लेइंग विद योर हार्ट बीट्स।

हेलो एवरीवन, एक सिंपल ट्रिक फॉर इंस्टेंट हैप्पीनेस। अपने आप को आईने में देखिए और 30 सेकंड्स के लिए मुस्कुराइए। अजीब तो लगेगा, फनी भी लगेगा, लेकिन आपके दिमाग को ये मैसेज जाएगा कि यू आर जेन्युइनली हैप्पी। वो कहते हैं ना, मुस्कुराहट सबसे खूबसूरत जेवर है, सो इस जेवर को पहने रखिए, स्माइल करिए और डैलस की ट्रैफिक को थोड़ा हल्के में लीजिए इस गाने के साथ।

नेकी कर दरिया में डाल, ये मशहूर जमाना कहावत तो आपने जरूर सुनी होगी, लेकिन आजकल का वर्जन कुछ अलग ही हो गया है। नेकी कर और ऑनलाइन पोस्ट कर दे, मगर आप ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। कोई भी अच्छाई, कोई भी नेकी जो आप करते हैं, उसे अपने तक ही रखिए, क्योंकि काइंडनेस इज लाइक वाईफाई, सबको फील हो जाती है, पासवर्ड की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ती। इसी तरह फन एशिया रेडियो आपके दिलों में धड़कता है बगैर आपको महसूस हुए।

0: हेलो एवरीवन, यू ट्यून्ड इनटू 104.9 एफएम फनी शेयर रेडियो। क्या आपको पता है कि असल में चॉकलेट वंस यूज्ड टू बी अ करेंसी? जी हाँ, माया सिविलाइजेशन में चॉकलेट वाज मनी। इमेजिन आज के जमाने में अगर आपकी सैलरी चॉकलेट्स में मिलती हो तो क्या होगा? डालस में सब सारे के सारे जिम फुल हो जाएंगे। जी हाँ, लेकिन जिंदगी की मिठास तो जिंदगी की मिठास है, मजा लीजिए जिंदगी की मिठास का।
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Official tax and finance partner, AG Fintax. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.

0: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। लग्जरी ब्रिलियंस सेलिब्रेशन, तन्मय ज्वेलर्स इन अर्विंग।
1: Hello guys, this is me Kinjal Dave and you are listening and watching Fun Asia Radio.
2: Yeah, I'm a life up high boy. Yeah, tu rakh teri rai boy.

चाहे कुछ भी ना करे बेटे उसमें भी स्वैग है, हर घूट में स्वैग है, हर घूट में स्वैग है।

0: फन की फ्रीक्वेंसी बजे दिन रात।
1: मैं बहुत अच्छा गा लेता हूँ।
2: अच्छा सुना सुना?
1: हाँ। वो मेरी प्रैक्टिस नहीं अभी।
2: अगली बार प्रैक्टिस करके आना और किसी और के लिए मत गाना।

भूख लगी जोरों की भूख लगी। मुर्गे की बांग हमें कोयल की भूख लगी।

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त। जब गाने हो जबरदस्त, ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

0: कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं ये?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं, फन एशिया पर ही आते हैं।

0: KZMP 104.9 FM. Keep listening to Fun Asia.
1: Yo, yo, yo, yo. Got an Ojla. Abby

0: beat. Banjo.
1: Single. Single. Lotte.

0: भोले नीचे से रे नीचे से।
1: सुन रानी नी ठाट बाट देख किंग दे, तू ही जच दी है नाल इस सोने सिंग दे।

जो मैं नाम आता हर वीक, फिर भी जहां से गुजरूं हर बंदी के मुंह से निकले चीख। हाथ पकड़ पर दिल न लगा, जो कहती है करके दिखा, सुनने में आया है तू मरती है हम पे मर के दिखा। रहने दे, मुंह बंद रख, आंखें जो कहती हैं कहने दे, बहुत रुकी है आज तू पानी बन के खुद को बहने दे।

0: पुष्पा झुकेगा नहीं और फनेजिया रुकेगा नहीं। नॉन स्टॉप बॉलीवुड, नॉन स्टॉप स्वैग।
1: आ जाओ ऑन द फ्लोर, बुढ़ियों पे कूड़ियों।

0: पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त, पिक्चर अभी बाकी है।
1: और एंटरटेनमेंट भी। स्टे ट्यून्ड टू फन एशिया।

0: बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं।
1: पर डैलस में सिर्फ एक ही बात होती है, फन एशिया प्लेज द बेस्ट बॉलीवुड।

0: दिल से छूटेगा और एक ही दिन में हम सबको खत्म कर देगा।
1: ए बद्राव, वाट लगे रे पोरे ची।

0: एंटरटेनमेंट से कर दे मैड। डैलस में रेडियो का डैड फोनेशिया 104.9 FM।
1: Yeah, it's coming up.
2: Magic touch.

0: Dallas, are you ready? Jago Times Group of Publications अब आ चुका है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई मिलियन फॉलोअर्स के साथ बोथ इन इंग्लिश एंड उर्दू लेड बाय द फेमस एंड फियरलेस जर्नलिस्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा जिन्होंने अपने कलम से सोशल इनजस्टिस और करप्ट प्रैक्टिसेस के खिलाफ भरपूर आवाज उठाई डैलस और दुनिया भर की ताजा तरीन खबरों के लिए द जागो टाइम्स अवेलेबल है एक क्लिक पर thejagotimes.com फॉर मोर डिटेल्स एंड एडवर्टाइजमेंट कॉन्टैक्ट राजा जाहिद अख्तर खानजादा 6825516500 The Jago Times Commission Jago bhi jagao bhi Exclusive Media Partner Panacea
1: Ek baar jo maine commitment kar di
2: to phir sirf Panacea hi sununga
3: Boring din charya mein
4: gholiye naye rang Panacea Radio ke sang

0: शादी मुबारक।
1: Tracks that put you on the right track.

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त। जब गाने हो जबरदस्त, ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

0: अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है।
1: पनवेल हो या डेलस, सफर तभी मस्त जब गाने हो जबरदस्त। ओनली ऑन फन एशिया रेडियो।

0: कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये?
1: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं फन एशिया पर ही आते हैं।

0: जुड़ जाओ अपनी धरती से, देसियों का सच्चा रेडियो चैनल फोनेशिया 104.9 FM।
1: Pop, pop, pop, pop, pop, pop.

0: सत्ता आपके लिए पक्की है ना, वो भारत युद्ध के बाद। अब भोलेनाथ भैंस के रूप में थे जब भीम ने उनको आगे पकड़ लिया, अब उनका सर वो नेपाल में और खड़ी आ रही है।
1: जय साहब,
2: जय हिंद।
0: 10 किलोमीटर हो गया, 7 किलोमीटर।

0: अपना इलाका है, चाय पानी बहुत से मिलेगा। बस इधर एक मिनट रुकेंगे। चल चल रुस्तम, बस बस बस बस दो आराम से। हाँ एक मिनट, एक मिनट पकड़िए जरा, बस एक मिनट रुकेंगे यहाँ पे।
1: अरे हम जानते हैं दुकान के मालिक को, बहुत मेहरबान है, पैसे नहीं लेंगे उसके लिए।
2: मुफ्त में कोई मेहरबान नहीं होता, ये लड्डू के बदले ले जाने कौन जायदाद मांग लो तुम।
3: भाई
2: आपने
0: गलत बात है, शाम को मिलता हूँ।
3: मेहरबानी

0: बताइए कहाँ ले चले?
1: पीएससी हेडक्वार्टर्स और फिर सीधा सरकारी अस्पताल।
2: कम से कम समय तो निकाला पटनायक साहब ने, वरना इनके पास तो टाइम ही नहीं होता किसी से मिलने के लिए।
1: ये बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं, इसलिए रुकते नहीं ना एक

0: कौन है? कोई बड़ी हस्ती?
1: रूटीन ऑफिस वर्क।
0: रूटीन जब बदलता है तो सबसे पहले बीवियों को पता चलता है।
1: नहीं बता सकते यार,
0: मुझ पे भी भरोसा नहीं है।

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG Fintax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
3: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, or up ye $1 million property bhi.
4: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
5: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
6: कहाँ गया? कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
7: कौन सा?
6: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है.
7: अरे सारे तो सेम है.
6: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये ये ये देखो, ये वाला.
7: ओ हाँ, ये तो अलग है.
8: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है. From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
9: ओए होए भाई, एक और नई गाड़ी. सच बता, लॉटरी लगी है क्या?
10: लॉटरी नहीं यार, अच्छी क्रेडिट थी. जीरो डाउन पे गाड़ी ली और सीधे K2 ड्राइव पे लिस्ट कर दी.
9: K2 ड्राइव मतलब?
10: मतलब गाड़ी खुद पैसे कमा रही है. लिस्टिंग से लेके बुकिंग्स, DFW और लवफील्ड एयरपोर्ट पे ड्रॉप ऑफ और पिकअप, मेंटेनेंस, सब K2 ड्राइव हैंडल करता है.
9: वाह, मैं भी अपनी पुरानी गाड़ी लिस्ट करा सकता हूँ?
10: 100%
11: नई हो या पुरानी, लिस्ट योर कार एट K2 ड्राइव एंड लेट योर कार अर्न यू मनी. विजिट K2Drive.com और कॉल 214-814-0402. K2 Drive, Dallas's smartest fleet partner.
12: It's true, हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं. But sometimes, even the best need a little guidance. With over 400 years of family tradition, through his extensive knowledge of astrology and palm reading, Pandit Ishwarji can help you with any difficulty in your personal or professional life. From relationship issues to negative energy removal. Call the most trusted astrologer, Pandit Ishwarji, 945-527-0897 or visit astrologerishwar.com.
13: डॉक्यूमेंट्स या पार्सल भेजनी है?
14: हाँ.
13: घर रिलोकेट करनी है?
14: हाँ.
13: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
14: हाँ भाई हाँ.
13: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर.
15: डॉक्यूमेंट्स शिपिंग, बॉक्सेस शिपिंग, कंप्लीट डोर टू डोर रिलोकेशन, ऑटो ट्रांसपोर्ट, सिर्फ इंडिया नहीं USA और दुनिया भर में ट्रस्टेड शिपिंग और मूविंग सर्विसेज. SFL Worldwide, हर मूव का परफेक्ट सॉल्यूशन. विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335.
8: Are you a self-employed or business owner and have profits? Stressed out business ke kuch symptoms hai. Profits hai, but no cash liquidity. Har saal tax bills ke saath tax season ka anxiety. Diagnosis clear hai. Aapke business ko chahiye smart tax planning, clean bookkeeping aur ek strong financial strategy. AG Fintax, founded by Forbes Council member Anil Granthi. From taxes to CFO advisory. Business owners ke har challenge ka ek hi solution. Call 425-395-4318 or visit agfintax.com. Plan today. Optimize your cash flows with AG Fintax's advisory services.
16: Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
17: Calculating route. Rerouting.
16: Are, ye kya? Mujhe mere wale grocery store mein jana hai.
17: Location upgraded. Now heading to India Bazaar, Fort Worth.
16: Kyun?
17: Kyunki Fort Worth, Keller, Haslett aur Hearst ke smart log jante hain. Daily groceries ho ya puja essentials, authentic Indian products aur ghar ki har zarurat. Find everything Desi at India Bazaar in Fort Worth.
16: Achha. तो सीधा वही ले चलो.
18: इंडिया बाजार एट 5152 क्वाड्रेंट वे, फोर्ट वर्थ. स्विच द रूट.
17: योर न्यू डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड.
19: If you or your family member is involved in a truck accident, here's what you must do. First, ensure everyone's safety. Next, gather as much information as possible. make sure you take great photos, talk to any witnesses that may have seen the accident, and ensure that you document all of the information for the truck driver and company. Truck accidents often lead to serious injuries, so don't deal with it alone. Call Attorney Omar at 833-GET-OMAR or visit us online at attorneyomar.com. When it comes to representing your case, our goal is simple. We want you to receive the maximum amount of money you deserve.
14: Thank you so much for joining us today on this Thursday morning, the 28th of May. Sabse pehle, tareef us upar wale ki, jisne duniya banai, chand sitare banai, zameen aasman banai, insaan ke dil mein mohabbat ka jazba paida kiya. Usi upar wale ki tareef hai jisne mujhko, aapko aur ye sari kainat ko insaniyat ko aage badhane ke liye banaya hai. आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम या अली मदद वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू वील स्टार्ट विद यूफोरिया
20: अच्छा बाहर निकल ले
21: यार ट्रेन निकल रही है चल
20: नहीं आ जा यार
21: है मत

0: Frisco is growing fast, and the future of our city needs experienced leadership. For more than 40 years, Rod Willhauer has helped build Frisco, creating jobs, supporting local businesses, improving infrastructure, and investing in the community he calls home. Rod believes in safer neighborhoods, smarter development, strong public services, and protecting the family values that makes Frisco special. This election, your vote matters. Vote Rod Willhauer for Frisco Mayor, because the next 4 years will define the next 40 for Frisco.
1: अपनी रूट्स भी और टेक्सास का स्वैग भी दोनों एक साथ एक ही जगह HEB में. रॉयल सोना मसूरी राइस हो, नानक पनीर हो या पार्ले जी बिस्किट्स, वही देसी टेस्ट जो दिल को घर जैसा फील दे. और साथ ही HEB के एक्सक्लूसिव टेक्सन फेवरेट्स जो सिर्फ यहीं मिलते हैं. एक ही ट्रिप, एक ही स्टोर और सारा सामान डन. तो आज ही जाइए अपने नियरेस्ट HEB पर और ले जाइए अपने ट्रेडिशनल और टेक्सन फेवरेट्स एक साथ. HEB, हियर एवरीथिंग्स बेटर.
2: Attention business owners, what if your everyday expenses could actually make you money? That's right, with Connecting America, you can turn your business expenses into a powerful stream of income via a unique insurance product. If you are looking to boost your bottom line, they got the strategy that works for you. Plus, they help homeowners pay off their mortgage in 10 years or less.
3: Don't wait. Call James at 321-888-7345 today or visit ConnectingAmericaFinancials.com and discover how to turn your daily expenses into income. Connecting America, where smart business owners turn costs into cash.
4: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर दो.
5: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
3: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन. स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर.
5: इतना सब और प्राइस?
3: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन. समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को. ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
6: मैं हीरो.
7: Achievements deserve unforgettable celebrations. Host your kids' graduation party at the Flavor Lounge in Frisco, where great food meets great memories. And if you want to host the party at your place, no worries. You can also order for catering services only. Fresh Tray Catering, custom menus for small or large gatherings. Everything in perfect style. Call now 469-712-3591 or visit theflavorlounge.com. The Flavor Lounge. You celebrate. Flavor hum sambhal lenge.
8: Ritesh, kabhi socha hai? Kal agar tum nahi rahe, to mera kya hoga?
9: Arey, relax.

0: एक्स सब तुम्हारा ही तो है।
1: सच या फिर कोर्ट डिसाइड करेगा?
2: वेट व्हाट?
3: यस, अगर प्रॉपर एस्टेट प्लान नहीं है तो आपकी फैमिली के डिसीजंस कोर्ट लेता है।
4: हाय, दिस इज दीप्ति वर्मा विद NRI वेल्थ। मैं फैमिलीज को हेल्प करती हूँ उनकी मेहनत को प्रोटेक्ट करने में द राइट वे विद एस्टेट प्लानिंग।
3: अगर आपके पास सिर्फ विल है या कुछ भी नहीं है तो ये कॉल डिले मत कीजिए। कॉल 669-243-5799, दैट्स 669-243-5799 फॉर अ फ्री 15-मिनट कंसल्टेशन।
1: तुमने फिर कार्ड यूज किया?
5: करना पड़ा, फीस ड्यू थी और ऑलरेडी लेट हो चुके हैं पेमेंट्स में।
1: पर मैंने अभी चेक किया, हमारा क्रेडिट स्कोर और गिर गया, कैसे मैनेज होगा सब?
5: मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
3: हर घर की यही कहानी, पर सच यही है क्रेडिट स्कोर अपने आप ठीक नहीं होता। Zeno क्रेडिट रिपेयर हेल्प्स यू चैलेंज इनएक्यूरेट, आउटडेटेड या अनवेरिफाइबल आइटम्स ऑन योर रिपोर्ट। नो अपफ्रंट फीस, फुल ट्रांसपेरेंसी एंड द राइट टू कैंसिल एनी टाइम। कॉल 1-800-400-9468। Zeno Credit Repair. Fix your score. Fix your life. Zeno Credit Repair does not guarantee results. You have the right to dispute inaccurate information on your credit report yourself free of charge. Services provided under written contract with a 3-day right to cancel.

0: Taking your calls right now, 972-235-5555. And here are some more messages.
1: Frisco is growing fast, and the future of our city needs experienced leadership. For more than 40 years, Rod Willhauer has helped build Frisco, creating jobs, supporting local businesses, improving infrastructure, and investing in the community he calls home. Rod believes in safer neighborhoods, smarter development, strong public services, and protecting the family values that makes Frisco special. This election, your vote matters. Vote Rod Willhauer for Frisco Mayor, because the next 4 years will define the next 40 for Frisco.
2: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
3: बैठ जाऊं? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था।
4: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था।
3: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है।
5: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव इन प्लेनो। एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग, और हाँ, कंपटीटर कोर्ट मैच भी। कॉल 469-298-3870। पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो।
2: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
6: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
7: Kuch bhi nahi. Oora Debt Relief will do it for us.
6: Kya matlab?
7: Oora can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
6: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
7: Oora Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
6: Ab to karna hi padega, madam.
8: Don't let debt ruin your life. Visit Oora.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
9: 2026 mein aapki rashi ke liye dhan aur safalta ke yog hain.
10: Arey sun, ye astrologer बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
11: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं। जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
12: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
11: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
13: Did you know LASIK is just one of 6 ways to get rid of glasses and contacts? I'm Dr. Shahzad Batliwala. Yes, your eye surgeon is Desi. I'm a fellowship-trained surgeon and founder of Visionary Eye in Plano. My philosophy is simple. Educate first. Once you understand your options, the decision becomes easy.
14: Call 214-972-2020 or visit LASIK-Plano.com. Mention FunAsia 2020 for a free consultation.
13: Visionary Eye. See clearly. Live boldly.
15: ओए होए भाई, एक और नई गाड़ी, सच बता लॉटरी लगी है क्या?
16: लॉटरी नहीं यार, अच्छी क्रेडिट थी। जीरो डाउन पे गाड़ी ली और सीधे K2 ड्राइव पे लिस्ट कर दी।
15: K2 ड्राइव मतलब?
16: मतलब गाड़ी खुद पैसे कमा रही है, लिस्टिंग से लेके बुकिंग्स, DFW और लवफील्ड एयरपोर्ट पे ड्रॉप ऑफ और पिकअप, मेंटेनेंस सब K2 ड्राइव हैंडल करता है।
15: वाह, मैं भी अपनी पुरानी गाड़ी लिस्ट करा सकता हूँ?
16: 100%
17: नई हो या पुरानी, लिस्ट योर कार एट K2 ड्राइव एंड लेट योर कार अर्न यू मनी। विजिट K2 ड्राइव.com और कॉल 214-814-0402. Kato Drive, Dallas's smartest fleet partner.

0: And with that, ladies and gentlemen, I'll end my show for today, hoping you enjoyed it as much as I love bringing it to you every morning from 7 to 10 right here on the Fun Asia Network. It is 10 a.m.
1: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
2: Official tax and finance partner, AG Fintax.
1: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
3: हीरे मोती मैं ना चाहूं।
4: अच्छा, मैनिफेस्ट करने से पहले थोड़ा दोबारा सोच लो, क्योंकि अब डायमंड्स में मिल रहा है बाय टू गेट वन फ्री ऑफर। तन्मय ज्वेलर्स इन अविंग, डायमंड रिंग्स, पेंडेंट्स, इयररिंग्स और ब्राइडल ज्वेलरी पर बाय टू गेट वन फ्री, और वो भी सब कुछ होलसेल प्राइस पर। चाहे प्रपोजल हो, वेडिंग हो या बस अपनी स्पार्कल अपग्रेड करनी हो, अब शाइन डबल विद इन बजट। Luxury, brilliance, celebration. Tanmay Jewelers in Irving.
5: Taxes are not complicated or stressful with CPA Shalini Kodial on your side. You focus on growing your business while she handles the planning to mitigate your tax liability. She's honest, transparent and accountable, ensuring your business stays fully IRS compliant. Unlike many other CPAs who meet just once a year, Shalini meets with you every quarter. Call 281-760-5573 today or visit the website www.skodialcpa.com.
6: Please don't say your usual place again. I'm tired of the same food.
7: Excuse me. It's called being loyal.
6: It's called being predictable.
7: Okay then, let me surprise you. Let's go to Neon Cactus in Fairview.
6: And what's so special at Neon Cactus?
7: Went there with my office team last week. Mexican cuisine with global influences. Everything fresh, wonderful flavors, Zabia Halal options, and plenty of great vegetarian choices too.
6: Not bad.
7: Happy hours Monday to Friday, and amazing food and drink deals every day.
6: Okay, this I didn't expect from you.
7: Wait till you experience Neon Cactus. Neon Cactus, Fairview, Mexican cuisine with global influences.
8: Sunita, तुम्हारे बेटे के मार्क्स काफी इम्प्रूव हुए हैं ना रिसेंटली?
9: हाँ, बस थोड़ा राइट गाइडेंस मिल गया है।
8: सेम टीचर, सेम स्कूल, फिर भी मेरा बेटा स्ट्रगल कर रहा है।
9: डिफरेंस स्कूल का नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का होता है।
10: Introducing Lumity Learning Center, Frisco Prosper or McKinney ISD aligned curriculum that doesn't just match, it exceeds. Personalized math or English plans, certified teachers, continuous feedback, on-demand support, aur har bacche ke liye competitive edge. Try Lumity, you'll see the difference. Kids ages 5 to 13, Coit and Panther Creek in Frisco. Call 972-666-1181. Mention Fun Asia. Get $100 off your first month.
11: अरे भाई, वही तो नहीं होता हर बार हर ट्रिप के इतने झंझट।
12: Because you don't travel with Lawson. चाहे शादी के लिए इंडिया जाना हो, दुबई की लग्जरी शॉपिंग या यूरोप की ड्रीमी वेकेशन फोटोज, एक परफेक्ट ट्रिप के पीछे होता है एक परफेक्ट ट्रैवल पार्टनर, Lawson Travel. For nearly 30 years, Lawson Travel has been helping families plan stress-free international trips with the best airfares, vacation packages, cruises and customized travel solutions. Lawson Travel makes every journey smooth, affordable and tension-free. Call now 214-631-2458 or visit lawsontravel.com.
13: सब कुछ साफ रख सकते हो,
14: पर मुझ पे किसी की नजर नहीं जाती, कोई नहीं सोचता मेरे बारे में।
15: क्योंकि ये कौन बोला?
14: ये हम बोल रहे हैं आपके घर का डक्ट, जिसमें है डस्ट, पोलन, एलर्जेंस जैसी चीजें जो आपका कंफर्ट छीन रही हैं। और अगर आप सोचते हो कि मेरा तो घर नया है, मेरा तो साफ ही होगा, तो आप सही नहीं सोच रहे। हैवी कंस्ट्रक्शन डस्ट होती है मुझमें, मुझे भी साफ करना होता है। मेरा काम था बताना, अब बीमार हवा या स्वच्छ साफ हवा, आपको क्या चाहिए?
16: इसीलिए आज ही कॉल करिए डक टाइम को, जो 15 साल से घरों को साफ हवा दे रहा है। कॉल जीतू पटेल 972-877-2500.
17: Hi Dallas, this is Ranbir Kapoor and you're listening to Fun Asia Radio.

0: baby.
1: Variety is the spice of our station. Yeah, 104.9 FM.

0: Kumar.
1: डालस की धड़कन 104.9 FM फनीजिया रेडियो
2: You are tuned into Funisha Radio 104.9 FM और ये है गपशप गली with मीठू. Hello, नमस्कार and thank you very much for tuning in. मैं आप लोगों को लेकर जाने वाली हूँ इस म्यूजिकल जर्नी में, जहाँ पे 11 to 12 के बीच में हम कुछ रेट्रो म्यूजिक भी सुनेंगे और कुछ पुराने जमाने की बातें भी निकालेंगे आप लोगों के साथ. तो जी हाँ, उस कॉन्वर्सेशन के लिए भी रेडी रहें, लेकिन रेडी रहें फॉर फीफा अपडेट ऑल्सो दैट कम्स बिटवीन द 11:45 टू 12 सेगमेंट. बहुत कुछ और भी आपके लिए जो कि मैं लेकर आती हूँ आप लोगों के लिए, एक सेगमेंट जिसका सीधा सीधा डीलिंग होता है आज के दिन के साथ. 28th of May जो फिल्म्स रिलीज हुई हैं, कुछ उनके बारे में बताएंगे, कुछ आने वाली फिल्मों के बारे में भी बताएंगे. देर इज प्लेंटी टू टॉक अबाउट एंड देर इज प्लेंटी टू टॉक अबाउट द वेदर ऑल्सो, क्योंकि टेम्परेचर्स थोड़े से बढ़ रहे हैं, क्योंकि रेन चांसेस हमारे थोड़े से अब लोअर हैं. एंड वील टेल यू दिस विच इज ए टिपिकल लेट मे अर्ली जून वेदर पैटर्न दैट वी आर सीइंग राइट नाउ हियर इन Dallas Fort Worth. You are listening to Gupshup Gali with Neetu.

और इन सब में हमारी जो खाने की बातें हैं वो चलती रहती हैं, क्योंकि वी आर बिग टाइम फूडीज एंड आई थिंक आई से दिस ऑन द बिहाफ ऑफ एवरी बडी हियर कि टेल मी क्या आपके ऑलरेडी वीकेंड के प्लान्स बन नहीं रहे हैं? वीकेंड क्या मतलब फ्राइडे से ही शुरू हो जाता है और ऑलरेडी आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ कह रहे हैं कि यार इस वीकेंड ना यहाँ जाएंगे यार वहाँ जाएंगे. ये सारी बातों में ना पेज 3 इटरी को ज़रूर शामिल कीजिएगा. इट इज़ दैट वन प्लेस जहाँ पर आपको मॉडर्न फ्लेयर मिलेगा इनके खाने में, जो वो ट्विस्ट लेकर आते हैं, फ्यूजन फूड दैट दे ब्रिंग फॉर ऑल ऑफ अस, इट इज अमेजिंग. आई हैव विजिटेड नंबर ऑफ टाइम्स एंड आई कैन टेल यू यू कैन एंजॉय द टेस्ट ऑफ द प्लेस, द डिशेज देयर एंड ऑफकोर्स द एम्बियंस ऑफ द प्लेस एज वेल. एब्सोल्यूटली लव पेज 3 इटरी लेडीज एंड जेंटलमैन, जहाँ पे आपको सिजलिंग कबाब से लेकर फ्लेवरफुल चाट में जो वो फ्यूजन एलिमेंट मिलेगा बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों को, आई एम वेरी श्योर. टेल मी योर फेवरेट फ्रॉम देयर वेन यू विजिट, ऑल राइट? एंड वंस again it is page 3 eatery at hub 121 that you must remember. And you must also remember the number in the studio. It is 972-235-5555. This is Gupshup Gali with me too.

खता मेरी तो नहीं लेकिन आपकी जरूर हो सकती है अगर आपने ये हमारे स्टूडियो का नंबर सेव नहीं करके रखा हो. दिस इज व्हाट आई वांट यू ऑल टू डू. 9722355555 हमारे स्टूडियो का नंबर है. हम सब मिलकर यहाँ पे कोशिश करते हैं कि आप लोगों के साथ कुछ कॉन्वर्सेशंस स्ट्राइक करें और उन कॉन्वर्सेशंस में हिस्सा लेने के लिए या अपनी यू नो डेडिकेशंस या रिक्वेस्ट हम तक पहुँचाने के लिए द नंबर रिमेन्स द सेम 9722355555. Keep listening to Funisha Radio 104.9 FM.

0: Frisco is growing fast, and the future of our city needs experienced leadership. For more than 40 years, Rod Willhauer has helped build Frisco, creating jobs, supporting local businesses, improving infrastructure, and investing in the community he calls home. Rod believes in safer neighborhoods, smarter development, strong public services, and protecting the family values that makes Frisco special. This election, your vote matters. Vote Rod Willhauer for Frisco Mayor, because the next 4 years will define the next 40 for Frisco.
1: चिकन बनाना
2: ब्रो बनाना नहीं बनाना मतलब मेक द चिकन राइट
3: That's exactly what happens at Sal's Nashville Hot Chicken. They don't just make it, they make it unforgettable. Fresh ingredients, bold flavors, jumbo chicken tenders, Nashville sandwiches that actually hit. Located in Plano and Richardson, Sal's Nashville Hot Chicken, we fix hangry.
4: Hello? Accident claim? Okay. Name of the lawyer? Omar Khwaja.
2: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com
5: भूख लगी
6: है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है
0: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स रिच अवधि फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू ऑल अंडर वन रूफ एट Page 3 ईटरी ऑनेस्टली ये सिर्फ खाना नहीं है इट्स व्हाट योर मूड इज एक्चुअली क्रेविंग
7: अ क्विक बाइट अ परफेक्ट लंच एम्बियंस एंड एन इवनिंग दैट जस्ट फ्लोज इनटू द नाइट यू डोंट गो जस्ट एनीवेयर यू गो टू Page 3 हब 121 मैकिनी
8: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर दूं
9: अरे मैडम करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या
10: अब करेगा बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन स्टनिंग लहंगास एलिगेंट साड़ीज ब्राइडल ज्वेलरी मेंस एंड किड्स वेयर
11: इतना सब और प्राइस
10: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन अब हर आउटफिट बोलेगा
12: अबे जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना है
13: पनवेल हो या डेलस सफर तभी मस्त जब गाने हो जबरदस्त ओनली ऑन फन एशिया रेडियो
14: ट्रैक्स दैट पुट यू ऑन द राइट ट्रैक

एब्सोल्युटली एंजॉय दिस सॉन्ग. आर डी बर्मन का म्यूजिक है इस गाने के लिए और एस पी बी एंड अलॉन्ग विथ हिम इट वॉज अनुराधा पौडवाल. एक और एस पी बी का गाना, एक और आर डी बर्मन का गाना दैट आई वॉन्ट प्ले फॉर ऑल ऑफ यू. लेकिन बिफोर आई प्ले, लेट्स टॉक अबाउट वॉट वेदर इज यू नो प्लेइंग फॉर आज टूडे. इट्स द यूजुअल पैटर्न जो कि मे या अर्ली जून में हमें मिलता है, लेट मे या अर्ली जून में मिलता है. बस वैसा ही वेदर है. कुछ अगले कुछ दिन आपके लिए काफ़ी वार्म रहने वाला है, काफ़ी मगी रहने वाला है आपके लिए और मेरे लिए भी. डैलस फोर्ट वर्थ में ये चीज़ जो है हम एक्सपेक्ट ही करते हैं इस वक्त. और अपर 80s टू अराउंड 90s दैट द टेम्परेचर विल बी. रेन चांसेस हमारे रेस्ट ऑफ द वीक के लिए काफ़ी कम लग रहे हैं. आइसोलेटेड शावर या थंडरस्टॉर्म पॉसिबल है आज दोपहर को, आज दोपहर से लेकर एक्चुअली ऑल थ्रू संडे. बट द चांसेस आर वेरी लो. मोस्ट ऑफ द टाइम इट विल बी ड्राई. दैट्स व्हाट यू नीड टू नो. और नेक्स्ट वीक हमारे लिए एक और चांस है मंडे नाइट को ऑफ थंडर स्टॉर्म्स. इसके अलावा मोस्ट ऑफ द वीक लुक्स वार्म एंड ड्राई फॉर अस. आज का हाई कुछ 87 के आसपास होगा, लो होगा कुछ 71 के आसपास. टुमारो इट इज गोइंग टू बी 90, बट द हीट इंडेक्स इज गोइंग टू मेक इट फील क्लोज टू 100, लेडीज एंड जेंटलमैन. एंड दैट इज द केस विथ सैटरडे एंड संडे ऑल्सो, लेडीज एंड जेंटलमैन. 90s में हमारे मिड 90s तक का टेम्परेचर होगा, लेकिन क्लोज टू 100 तक की वो हीट इंडेक्स जो फील करवाएगी हमें. सो दैट्स द टेम्परेचर फॉर ऑल of you right now. It is 75 degrees. Ye hai Gapshap Gali with me too.

लिसन वाइल आई एम एट इट, एक और एसपीबी का गाना लेकर आने वाली हूँ आप सभी के लिए. आई एम श्योर यू गोइंग टू एंजॉय दिस नेक्स्ट ट्रैक ऑल्सो. लेकिन एक और चीज बताना चाहती हूँ विच इज नॉट अबाउट एंजॉयमेंट, लेकिन इट इज अबाउट गुड केयर एंड गुड सर्विस. फॉर 13 ईयर्स टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक हैज प्राउडली केयर फॉर आर कम्युनिटी. तो याद रखिएगा, एक ब्रांड न्यू नाम और सेकेंड फ्रिस्को लोकेशन जो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं ल्यूनॉक्सी मेडिकल, that is what you should remember and keep it at the top of your mind, so that whenever you want personal service and care in terms of health, aap zarur Dr. Mandeep Acharya aur unki team ko yaad karein. Lunoxy Medical brings primary care, urgent care, in-house lab testing, x-rays, CT scans, cardiac diagnostics and Himalayan Med Spa services, aur ye sari एक ही जगह पे आपको मिलेगी. एंड दैट्स ल्यूनॉक्सी मेडिकल इन फ्रिस्को दैट यू मस्ट विजिट. ओपन 7 days a week फ्रॉम 8 AM टू 8 PM. वॉक इन एनी टाइम, मिनिमल वेट टाइम इज वॉट दे प्रॉमिस, और फिजिशियन लेड केयर दैट यू गोना गेट देयर. पर्सनलाइज अटेंशन फॉर एवरी पेशेंट, दैट इज वॉट वी आर सीकिंग वेन वी गो टू दीज प्रोवाइडर्स, राइट? सो याद रखिएगा जरूर ल्यूनॉक्सी मेडिकल द फ्रिस्को लोकेशन दैट यू मस्ट चेक आउट. थैंक यू once again for tuning in.

0: 101.9 FM. Fun Asia Radio. Fun Asia Radio. Non-stop.
1: इस शहर को हुआ क्या? कहीं पे अंधविश्वास का काला साया, कहीं पे काला जादू, धुआं धुआं। क्यों सब उलझे हैं पारिवारिक समस्याओं में? कभी पढ़ाई तो कभी नौकरी की चिंता। जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों, तो वक्त है सही दिशा का।
2: पंडित रामनाथ जी, जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा। लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव,
3: विजिट psychicramnath.com, कॉल 4693474401। प्लेनो, मैकिनी, अर्बिंग और गार्लिन में उपलब्ध।
4: दूर रहकर भी देसी रहना आसान नहीं होता, पर जब मिले अपनी कल्चर की खुशबू, अपने खाने का टेस्ट, तो दिल कहता है दिस इज होम। वेलकम टू देसी मंडी लुइसविल, डायलस का सबसे बड़ा देसी ग्रोसरी स्टोर, जहां हर देसी एक रूफ के नीचे। नॉर्थ से साउथ, स्ट्रीट से फेस्टिव, हर टेस्ट, हर कल्चर एक ही जगह। प्योर देसी, फुल मंडी एक्सपीरियंस, अनमैच्ड वैरायटी, अनबिलीवेबल डील्स, ओनली एट देसी मंडी। देसी मंडी, पावर्ड बाय देसीज, लव्ड बाय डालस।
5: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार, खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है।
6: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे, ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स। मान्यवर मोहे, लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग।
7: आर यू लुकिंग टू ओन अ ग्लोबल रेस्टोरेंट ब्रांड? जय भवानी, एन एस्टैब्लिश्ड ब्रांड फ्रॉम इंडिया, बॉर्न इन गुजरात, इज एक्सपैंडिंग अक्रॉस टेक्सास। वी होल्ड द एक्सक्लूसिव फ्रेंचाइज राइट्स फॉर टेक्सास एंड आर इनवाइटिंग मोटिवेटेड एंटरप्रेन्योर्स टू जॉइन अस इन पार्टनरशिप विद अ लीडिंग हॉस्पिटल group. Call Sunil at 469-468-6021 or Lee at 214-576-6439.
8: Hey Dallas, still performing only for your bathroom mirror or the family WhatsApp group? Nah, it's time to level up. If you got talent, we got you. Whether you sing, dance, rap, do stand-up, play an instrument or have a hidden talent nobody sees coming, Fun Asia Network and Desi Got Talent USA are ready for you. Ages 4 and above, solo or squad, registrations are officially open. Register now at DesiGotTalentUS.com. Grand finale in Dallas, because the next viral Desi star could be literally you. For sponsorship details, call 201-962-5500. Desi Got Talent USA, your talent, your spotlight.
9: Tracks that put you on the right track.

0: एरियस गपशप गली विथ मी टू. यहाँ पे हमारी इस सेगमेंट में बातें होंगी फीफा के बारे में, बिकॉज फीफा डैलस ऑफिशियल होस्ट जो सिटी है, हम इसको चाहते हैं कि आप उसके पहले आपकी सारी होमवर्क रहे रेडी. एंड आपके लिए एक सवाल है, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू, और उस क्वेश्चन के बदले में पंचतारा रेस्टोरेंट की तरफ से आपके लिए है आलू कुलचा या फिर छोले भटूरे फ्रॉम पंचतारा रेस्टोरेंट. दो लोकेशंस हैं इनकी, एक है एलन में और एक है फ्रिस्को में. तो आप जीत सकते हैं इधर आलू कुलचा या छोले भटूरे, डिपेंडिंग ऑन विच डे यू गो एट देयर्स, आपको ये मिल सकता है. और ये कैसे मिल सकता है कि अगर मुझे आप सिंपल सा एक सवाल जो है उसका जवाब दे दें, एंड दैट सिंपल सा सवाल इज, या वी नो दैट डैलस इज वन ऑफ द ऑफिशियल होस्ट सिटी फॉर द फीफा वर्ल्ड कप 2026, करेक्ट. 9 मैचेस होने वाले हैं डैलस स्टेडियम में, जो कि AT&T स्टेडियम है यार अपना, लेकिन दुनिया ग्लोबली से जाना जाएगा एज डैलस स्टेडियम फॉर कन्वीनियंस, ओके. उसमें से 5 ग्रुप स्टेज गेम्स हैं और 2 राउंड ऑफ 32 टाइज है, एंड ए राउंड ऑफ 16 मैच, एंड द फर्स्ट सेमीफाइनल विच इज टू बी प्लेड इन द मंथ ऑफ जुलाई. लेकिन मुझे आपसे पूछना है कि यहाँ पर डैलस में, हमारे डैलस स्टेडियम में गेम्स कब से शुरू हो रही हैं. देखिए, वैसे तो फीफा जून 11 से शुरू हो रहा है, लेकिन हमारा पहला गेम यहाँ पर नेदरलैंड्स वर्सेस जापान का, वो कब होने वाला है डैलस स्टेडियम में. लेट्स फाइंड आउट कि ये जो सारी फीफा की इन्फॉर्मेशन इस सेगमेंट में देती हूँ, आप कितने ध्यान से सुनते हैं. सो वंस अगेन टेल मी, डैलस स्टेडियम में ये जो फीफा का पहला गेम होने वाला है नेदरलैंड्स वर्सेस जापान का, वो कब होने वाला है. यू आर लाइव ऑन एयर, लेट्स हियर इट फ्रॉम यू, एंड होपफुली आपने पंचतारा रेस्टोरेंट से पहले नहीं जीता हो. लेट्स हियर इट देन.
1: हाय, इज इट जून 14th?
0: इट इज जून 14th. क्या नाम है आपका?
1: किरण.
0: किरण, कंग्रेचुलेशंस टू यू.
1: नहीं नहीं, हिरल.
0: फिर से बताना.
1: HIRAL.
0: हिरल. ऑल राइट, सी वी हैव अ वंडरफुल आरजे कॉल किरण, तो इसीलिए वो खनक रही है मेरी, ऑटोमेटिकली मैं किरण पे लैंड कर गई. ऑल राइट, सो हिरल, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल. आपको निसंदेह यू आर विनिंग फ्रॉम पंचतारा रेस्टोरेंट, कंग्रेचुलेशंस. क्या पसंद है आपका, आलू कुलचे या छोले भटूरे, बताइए.
1: Do I have to decide now or
0: no? Not at all. ये तो मेरी खुद की curiosity होती है, तो मैं जनता से पूछ लेती हूँ.
1: आपकी curiosity के लिए छोले भटूरे, depends on the mood.
0: Depends on the mood. Of course, सच्ची में हमारा हर दिन वो सेम थोड़ी ना खाने का मन कर सकता है. हमारा अलग अलग अलग दिन पे अलग अलग चीजें हमारे खाने की मन करता है. तो ठीक है, पंचतारा रेस्टोरेंट से ये जो गिव अवे है आपके लिए, डू होल्ड द लाइन फॉर मी. मैं आपको आपके लिए ये गिव अवे पूरा डिटेल आपकी लेती हूँ ऑफ एयर. फिलहाल एक गाना हो जाए. और जी हाँ, जून 14 को डैलस स्टेडियम में पहला गेम जो होने वाला है, इट्स नेदरलैंड वर्सेस जापान. जून 17 को इट्स इंग्लैंड वर्सेस क्रोएशिया, एंड जून 22 को अर्जेंटीना वर्सेस ऑस्ट्रिया. विल मोर फीफा स्टोरीज फॉर ऑल ऑफ यू राइट हियर.

वेल हम भी खोने वाले हैं फीफा वर्ल्ड कप, जो यहाँ पर जो फीवर ऑलरेडी शुरू हो चुका है. पहला गेम जो है नेदरलैंड वर्सेस जापान का, वो है नवंबर कहाँ से आया यार, जून 14th को होने वाला है. और यही सही जवाब दिया हीरल ने. एंड मुझे लगा कि हीरल शायद मेरा ये सेगमेंट ना बड़ी ध्यान से सुनती होंगी, इसीलिए सारे डेट्स वेट्स, क्योंकि मैं अक्सर बताती रहती हूँ ये इस सेगमेंट में, तो मुझे लगा कि ये मेरे शो को ना ध्यान से सुन रही हैं, इसीलिए इनको पता था. नहीं, इनके सुपुत्र जो हैं, इनके बेटे इज गोइंग टू गो फॉर द मैच. हे अमेजिंग, वील गेट फर्स्ट हैंड रिपोर्ट फ्रॉम सुकेत इन दैट केस. Thank you so much for sharing all the info with us. Panchtara restaurant ki taraf se inko to giveaway mil chuka. Ab baaki logon ke liye ye hai ki Dallas ke historic Fair Park mein World Cup hub jo ye Dallas ka hone wala hai, transforming into a 1 million square foot soccer village, open from June 11th to July 19th. This free 34-day FIFA fan festival will feature massive main stage screens, interactive mini pitches, cultural events, concerts, और साथ ही साथ लोकल फूड वेंडर्स भी. और पता है आपको फीफा के बारे में मुझे आपको और भी कुछ बताना था, आज नहीं है तो कल बता देते हैं, क्योंकि हमारा ये सेगमेंट जो 15 मिनट का होता है, इट इज़ ऑल अबाउट फीफा, लेडीज एंड जेंटलमैन. तो कल बताने वाली हूँ मैं आपको फीफा की ये जो कुछ थोड़ी सी जो इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई है, आप अगर आपको नहीं पता तो कल तक थोड़ा सा वेट कर लें, नहीं तो बता दूं क्या. चलिए बता ही देती हूँ. फीफा वर्ल्ड कप शुरू होने में कुछ ही दिन रह गए हैं, राइट, और ये डैलस स्टेडियम में जो होने वाला है, और यहाँ पे कुछ चीज़ों के लिए फीफा के फैंस जो हैं, स्पोर्ट्स लवर जो हैं, ये कुछ परेशान हैं, कुछ दुखी हैं, कुछ अपसेट हैं, कुछ गुस्सा हैं, और रीज़न है वो मैं आपके लिए ब्रेक डाउन करना चाहती हूँ. टिकट प्राइसेस और सीट प्लेसमेंट, ये दो मुद्दे हैं जिनके कारण वो बहुत परेशान हैं. सी, फीफा इज़ फेसिंग ह्यूज बैकलैश बिकॉज दे यूज दिस डायनामिक प्राइसिंग फॉर द फर्स्ट टाइम, विच मेक्स टिकट प्राइसेस फ्लक्चुएट बेस्ड ऑन डिमांड. और इसी के लिए ये काफ़ी कंट्रोवर्सी जो खड़ी हुई है. एंड टू कंट्रोल द डैमेज, फीफा रिलीज ए टाइनी 1.6% एलोकेशन ऑफ कैप्ड $60 टिकट्स, जो बहुत ही कम नंबर में शायद था. एंड सिटीज लाइक न्यूयॉर्क आर ट्राइंग टू ऑफर स्मॉल $50 लोकल डिस्काउंट्स. ये सारी चीज़ें हो रही हैं बैकग्राउंड में, ठीक है. सीट प्लेसमेंट, ये एक और बड़ा इशू है, जिसे आप धोखा कह सकते हैं या कन्फ्यूजन कह सकते हैं. पिछले साल फीफा ने प्रॉमिस किया था कि टिकट कैटेगरीज बड़ी सिंपल होंगी, आप पिच से कितने पास हैं फ्लोर बाय फ्लोर उस हिसाब से सीट मिलेंगी. बट व्हेन सेल्स स्टार्टेड दे वेंट बैक टू द ओल्ड कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम, पुटिंग साइड लाइन एंड अपर लेवल सीट्स इनटू रैंडम एक्सपेंसिव टियर्स. टू मेक थिंग्स वर्स, अप्रैल में उन्होंने सडनली एक प्रीमियम फ्रंट रो कैटेगरी बना दी, और जिन्होंने पहले से टिकट ली रखी थी उन्हें बेकार सीट्स पर शिफ्ट कर दिया गया है. एंड दैट इज द कंटेंशन दैट पीपल हैव with the organizers now. अब एक official investigation शुरू हो चुका है, and the attorneys general of New York and New Jersey have launched an investigation into FIFA's ticketing practices around the 2026 World Cup, focusing specifically on the matches due to take place at MetLife Stadium in East Rutherford in New Jersey. So ये जो मतलब आप सोचें जिस तरह की चीज़ें चल रही हैं, it is not acceptable, और जनता गुस्से में है, और इसीलिए ये इन्वेस्टिगेशन जो शुरू हुआ है. लेट्स सी व्हाट हैपेंस टू दैट. कुछ ही दिन रह गए और ये सारे कांड हो रहे हैं. दिस इज गपशप गली विथ मीठू.

0: Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes, and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
3: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth at mytimeequity.com for professional advice.
4: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
5: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
6: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं। जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
7: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
6: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
8: रितेश, कभी सोचा है कल अगर तुम नहीं रहे तो मेरा क्या होगा?
9: अरे रिलैक्स, सब तुम्हारा ही तो है।
8: सच? या फिर कोर्ट डिसाइड करेगा?
9: वेट, What?
10: Yes, अगर proper estate plan नहीं है तो आपकी family के decisions court लेता है।
11: Hi, this is Deepti Varma with NRI Wealth. मैं families को help करती हूँ उनकी मेहनत को protect करने में, the right way with estate planning.
10: अगर आपके पास सिर्फ will है या कुछ भी नहीं है तो ये call delay मत कीजिए। Call 669-243-5799. That's 669-243-5799 for a free 15-minute consultation.
12: मामू, देखो क्या हो गया।
13: ओ, क्या हो गया?
12: नई गड्डी ली थी, इतने में दम तोड़ दिया, और आपकी इतनी पुरानी मर्सिडीज अभी भी नई जैसी कैसी चल रही है।
13: ओए, जर्मन का कमाल है।
12: मेरी गड्डी भी तो जर्मन है।
13: ओए, नहीं ओए, जर्मन मोटरवर्क्स रिचर्डसन, मर्सिडीज, ऑडी, बीएमडब्ल्यू, वीडब्ल्यू और सारी गाड़ियों का काम वही करते हैं और A1 करते हैं यार। तू नंबर लिख मुन्नी, 972-690-6623, कॉल कर दे और बोल गिरधारी लाल ने भेजा है यार।
14: जर्मन मोटर्स, कीप योर ड्राइव फ्लॉलेस।
15: बिग अचीवमेंट्स डिजर्व अनफॉरगेटेबल सेलिब्रेशंस। Host your kids' graduation party at the Flavor Lounge in Frisco, where great food meets great memories. And if you want to host the party at your place, no worries. You can also order for catering services only. Fresh Tray Catering, custom menus for small or large gatherings. Everything in perfect style. Call now 469-712-3591 or visit theflavorlounge.com. The Flavor Lounge. You celebrate. Flavor hum sambhal lenge.
16: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
17: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
16: Kya matlab?
17: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
16: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
17: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
16: Ab to karna hi padega, madam.
18: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
19: Bollywood ka ultimate heartthrob, Arjun Rampal is coming to Dallas with a special DJ performance. Get ready for the Rampage Tour on May 31st at Club Vivo Dallas. Doors open at 9 PM, strictly for 21 plus. For tickets and table reservations, contact Isha at 469-560-5560.
20: डालस की धड़कन 104.9 FM, Phonesia Radio.
21: थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन. ये है गपशप गली विथ मी टू. और इस गपशप की गली में हम बात करने वाले हैं आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ के बारे में जो शायद आपने पहले नहीं सोचा हो, या अगर सोचा हो तो वक्त है कि आप शेयर करें हमारे साथ. 972-235-5555 नंबर इन द स्टूडियो. लेडीज एंड जेंटलमैन, लेट्स गेट यू ऑन द एयर वेव्स एंड टॉक अबाउट सम नॉस्टैल्जिया. हाउ अबाउट दैट? चलें कुछ नॉस्टैल्जिया से ही शुरू करते हैं. 90s का ये गाना आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ, तो चलें यहीं से शुरू करते हैं. एंड इट इज दिस ट्रैक दैट आई एम गोइंग टू पिक प्ले नेक्स्ट फॉर ऑल ऑफ यू. चलें

This part of my show is brought to you by AG Fintax, one of the fastest growing tax firm in the US. AG Fintax ki jo team hai, headed by Anil Grandi sahab, ye jo hai, ye deploy karte hai solution centric and analytical approach that empowers clients to improve efficiencies through smart functions, intelligence workflows and customized care. To deri kis baat ki, if you think you need that financial service from that, those innovative financial services with untapped potential for both individuals and businesses that they have for all smart business owners as well, zaroor jaye inki website pe, lot of information that you will get there, agfintax.com. lekin har baar ki tarah aaj phir kehne wali hu ki baat zaroor kijiyega, that gives you the check on what you feel about the place. All right, once again, agfintax.com has all the information including the number jo main aapse आपसे शेयर करने वाली हूँ, 4699429888, दैट्स द नंबर. स्टूडियो का नंबर लिख लीजिए भाई, 9722355555, क्योंकि हम इस सेगमेंट में जो करते हैं वो है आपसे वार्तालाप, यानी कि कॉन्वर्सेशन, एंड कॉन्वर्सेशन इज ओनली पॉसिबल अगर टू वे हो, है ना. तो इसीलिए सारे लाइंस ओपन है, जरूर बताइएगा. नॉस्टैल्जिया एक्सप्रेस में सवार करने वाली हूँ आप लोगों को, एंड आई वॉन्ट टू नो फ्रॉम ऑल ऑफ यू. क्या है ना कि कुछ हफ्ते पहले मैंने एक फिल्म देखी, ठीक है, और मैं मतलब वही जो एक्सपीरियंस था उसके बारे में सोच रही थी, यू नो, दोस प्लश रिक्लाइनर सीट, और फिर उसमें एक बड़ा वाला पॉपकॉर्न, कितना, 15-18 डॉलर का जो भी होता है, वो लेकर अच्छे से अपना कोक वगैरह लेकर हम बैठे, एंड ऑल ऑफ दैट, आई फेल्ट लाइक क्वीन रियली. लेकिन मुझे ना इस बात से ये लगा कि मैं अगर 20-30 साल पीछे चली जाऊँ, हाँ, अपने स्कूल कॉलेज के टाइम तक मैं पहुँचूँ अगर, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता था, ना एसी होता था, ना इस किस्म के कंफर्टेबल चेयर्स होते थे. आई एम टॉकिंग बैक इन इंडिया, और यहाँ पर भी आई एम श्योर द एक्सपीरियंस यूज टू बी वेरी डिफरेंट, येट फैंटास्टिक, राइट. तो मुझे आप लोगों से पूछना है कि भाई अगर मैं अगर कहूँ कि एक मेजर डिफरेंस बताएं दैट यू सी इन द मूवी थिएटर एक्सपीरियंस टूडे कंपेयर टू वेन यू वर इन स्कूल और कॉलेज, लेट्स से 20, 30, 40, 50 ईयर्स, वट एवर, ठीक है, वो मतलब बेसिकली आप चाहे यहाँ रहे हो या अपने कंट्री में रहे हो, चाहे वो इंडिया हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, मुझे जानना है तब वर्सेस अब क्या फ़र्क है आपको लगता है, दैट वन थिंग यू प्रोमिनेंटली सी कि ये डिफरेंस है यार उस वक्त के मूवी वॉचिंग एक्सपीरियंस वर्सेस इस वक्त के मूवी वॉचिंग एक्सपीरियंस में. 9722355555. भाई देसी मंडी का अगर गिव अवे चाहिए ना, यानी कि वो तगड़ा ग्रोसरी हैम्पर फ्रॉम द बिगेस्ट ग्रोसरी स्टोर इन डैलस विच इज़ इन लुइसविल, देसी मंडी से अगर चाहिए तो भाई कॉल तो करना पड़ेगा. बाकी मूड मैं बनाने में काफ़ी माहिर हूँ, तो ये रहा वो गाना Which will take you to yesteryears. और इस गाने के बाद हम आपके कॉल्स लेना शुरू करेंगे, ठीक है, 9722355555. This is Gupshup Gali with me too.

0: All right, ladies and gentlemen, ये गाना actually 80s की ये फिल्म से जो है हीरो मीनाक्षी सेशाद्री आर ओन डालस रेसिडेंट हु इज इन दिस फिल्म. और वापस से अगर इंस्टाग्राम पे अगर आप चेक करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि हाउ इंटरेस्टेड शी इज़ टू गो बैक टू मूवीज और डू शोज एंड ऑल ऑफ दैट. शी इज़ वेटिंग फॉर जस्ट द राइट रोल. अभी हाल ही में मेरे ख्याल से एक आध दिन पहले उन्होंने एक ऐसे मैसेज उन्होंने डाला है इंस्टाग्राम में आस्किंग द मेकर्स, द फिल्म मेकर्स एंड शो मेकर्स टू reach her out directly. And that is, ladies and gentlemen, our very own Meenakshi Seshadri. अब बात आ रही है फिल्मों की. जी हाँ, मैं जानना चाहती हूँ तब वर्सेस अब क्या ख्याल है आप लोगों का. What is that one big difference that you see at movie theaters? The experience I'm talking about, जो कल यानी कि 20-30 जब भी आप स्कूल कॉलेज में थे आप समझ लें उस वक्त से अब में क्या फर्क है. You're live on air.
1: मुझे लगता है कि पहले के बारे में वी यूज़ टू गो विद फैमिली एंड जब भी मूवीज रिलीज होती थी वी यू नो वी हैड टू प्लान इट लाइक ऑलमोस्ट 2-3 हफ्ते पहले टिकट आ जाती थी.
0: बिल्कुल.
1: एंड वी वुड बी आल्सो एक्साइटेड बिफोर.
0: या
1: घर पे तो हम जमीन पे बैठ के खाना खाते थे. मूवी हॉल में वो प्लास्टिक भी नहीं था तो मुझे लगता था कि वाओ एसी पे बैठे हैं या यू नो स्ट्रॉन्ग फैंस हैं और ऊपर से बैठ के देख रहे हैं. बट फैमिली इज लाइक अ पॉइंट इट इज समथिंग दैट वी वुड लुक फॉरवर्ड टू.
0: यस.
1: ऐसा है कि मतलब ऑनलाइन कॉन्टेंट खत्म हो गया है तो फिर चलो देख लेते हैं ऑनलाइन यू नो ऑनलाइन
0: और या दैट इज सो ट्रू, दैट इज सो ट्रू. यू नो आपने बिल्कुल सही दो पॉइंट्स निकाली हैं. एक तो ये भी है ना कि आजकल के दिन में ना हमें पता है कि कुछ दिनों में OTT प्लेटफॉर्म पे आ ही जाएगी ये फिल्म, तो आराम से घर पे बैठ के देख सकते हैं, वो भी एक ऑप्शन हो गया है. पहले के दिन में ना ये होता नहीं था. आई यू ऑन स्पीकर फोन बिकॉज आई एम गेटिंग लॉट ऑफ डिस्टर्बेंस ऑन दिस लाइन.
2: I'm on the way to work.
0: Oh, I see. What's your name again? You said Purvi?
2: Urvi. U-R-V-I.
0: Urvi. Urvi. Thank you very much for your call. Very pertinent points that you have picked. हम पहले कैसे entourage के साथ जाया करते थे ना, मतलब पूरा कुंबा जाएगा. जब जाएंगे तो सारे साथ मिलके जाएंगे. ऐसे वो जाने का मजा भी कुछ अलग होता था.
2: और अब तो ऐसा लगता है कि अगर प्लान करना है तो कैलेंडर बुक करो पहले से बताओ कुछ और प्लान हो जाते हैं. I think you know physical comfort is there with the chairs and everything. But emotionally you don't feel the same thing as you would feel before.
0: Urvi, you are so right. Bilkul bang on. Thank you very much. Keep listening. Haan, thode se office 5 minute thode se der pahunchna kyunki kya pata aapko inaam mil jaye. ठीक है, कीप लिसनिंग. 972-235-5555 नंबर इन द स्टूडियो. यू आर लाइव ऑन एयर. वालेकुम अस्सलाम. बताइए क्या एक्सपीरियंस है पिछले जमाने का और इस जमाने के मूवी वॉचिंग का.
3: हाँ, पिछले जमाने में होता था कि इंटरवल हो पिक्चर मूवी में तो फिर फौरन चाय वाले और समोसे वाले. हम लोग तो वेट करते थे कि इंटरवल हो और ये लोग

0: सब लेकर निकलते थे और फिर
1: बिल्कुल। और एक्चुअली लंबी लाइन लगती थी समोसे वाली जगह पे, है ना, वो एक एक्सपीरियंस ही कुछ अलग होता था। ओ गॉड, आपने बिल्कुल याद दिला दिया मुझे। ओ गॉड, थैंक यू। व्हाट्स योर नेम?
0: लेकिन अब तो ये होता है कि इंटरवल हो तो फिर अपने बच्चे जाते हैं लेकर आते हैं कुछ भी खाने के लिए
1: हाँ, विच इज
0: नीचे।
1: मोस्टली पॉपकॉर्न्स एंड कोक एंड ऑल ऑफ दैट। वो जो समोसे और चाय का मजा ना, कुछ अलग ही होता था कि वो
0: वो
1: चाय।
0: तो अलग ही होता था।
1: हाँ,
0: राइट,
1: क्या नाम है आपका?
0: रशीदा।
1: रशीदा जी, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। गोइंग टू दिस लास्ट कॉलर, फनीचर रेडियो, यू आर लाइव ऑन एयर।
2: जी, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू?
1: आई एम डूइंग फैब, आप बताइए, आप कैसे हो? क्या नाम है आपका?
2: तो भैया
1: सुरैया जी, हाँ बताए।
2: वो हम सफी की पसंद है ना, हम देसी मंडी गए थे कल, इतनी मजे की खाना था वहां पे, और वी
1: अरे
2: लव दैट फूड।
1: वाह,
2: एंड
1: अमेजिंग।
2: और वो मन और जो है वो स्टोर भी बहुत अच्छा है, रीजनेबल प्राइस भी था अभी, तो हमको तो बहुत अच्छा लगा। लेकिन इट्स 1 आवर से ज्यादा हमको ड्राइव करना पड़ा, बट
1: हाँ,
2: इट्स वर्थ।
1: इट्स वर्थ इट। देखिए,
2: और
1: देसी मंडी, इससे अच्छा प्रमोशन क्या ही हो सकता है उनके लिए, जब एक उनके खुद के कस्टमर ये चीज बताते हो। थैंक यू फॉर
2: जी,
1: दैट
2: और वो
1: फीडबैक।
2: हाँ गली, वो आपका उसका था ना पिक मूवी का,
1: हाँ जी,
2: वो मूवी है ना, मैंने अपने होम टाउन में देखी थी, बहुत पहले देखी थी मैं, तो
1: कौन सी?
2: चौदहवीं का चांद देखी थी
1: अच्छा
2: मैं,
1: अच्छा
2: तो उसकी उस वक्त उस थिएटर में टिकट है ना 1 रुपया 25 सेंट्स की, पैसों की टिकट
1: बताइए,
2: थी।
1: गॉड, दिस इज
2: तो हम अपने कजन्स हम अपने
1: हाँ
2: कजन्स के साथ गए, इतना मजा आया। फिर हम अगर आप अभी भी कितने 500 की भी अगर आप टिकट लेके बैठे ना, तो आपको शायद वो मजा नहीं आएगा।
1: वो
2: वो
1: मजा नहीं
2: बेहतरीन मूवी
1: आएगा।
2: थी।
1: बिल्कुल, बेहतरीन फिल्म थी। और फिर उसके अलावा द फैक्ट दैट इतने टाइम की एक प्लानिंग चलती थी फैमिलीज की, कि अगर वो भी जाना है तो एक खर्चा है और उसे बजट करके और वो सारा कुछ। लास्ट कॉलर, लेट्स क्विकली टेक ऑन एयर वेरी ब्रीफली। ओके, ऑल राइट, दिस कॉलर हैज ड्रॉप द कॉल। तो इस बात पे चलिए, उर्वी को मैं बोलने वाली हूँ कि देसी मंडी का जो गिव अवे है ये आपके नाम किया। उर्वी, प्लीज कॉल मी बैक इफ यू आर स्टिल लिसनिंग टू मी, गिव मी अ कॉल बैक। ऑल राइट, वंस अगेन, दिस इज द नॉस्टैल्जिया दैट वी वर टॉकिंग अबाउट, है ना, कि जब हम पहले के ज़माने में जाते थे मूवी देखने, उसका एक्सपीरियंस वर्सेस अब का एक्सपीरियंस।

0: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
1: कौन सा?
0: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
1: अरे सारे तो सेम है।
0: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये ये ये देखो, ये वाला।
1: ओ हाँ, ये तो अलग है।
2: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection, now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
3: Craving delicious Indo-Chinese and North Indian food? Red Hot Chili Pepper is the place to go. With locations in Frisco, McKinney, Richardson and now our newest location in Allen at Waters and 121. Whether you're dining in, taking out or catering, Red Hot Chili Pepper is Dallas's number one choice for Indo-Chinese and North Indian cuisine.
4: तुमने फिर कार्ड यूज किया?
5: करना पड़ा, फीस ड्यू थी और ऑलरेडी लेट हो चुके हैं पेमेंट्स में।
4: पर मैंने अभी चेक किया, हमारा क्रेडिट स्कोर और गिर गया, कैसे मैनेज होगा सब?
5: मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
2: हर घर की यही कहानी, पर सच यही है, क्रेडिट स्कोर अपने आप ठीक नहीं होता। Zeno Credit Repair helps you challenge inaccurate, outdated या unverifiable items on your report. No upfront fees, full transparency and the right to cancel anytime. Call 1-800-400-9468. Zeno Credit Repair. Fix your score, fix your life. Zeno Credit Repair does not guarantee results. You have the right to dispute inaccurate information on your credit report yourself, free of charge. Services provided under written contract with a 3-day right to cancel.
6: घर की याद नहीं आई तुझे जैसी?
7: आती है यार, बहुत आती है, इसलिए तो घर जैसा टेस्ट ढूंढता रहता हूँ।
4: अब और ढूंढने की जरूरत नहीं, विजिट चंडीगढ़ वाले, जहाँ हर बाइट में मिले असली पंजाबी घर का टेस्ट।
7: सच में? बिल्कुल घर जैसा।
4: ट्राई द वैरायटी ऑफ वेज एंड नॉन वेज स्पेशलिटी कुल्चास विद ग्रेवी, बटर चिकन एंड मेनी मोर। लोकेटेड इन इरविंग, देयर इज पंजाबी घर का खाना ऑन एवरी प्लेट। चंडीगढ़ वाले, टेस्ट दैट फील्स लाइक होम।
2: आर यू अ सेल्फ एम्प्लॉयड और बिजनेस ओनर एंड हैव प्रॉफिट्स? स्ट्रेस्ड आउट बिजनेस के कुछ सिम्टम्स है, प्रॉफिट्स है बट नो कैश लिक्विडिटी। हर साल टैक्स बिल्स के साथ टैक्स सीजन का एंग्जाइटी। डायग्नोसिस क्लियर है, आपके बिजनेस को चाहिए स्मार्ट टैक्स प्लानिंग, क्लीन बुककीपिंग और एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल स्ट्रेटजी। एजी फिनटैक्स, फाउंडेड बाय फोर्ब्स काउंसिल मेंबर अनिल ग्रांथी। फ्रॉम टैक्सेस टू CFO एडवाइजरी, बिजनेस ओनर्स के हर चैलेंज का एक ही सोल्यूशन। कॉल 425-395-4318 और विजिट agfintax.com। प्लान टुडे, ऑप्टिमाइज योर कैश फ्लोज विद एजी फिनटैक्स एडवाइजरी सर्विसेज। Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
8: हर समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास। 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में।
2: That magic removal हो, love and relationship issues हो, get trusted solutions with 100% privacy.
8: Thousands की लाइफ बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से। Now it's your turn. समस्या का पक्का समाधान, एस्ट्रोलॉजर ईश्वर। Call now 9455270897 और विजिट astrologereeshwar.com.
2: Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
9: Calculating route, rerouting, rerouting.
2: अरे ये क्या, मुझे मेरे वाले ग्रोसरी स्टोर में जाना है।
9: Location upgraded. Now heading to India Bazaar Fort Worth.
2: क्यों?
9: क्योंकि Fort Worth, Keller, Hazlitt और Hearst के स्मार्ट लोग जानते हैं। डेली ग्रोसरीज हो या पूजा essentials, authentic Indian products और घर की हर जरूरत। Find everything Desi at India Bazaar in Fort Worth.
2: अच्छा, तो सीधा वही ले चलो।
4: इंडिया बाजार एट 5152 क्वाड्रेंट वे, फोर्ट वर्थ। स्विच द रूट,
9: योर न्यू डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड।
10: हाय, दिस अक्षय कुमार एंड यू आर लिसनिंग टू फन एशिया रेडियो।
11: डालस की धड़कन 104.9 FM, फन एशिया रेडियो।

0: मेड इन इंडिया तो नहीं था, लेकिन ये जो सर्व किया जाता था खाना, ये इटली का था, लेकिन यहाँ यूएस में शुरू किया था दो भाइयों ने मिलके $600 के लोन पर फ्रॉम देयर मदर, एंड द टू ब्रदर्स आर डैन एंड फ्रैंक कार्नी, और उन्होंने ये जो फ्रेंचाइज है ये शुरू किया था। उसका पहला जो रेस्टोरेंट था वो फर्स्ट स्मॉल रेस्टोरेंट दैट वॉज ओपन्ड इन विचिता इन कैंसस सिटी, एंड आपको बताना है मुझे कि वो जगह क्या है। May 31st, 1958 को खोला था डैन एंड फ्रैंक कार्नी ने, ये फाउंडिंग ब्रदर्स ऑफ ए प्लेस दैट बिकेम अ चेन, ए वेल नोन चेन दैट स्टिल रन्स सॉलिड। एंड वो जगह क्या है वो आपको बताना है मुझे, और अगर आप सही सही बताएंगे ना तो आपके लिए मेरे पास एक गिव अवे है, और वो गिव अवे ना इट इज फ्रॉम दिस प्लेस is called let's see if I can quickly pull it out for you. Yes, it's from Sal's Nashville, और ये Sal's Nashville hot chicken का जो giveaway है ये है free 3 jumbo tenders that you can win, and it is in Richardson, और आप ये redeem कर सकते हैं 5 जून तक। जरूर बताएं मुझे कि क्या है वो जगह, किस restaurant की यहाँ पे बात हो रही है, किस eatery chain की यहाँ पे बात हो रही है जो Dan और Frank Carney ने May 31st, 1958 को शुरू किया था। और ये मैं इसीलिए आज शेयर कर रही हूँ, मैं 31st को भी शेयर कर सकती थी, आज क्या है 28th है ना, 31st संडे है और संडे को मैं आती नहीं हूँ, इसीलिए मैंने सोचा कि आज ही कर लेती हूँ ये शेयर। तो बताइएगा ज़रूर कि इफ यू नो विच चेन आर वी टॉकिंग अबाउट हियर। इट्स अ टफ क्वेश्चन आई नो, लेकिन इटली की शान है, इटली का शान ये खाना। चलिए मैं लेती हूँ इनको ऑन एयर, लेट्स सी इफ दे नो व्हाट प्लेस आई एम टॉकिंग अबाउट। Yes, you are live on
1: Hi, this is Mugda. It seems to be Pizza Hut.
0: It is Pizza Hut. Did you Google? Sachi sachi batana.
1: I definitely Googled it. I didn't know.
0: I appreciate your honesty, first of all, and I appreciate your curiosity also. So, Sal's Nashville Hot Chicken ki taraf se aapke liye free 3 jumbo tenders that you're going to get at this Richardson location, and you have to redeem by June 5th. Lekin na ek aur inka challenge hai, Sal's Chicken ka. I'm going to put you on hold, okay? And I'm going to take all the details while I share this Sal's Chicken Inferno Spice Challenge that they have for everybody else, all right?
1: Sure, absolutely.
0: Thank you, Mugda. Thank you for that prompt answer. You definitely deserve this next gana by Nazia Hassan. ये लगाती हूँ और आके वापस मैं बताती हूँ आपको Sal's Chicken का जो Inferno Spice Challenge है, all right?

Zeenat Aman looking absolutely hot in that one. और यहाँ पर मैं ना hot chicken Sal's Nashville hot chicken के जो giveaway है मुग्धा को मिल चुका है free 3 jumbo tenders from theirs. रिचर्डसन में है ये लोकेशन और मैं यहाँ पे एक और चैलेंज लेकर आने वाली हूँ उन लोगों की तरफ से सैल्स चिकन की तरफ से एंड दे आर ब्रिंगिंग दिस अल्टीमेट इन्फर्नो स्पाइस चैलेंज. तो ये इन्फर्नो स्पाइस चैलेंज क्या है बहुत इंटरेस्टिंग है. तो क्या होगा कि आप जाओगे वहाँ पे आपको 10 मिनट मिलेगा 3 जम्बो एक्स्ट्रा हॉट टेंडर्स खाने के लिए विथ ओनली 1 कप ऑफ मिल्क दैट यू कैन गेट विथ इट क्योंकि स्पाइसी है इसमें तो कोई शक ही नहीं है. और इसके अलावा आपको डिपिंग नहीं मिलने वाली कि आप थोड़े से काम डाउन हो सके ऐसा नहीं होगा. तो 10 मिनट के अंदर आपको 3 जम्बो एक्स्ट्रा हॉट टेंडर्स ख़त्म करने हैं एंड द प्राइजेस दैट इज़ गोइंग टू रियली ब्लो योर माइंड. अब प्राइजेस के बारे में बताती हूँ. अगर आप एक जम्बो टेंडर फिनिश कर पाते हैं तो आपको मिलता है फ्री सैंडविच एवरी डे फॉर 7 डेज. कैन यू बिलीव दैट. अगर आप 2 जंबो टेंडर्स फिनिश करते हैं 10 मिनट के अंदर अंदर का जो टाइम है यू कैन एंजॉय फ्री सैंडविचेस फॉर 15 डेज एंड इफ यू कॉन्कर ऑल 3 इन्फर्नो टेंडर्स यू गेट द ग्रैंड प्राइज एंड दैट ग्रैंड प्राइज इज ए फ्री सैंडविच एवरी डे फॉर 30 डेज. और ये होने वाला है सैटरडे जून 16th को. सॉरी लेट मी करेक्ट दैट. अब वो स्पाइसीनेस मेरे दिमाग तक पहुंच गया शायद. सैटरडे जून 6th करेक्ट. आई एम गोइंग टू करेक्ट दैट अगेन. सैटरडे जून 6 को शाम के 4 बजे होने वाला है एंड पार्टिसिपेशन इज एब्सोल्युटली फ्री. जस्ट बी रेडी टू साइन अ वेवर बिफोर यू टेक ऑन द हीट. ऑल राइट. This is an amazing Inferno Spice Challenge that you can be part of at Sal's Nashville Hot Chicken in Richardson, ladies and gentlemen. And Sal's Chicken ki taraf se, Sal's Nashville ki taraf se, Mugdha ko already prize mil chuka hai for naming the place, which is Pizza Hut, which was founded by two brothers, Dan and Frank Carney, on May 31st, 1958. And guess what? Kuch hi dino mein ये सेलिब्रेशन जो आने वाला है पहला जो खुला था उसके बाद न जाने अभी कितने हैं. पिज़्ज़ा हट से रिलेटेड कुछ और आप लोगों के लिए अमेजिंग न्यूज दैट आई एम गोइंग टू ब्रिंग. इट इज नॉस्टैल्जिया एक्सप्रेस. तो नॉस्टैल्जिया की बात करने वाले हैं. दिस न्यू न्यूज दैट वी हैव फॉर ऑल ऑफ यू टू नो. ये है गपशप गली विद मी टू

जो जानते नहीं उनके लिए ये खास खबर है एंड इट इज फ्रॉम अटर्नी ओमर ख्वाजा कि आप जानते हैं कि कुछ चीजें ना बता के नहीं होती हैं. यू कैन बी प्रिपेयर्ड फॉर इट बट व्हाट यू कैन बी प्रिपेयर्ड फॉर इज द नंबर एंड द राइट प्लेस टू गो इन सीकिंग द प्रोफेशनल हेल्प. तो यहाँ पे मैं बताना चाहती हूँ आप लोगों के कि कुछ अगर एक्सीडेंट में कुछ पड़े हों आप या कुछ स्लिप और फॉल कुछ भी इंसिडेंट हुआ हो या वर्क प्लेस इंजरी हुई हो ऐसे में अटर्नी ओमर ख्वाजा को जरूर याद रखें क्योंकि सबसे बड़ा जो प्रॉमिस ये लेकर आते हैं कि आपको कुछ पे नहीं करना है अंटिल यू विन विच मीन्स अंटिल यू गेट योर कॉम्पनसेशन. तो फ्री कंसल्टेशन के लिए जरूर उन्हें कॉल करें 4693005046. attorneyomer.com इज द वेबसाइट. लेट्स गेट यू इन टू दिस नेक्स्ट ट्रैक और फिर मैं बताने वाली हूँ आप लोगों को दैट पिज्जा हट न्यूज. दिस इज गपशप गली विथ मी टू.

पता है पिज्जा हट और हसीन लगने वाला है. आई विल टेल यू व्हाई. दे आर लीनिंग इनटू नॉस्टैल्जिया एंड ऑफरिंग कस्टमर्स ए टेस्ट ऑफ द 90s एट सम ऑफ इट्स रेस्टोरेंट्स. जी हाँ, पिज्जा हट के पेरेंट कंपनी ने रिसेंटली पब्लिश किए हैं 155 पिज्जा हट क्लासिक लोकेशंस, जहाँ पे गेस्ट जाके ना वो जो रेट्रो डाइनिंग एक्सपीरियंस हो सकता है ना, वो होता था, वो दोबारा से एक्सपीरियंस करने वाले हैं. विच इंक्लूड्स द आइकॉनिक रेड प्लास्टिक कप्स, चेकर टेबल क्लॉथ्स, वाइनल बूथ्स और साथ में टिफिनी स्टाइल लैम्प्स और वो रेड रूफ. लेडीज एंड जेंटलमैन, आई रिमेम्बर हैविंग इट व्हेन आई वाज इन सिंगापुर. और हम जाते थे यार पिज्जा हट रेस्टोरेंट जो हुआ करता था, डाइन इन रेस्टोरेंट जो हुआ करता था, एंड दैट फ्रेश गार्लिक ब्रेड कमिंग आउट ऑफ द ओवन, एंड देयर वाज आल्सो यू नो वेरियस अदर साइड्स दैट वाज फॉर अ बफे देयर एंड ऑल ऑफ दैट, एंड इट वाज सो फैंटास्टिक टू हियर दिस. एंड गेस व्हाट, ये जो नॉस्टैल्जिया ये वापस लेकर जो आ रहे हैं रेस्टोरेंट्स, और उसमें शामिल होने वाला है टेक्सस भी. टेक्सस में सबसे ज्यादा ऐसे पिज्जा हट क्लासिक रेस्टोरेंट्स में कन्वर्ट होने वाले हैं. 27 स्टेट्स आर गोइंग टू डू इट, एंड उसमें टेक्सस में सबसे ज्यादा लोकेशंस होंगे, 28 लोकेशंस, फॉलोड बाय मिजूरी विथ 15 एंड ओहायो विथ 11 एंड 10 इन जॉर्जिया. एंड आई एम सो एक्सटैटिक अबाउट दिस. वंस अगेन, इट इज पिज्जा हट लेडीज एंड जेंटलमैन, जिसका पहला जो खुला था इट वॉज ऑन 31st ऑफ मे 1958 विचिता कैंसर्स में, एंड सिंस देन क्लोज टू 20,000 रेस्टोरेंट्स वर्ल्ड वाइड दैट देर इज ऑफ पिज्जा हट.

this movie that released on 22nd of May, System hai is film ka naam, jisme Sonakshi Sinha aur saath mein Jyotika have done an amazing job actually. I'm still watching it. Kishton mein dekhna hota hai yaar, OTT pe dekhne ka matlab hota hai ki aap apne waqt ke hisab se dekhte ho. Isliye kishton mein dekh rahi hu ye film and so far I'm loving it actually. Ashwini Aiyar Tiwari ki ye film hai, ye wahi hai jinhone Nilbata Sannatek ke baad unhone Bareilly ki Barfi banayi thi, if you remember. I just love her direction. So, ye film mujhe bahut achhi lag rahi hai so far. Although the critics review says something completely different. Abhi tak mujhe waisa feel to nahi hua. Ashutosh Gavarikar bhi hai in this movie along with many other very talented actors in this one. And Sonakshi Sinha aur Jyotika ka jo camaraderie hai na, I'm just loving it in this movie. Naam hai System and it is on Amazon Prime. Just FYI, ladies and gentlemen. Baki rahi baat filmon ki jo aaj ke din release hui hai, aaj yani ki 28th May ko, that is what exactly I am going to do right now. To ye shuru kare, usse pehle main aap logo ko batana chahti hu ki agar aapko ye jo process hota hai na, H1B, F1, L1 and aur किसी भी और नॉन इमिग्रेंट वीज़ा पे हो और आप जो ये यूएस में परमानेंट रेसिडेंसी का प्लान कर रहे हो, यू वांट दैट एंड उसके आसपास का जो डायलॉग है इन द पास्ट वीक, व्हाटएवर वी हैव हर्ड अबाउट यू नो H1B कन्वर्टिंग इनटू permanent residency and green card application, उन सब चीज़ों के बारे में हम जो इतना सारा noise है around you, you can just cut it out, just go to Seema Mehta law offices and find out how they can help you. Attorney Seema Mehta and her experienced team specializes exclusively in immigration law, including EB-5, investor visa, family and employment visas, perm labor certification and US citizenship. अगर आपको EB-5 investor visa प्रोग्राम के बारे में भी कुछ एडिशनली जानना है तो आप इनसे बात करें. आपको परमानेंट रेसिडेंसी कैसे मिल सकती है, क्या है सीधा रास्ता, अगर वो सारा कुछ जानना है तो सीमा मेहता लॉ ऑफिसेज शुड बी योर डेस्टिनेशन. यू कैन राइट टू देम info@seemamehtalawfirm.com. डू रिमेंबर दैट. ऑलराइट, अभी जिस फिल्म पे लेकर जाने वाली हूँ, इट रिलीज्ड इन द ईयर 2004, आज ही के दिन 28th of May, लेडीज एंड जेंटलमैन. यश चोपड़ा के बेटे जो है, ही वॉज गोइंग टू प्रोड्यूस इट, आदित्य चोपड़ा. और आदित्य चोपड़ा को और फिल्म के डायरेक्टर को, हु इज़ कुणाल कोहली, इन दोनों को बता दिया था यश चोपड़ा साहब ने कि भाई ये फिल्म अगर उनको पसंद नहीं आई तो फिर वो अपना नाम उससे हटा देने वाले हैं. जिस पे याद करते हुए ये चीज़ शेयर करते हुए और उस पर स्माइल करते हुए उन्होंने, कुणाल कोहली ने ये बात कही थी. और ये एक चैलेंज के तरह you know the two took up. It was Aditya Chopra who had two failures prior to that. Kali iske bare mein baat kari thi, mujhe nahi pata tha ki Hum Tum aaj ke din release hui thi, kyunki Banti aur Babli came right after Hum Tum. Aur Banti aur Babli successful thi, lekin wo turning point jo tha Aditya Chopra ke career ka, वो था दिस फिल्म विच इज़ हम तुम, लेडीज एंड जेंटलमैन. तो चलिए उसी का एक गाना मैं लगाने वाली हूँ आप लोगों के लिए राइट अबाउट नाउ. एंड इट इज़ ए फिल्म दैट स्टार सैफ अली खान एंड ऑल्सो रानी मुखर्जी इन द लीड. एंड उसका ये गाना ना हम सबको आई थिंक यूनानिमसली काफ़ी पसंद आता है. सो लेट्स टेक यू टू दिस नेक्स्ट ट्रैक एंड I'll take you to another film which released on this exact day, 28th of May.

And that was the title track from Hum Tum, जो release हुई थी आज के दिन 28th of May 2004. इसीलिए मैंने ये गाना बड़े प्यार से लगाया. Love this romantic number and it fits the weather also that we have today, right? तो जिसे इसे कहते हैं नेकी और पूछ पूछ, right? एक और फिल्म पे लेकर जाने वाली हूँ जो आज ही के दिन रिलीज हुई थी, लेकिन द ईयर वॉज 1999. सैफ अली और रानी मुखर्जी जो हम तुम में पहली बार एक साथ हुए थे, ठीक वैसा ही कुछ सीन था. सैफ अली खान एंड अनिल कपूर एंड ऑल्सो सलमान खान इन दिस प्रोजेक्ट विच केम आउट इन 1999. और इसका म्यूजिक अनु मलिक ने दिया था और इसमें द लीड एक्ट्रेसेस व तबू एंड करिश्मा कपूर. आई एम श्योर आप लोगों ने गेस कर ही लिया होगा. बहुत सारे नॉमिनेशंस मिले थे और बहुत सारे अवार्ड्स भी जीते इस फिल्म में, जिसका नाम है बीवी नंबर वन. जी हाँ, डेविड धवन की ये फिल्म. और फिल्म का बिजनेस जो है वो काफ़ी अफेक्टेड हुआ था क्योंकि क्रिकेट वर्ल्ड कप 1999 चल रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी सुपरहिट साबित हुई, मेकिंग इट द सेकेंड हाइस्ट ग्रोसिंग फिल्म ऑफ बॉलीवुड दैट ईयर. और पहला था हम साथ साथ हैं, जिसमें वंस अगेन सलमान खान एंड सैफ अली खान वर टुगेदर, राइट. नाउ सलमान खान जब इस फिल्म की डबिंग चल रही थी, ही वॉज इन द US और डबिंग के लिए वो वहाँ नहीं मौजूद थे, तो गेस व्हाट, किसी और ने डबिंग की और ये डबिंग की थी चेतन शशितल ने. आई टेल यू अबाउट हिम अ लिटिल मोर. पहले ये गाना तो यार सुन ले. चेंजिंग गियर्स हियर विद दिस नेक्स्ट ट्रैक फ्रॉम बीवी नंबर वन.

की है, इंक्लूडिंग डबिंग फॉर सम यू नो प्रोजेक्ट्स ऑफ डिज्नी एज वेल. वो अलादीन से लेकर विद द जंगल बुक टू, ही वॉज बलू द बेर इन टेलस्पिन एंड द जंगल बुक टू. जस्ट FYI इफ यू आर ट्राइंग टू कनेक्ट द डॉट्स हियर. इसके अलावा उन्होंने बॉलीवुड में भी सलमान खान के अलावा और भी कई सारे एक्टर्स के लिए उन्होंने डबिंग की, जैसे सनी देओल के लिए इन आग का गोला, देन संजय दत्त के लिए इन आंदोलन, प्रकाश राज के लिए इन दबंग टू, अनुपम खेर के लिए परंपरा में, नवाजुद्दीन सिद्दीकी के लिए इन ठाकरे. लेडीज एंड जेंटलमैन, कई बार अनअवेलेबिलिटी की वजह से ऐसी डबिंग होती है, या अगर जो मेकर्स हैं, फिल्म मेकर हैं, अगर उनको डिससैटिस्फैक्शन है अबाउट द लाइंस दैट वाज स्पोकन बाय द एक्टर्स, उस केस में भी कई बार होता है, या अगर हेल्थ इश्यूज के वजह से, या किसी FY कुछ XYZ रीजन के लिए अगर नहीं कर पाए हो डबिंग, दीज आर ऑल द रीजंस व्हाई डबिंग आर्टिस्ट कम इनटू पिक्चर, या उनकी आवाज़ नहीं अच्छी लग रही हो रही है, कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं विच यू नो सॉर्ट ऑफ ट्रिगर्स दिस इंटायरली डिफरेंट एवेन्यू ऑफ डबिंग. और डबिंग आर्टिस्ट चेतन शशिथल जो कि गाते भी हैं, उन्होंने इस अगले गाने में अपनी आवाज़ दी, और उनके साथ मेन लीड्स में कुछ और जो सिंगर्स थे उनके नाम भी मैं बताते चलूं. इट इज़ कुणाल गांजावाला, लॉय मेंडोसा, शंकर महादेवन जैसे सिंगर्स इस फिल्म के लिए, और उनकी आवाज़ इस गाने में. सो लेट्स टेक यू टू दिस वॉइस हियर. और यहाँ पर चेतन शशिथल के साथ शंकर महादेवन और जावेद अली की आवाजें हैं इस गाने में. लेट्स लिसन टू दिस नेक्स्ट गाना फ्रॉम क्यू हो गया ना. एंड डू रिमेंबर द नेम ऑफ द डबिंग आर्टिस्ट इज चेतन शशिथल.

एंड दैट वॉज द मूवी बीवी नंबर वन. डेविड धवन की ये फिल्म सुपर डुपर हिट रही विद सलमान खान. और सलमान खान डबिंग के वक्त इस फिल्म के डबिंग के वक्त, बीवी नंबर वन के डबिंग के वक्त, ही वॉज नॉट इन इंडिया, ही वॉज इन द US, और इसीलिए वो डबिंग नहीं कर पाए थे. तो उनकी जगह किसने किया? तो इस सवाल का जवाब है चेतन शशितल. वो हैं जो कि द बिग सी के नाम से जाने जाते हैं मुंबई फिल्म इंडस्ट्री में, और उन्होंने काफ़ी सारी डबिंग

0: It is 29 past 12, ladies and gentlemen. To samjha kariye, jaane ka vakt ho raha hai, Simi ke aane ka vakt ho raha hai. To enjoy her show. This is Meetu signing off for the day. Mulaqat hogi kal 10 baje.
1: Frisco is growing fast and the future of our city needs experienced leadership. For more than 40 years, Rod Willhauer has helped build Frisco, creating jobs, supporting local businesses, improving infrastructure and investing in the community he calls home. Rod believes in safer neighborhoods, smarter development, strong public services and protecting the family values that makes Frisco special. This election, your vote matters. Vote Rod Willhauer for Frisco Mayor, because the next 4 years will define the next 40 for Frisco.
2: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
3: बैठ जाऊं? पक्का? कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था।
4: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था।
3: थोड़ा? तेरी गाड़ी डेट पे कम, वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है।
5: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव
6: इन प्लेनो। एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग और हाँ, कंपेटिटर कोट मैच भी। कॉल 4692983870। पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो।
2: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा।
7: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
8: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
7: Kya matlab?
8: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
7: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
8: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
7: Ab to karna hi padega, madam.
9: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
10: देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती, उनके लेवल्स होते हैं। लेवल 1, मिक्स वेज पकोड़ा, लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत। लेवल 2, मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़ा कंफर्ट। लेवल 3, अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना, फुल पंजाबी मोड ऑन, फुल्ली लोडेड। और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड, नो कॉम्प्रोमाइजेस।
11: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू। विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड पीजीपीटी। तंदूरी फ्लेम नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स। क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे।
12: इस शहर को हुआ क्या? कहीं पे अंधविश्वास का काला साया, कहीं पे काला जादू, धुआं धुआं। क्यों सब उलझे हैं पारिवारिक समस्याओं में, कभी पढ़ाई तो कभी नौकरी की चिंता। जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों तो वक्त है सही दिशा का।
13: पंडित रामनाथ जी, जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा। लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव,
11: विजिट psychicramnath.com। कॉल 4693474401। प्लेनो, मैकिनी, अर्बिंग और गार्लिन में उपलब्ध।
14: ड्यूड, लाइफ में कुछ ऐसा करना है जिसमें मैं फ्रंट पेज पे रहूं।
15: फ्रंट पेज का तो पता नहीं, पर तेरा पेज 3 में होना मेरी गारंटी है।
14: कैसे?
15: पेज 3 ईटरी?
14: नो, नॉट अनदर रेस्टोरेंट अगेन।
15: ड्यूड, इट्स पेज 3। स्टार्ट विद द बार, सिग्नेचर कॉकटेल्स, क्लासिक पोर्स एंड द फूड क्राफ्टेड टू सूट एवरी क्रेविंग, एवरी एपेटाइट।
14: मतलब ग्रेट फूड, ग्रेट ड्रिंक्स एंड ग्रेट कंपनी, यानी कि मैं।
16: पेज 3 ईटरी, ईट, सिप, गॉसिप, रिपीट।
17: डॉक्यूमेंट्स या पार्सल भेजनी है?
18: हाँ।
17: घर रिलोकेट करनी है?
18: हाँ।
17: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
18: हाँ भाई हाँ।
17: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर।
19: डॉक्यूमेंट्स शिपिंग, बॉक्सेस शिपिंग, कंप्लीट डोर टू डोर रिलोकेशन, ऑटो ट्रांसपोर्ट, सिर्फ इंडिया नहीं, USA और दुनिया भर में ट्रस्टेड शिपिंग और मूविंग सर्विसेज। SFL Worldwide, हर मूव का परफेक्ट सॉल्यूशन। विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335।
4: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
11: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
8: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
3: Hi, this is Madhavan and you're listening to me on my official radio station, Phanesha Radio.

A very good afternoon, my desi people. Welcome to the show, Afternoon Adda with me, yani ki RJ Simmi, aka RJ Desi Girl. Hum Thursday ko na throwback Thursday banate hain. Aur aaj ka throwback topic hai school wala summer vacation. Ji haan, main aapko pura nostalgia mein dubane wali hu. Matlab garmi ki chuttiyon ke bare mein sunte hi mujhe to nani ka ghar, train ki journey, पेड़ से आम तोड़ के खाना, ये सब याद आता है कि कितनी मस्त लाइफ थी यार. कोई स्ट्रेस नहीं था, सिर्फ मस्ती ही मस्ती थी. हाँ, बीच बीच में कभी कभी मम्मी पापा से हॉलिडे होमवर्क के लिए डांट पड़ जाती थी, बट कंप्लीट तो हमें लास्ट वीक ही करना होता था और कभी कभी वो भी नहीं हो पाता था. वैसे आपको नानी का घर और यू नो स्कूल मेमोरीज जो समर वेकेशन की रही हैं, आपको कुछ याद है? आप मेरे साथ कुछ शेयर करना चाहेंगे तो कॉल कीजिए 972-235-5555 पे.

आज हम बातें कर रहे हैं थ्रोबैक थर्सडे के बारे में और आज का टॉपिक है समर वेकेशन की मेमोरीज। जी हाँ, अभी अभी हमें कॉल्स आए हैं हमारे लिसनर्स के और सुरोमा जी ने काफ़ी कुछ बताया कि उनको जो है उनकी फेवरेट समर वेकेशन मेमोरी है कि जब वो अपने नानी के घर जाते थे और यू नो मल्टीपल ट्रेन जर्नीज लेनी पड़ती थी क्योंकि इतनी कनेक्टिविटी वगैरह नहीं थे और छुट्टे लेके जाने पड़ते थे दोस्तों, क्योंकि डिजिटल पेमेंट नहीं था उस टाइम, यूपीआई नहीं होता था। और तो और सेफ्टी पर्पसेस के लिए मोजे जो हैं सॉक्स में, उसमें भी लोग पैसे लेके जाते थे कि कभी कोई बच्चा खो गया तो एटलीस्ट वो एक कॉल तो कर पाए। और सूट केसेस होते थे, मतलब बड़े बड़े सूट केसेस जिसमें ताले लगाए जाते थे और बड़े बड़े चेन्स लगाए जाते थे ट्रेन में चोरी ना होने के डर से। और बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब बहुत सारी यादें हैं कहे तो। और इसका मतलब मैं आइकॉनिक पार्ट तो सबसे ज़्यादा यही हुआ करता था कि मुझे जो याद है कि कजिन्स के साथ ना रात को एकदम तारों और सितारों के नीचे सोना, देर रात तक गप्पे करना, ढेर सारे गेम्स खेलना, बहुत सारा कार्टून देखना, सनसेट तक क्रिकेट खेलते रहना एकदम लास्ट बॉल पे, और अपने अपने स्कूल की स्टोरीज सुनाना कजिन्स को। वो आपको याद है क्या वो कूलर की आवाज़, और वो जो ब्राउन पेपर का कवर हुआ करता था बुक्स और कॉपीज पे, आजकल कहाँ देखने को मिलता है। तो यही चाहत है और यही विश है मेरी कि हमें ना अपनी अपनी मेमोरीज को हमेशा संभाल के रखनी चाहिए और थोड़ा सा बचपन कभी नहीं खोना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी है ये चीज़ें भी। तो आपकी फेवरेट समर वेकेशन मेमोरी क्या है जी, मुझे बताइए कॉल करके 972-235-5555 पे।

0: मुझे तो इस सॉन्ग पे भी अपने कजिन्स के साथ डांस करना बहुत याद है। समर वेकेशन में बहुत इंजॉय करते थे हम ये सॉन्ग, चले जैसे हवाएं। जी हाँ, आज का टॉपिक है थ्रोबैक थर्सडे, समर वेकेशन की मेमोरीज। और बहुत सारे लिसनर्स हमें कॉल कर रहे हैं, हमें बहुत मजा आ रहा है सबकी स्टोरी सुनने में। और प्यारे ली हिरानी जी जो है अभी 74 ईयर्स ओल्ड है, लेकिन उनको अपने समर वेकेशन में कजिन्स के साथ मस्ती करने के लिए जो मार पड़ी थी ना नाना जी से, वो अभी तक याद है जी। उनकी जो समर वेकेशन की मेमोरी में उनको पता है कि अरे यार, नाना जी से पिटाई बहुत पड़ जाती थी, मस्ती तो होती थी लेकिन पिटाई भी हो जाती थी सबकी लगातार। और हरमन जी ने भी हमें कॉल किया और उनको भी जो फेवरेट मेमोरी उनके कजिन्स के साथ ही है वो तो अम्बाला से लेके अहमदनगर, जो कि बहुत ही लंबी ट्रेन जर्नी है 30-32 घंटे की, तब की वो ट्रैवल करके जाया करते थे। और आजकल जिसको सीनिक रूट कहते हैं ना, वो एक्सपीरियंस करते थे, मतलब अजंता अलोरा के केव्स देखने को मिल रहे।
1: दिस इज द फन एशिया नेटवर्क, यू आर लिसनिंग टू फन एशिया रेडियो 104.9 FM, KZMP 104.9 FM HD1, पायलट पॉइंट टेक्सास, साइमलकास्टिंग ऑन KTCG 104.1 FM HD2, सैंगर टेक्सास, ऑफिशियल टैक्स एंड फाइनेंस पार्टनर AG Fintax, पावर्ड बाय फन एशिया फिल्म्स एंड फन पिज़्ज़ा किचन, ऑफिशियल इंजरी लॉ पार्टनर, द लॉ ऑफिसेस ऑफ ओमर ख्वाजा।
2: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
1: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं। 13 साल तक टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट, और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइजरवे लोकेशन पर। लुनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य, एडल्ट्स और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे। लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर, ओपन 7 days a week, 8 AM to 8 PM, वॉक इन एनी टाइम, 9191 काइजर वे, सुइट 205, फ्रिस्को।
3: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी, वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर।
4: अरे मैडम, करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या?
1: अब करेगा, बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन। स्टनिंग लहंगास, एलिगेंट साड़ीज, ब्राइडल ज्वेलरी, मेंस एंड किड्स वेयर।
5: इतना सब और प्राइस?
1: अप टू 25% ऑफ ऑन लहंगास एंड ब्राइडल कलेक्शन, समर सेल थ्रू द एंड ऑफ ऑगस्ट, ओनली एट इंडियन अटायर फ्रिस्को। ट्रेडिशनल हो या फ्यूजन, अब हर आउटफिट बोलेगा
6: मैं ही तो।
7: ट्यून सुनते ही ब्रांड क्लिक कर गया ना, जस्ट लाइक दैट। When it comes to taxes, only one name pops up, AG Fintax. This tax season, for a stress-free tax filing, file smart, file easy with Granthi Tax Pros, an associate of AG Fintax. Saath hi saath, aapka refund maximize karna aur aapka financial future plan karna, that's our commitment. So is baar delay kyun? Call 972-618-8555 or visit agfintax.com. Granthi Tax Pros, powered by AG Fintax. Plan today, profit tomorrow.
8: 2026 mein aapki rashi ke liye dhan aur सफलता के योग
9: है। अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
10: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
7: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
10: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
11: Big achievements deserve unforgettable celebrations. Host your kids' graduation party at the Flavor Lounge in Frisco, where great food meets great memories. And if you want to host the party at your place, no worries. You can also order for catering services only. Fresh Tray Catering, custom menus for small or large gatherings. Everything in perfect style. Call now 469-712-3591 or visit theflavorlounge.com. The Flavor Lounge. You celebrate. Flavor hum sambhal lenge.
12: Immigration is a serious concern for our community, and when you are filing your case, you want a firm which is exclusively devoted to immigration law, like the law offices of Seema Mehta. From simple to highly complex cases, attorney Seema Mehta and her team are dedicated to managing them successfully. Whether it is for an immigrant visa or non-immigrant visa, family, employment or investment visa, perm labor certification or citizenships, they do it all. Call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
6: Dallas, are you ready for a mini India in one evening? On Sunday, May 31st, 3 p.m. to 9 p.m., join us at the Haggard Park, Plano, near downtown for the Ambuj Basant Mela, powered by Bana. Live performances, raffle prizes and touch the truck from 4 to 5 p.m. Plus, a Pan-India food festival from Litti Choka to Bengali, Marathi, Gujarati, Oriya, South Indian, Punjabi, Sindhi and so much more. Free entry, free parking, fun for the whole family. Ambuj Basant Mela, powered by Bana. Supported by major Indian non-profit organization in DAW.
13: For booth and sponsorship contact, admin@ambuj.us.

0: आ गई मैं आपसे प्यारी प्यारी बातें करने अपना शो लेके आफ्टरनून अड्डा. You're listening RJSME aka RJ Desi Girl only on Funasia Radio 104.9 FM. और आज का throwback Thursday का जो topic है वो है summer vacation की memories के बारे में. और कुछ चीजें ऐसी हैं जिनको mention किए बिना ना ये topic complete ही नहीं हो सकता. जैसे कि रसना का वो जग, refrigerator या fridge में रखा हुआ तरबूज यानी कि watermelon, ice water bottles मतलब कि पूरे पानी में ऐसे बर्फ वाले फ्रीजर में रख देते थे, उससे निकाल देते और धीरे धीरे पिघलती बर्फ को एकदम ठंडा ठंडा पानी पी के मजा ही आ जाता था. और भी बहुत कुछ है. और समर वेकेशन है ना सिर्फ एक हॉलीडेज नहीं होता था, वो एक फैमिली बॉन्डिंग का सीजन हुआ करता था. जैसे कि हरमन जी ने हमें बताया कि वो 10 से 15 कजिन्स के साथ एक साथ जो है ये लोग मजे करते थे, सोते थे, बहुत सारी बातें करते थे, गेम्स खेलते थे और पान खा खा के जो है अमिताभ बच्चन की एक्टिंग किया करते थे. तो हरमन जी ये आपको डेडिकेटेड है और ये डेडिकेटेड है शफी को भी. आई होप यू लाइक दिस सॉन्ग खाई के पन बनारस वाला.
1: पर भंग का रंग जमा हो चकाचक हिरलो पान चबाए आहा. और

कैसा सीधा साधा, मैं कैसा भोला भाला। हाँ हाँ, अरे कैसा सीधा साधा, मैं कैसा भोला भाला। जाने कौन घड़ी में पड़ गया, पढ़े लिखो।

थोड़ा गंदा किनारे

जिनको बहुत ज्यादा मतलब जो नॉन वेजिटेरियन है और जिनको चिकन बहुत पसंद है उनको बहुत ही ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि सैल्स चिकन लेके आए हैं एक अमेजिंग सा इन्फर्नो स्पाइस चैलेंज। सो हियर्स द डील, आपको जो है 10 मिनट में 3 जंबो एक्स्ट्रा हॉट टेंडर्स खाने हैं और आपको मिलेगा सिर्फ 1 कप ऑफ मिल्क और कोई डिप वगैरह नहीं यूज कर सकते हैं, ठीक है। और जो प्राइजेस है ना वो टोटली वर्थ द पेन है जी। मतलब अगर आपने एक जंबो टेंडर खाया तो आपको मिलता है एक फ्री सैंडविच फॉर 7 डेज, और अगर आपने 2 जंबो टेंडर्स खा लिए तो यही फ्री सैंडविच आपको मिलेगा 15 दिनों के लिए फ्री फ्री फ्री। और अगर आप निकले वो इन्फर्नो चैलेंज के विजेता जिन्होंने सारे ही 3 टेंडर्स खा लिए तो आप जीत सकते हैं ग्रैंड प्राइज विच इज फ्री सैंडविच एवरी डे फॉर 30 डेज, और ये हो रहा है June 6 को 4 बजे ऑन सैटरडे। और अगर आपको इस चैलेंज के लिए खुद को रजिस्टर करना है तो आप फन एशिया के वेबसाइट पे जाके भी रजिस्टर कर सकते हो। तो करो दोस्तों, कितनी मस्त चीज है यार, खाने के भी चैलेंजेस हो रहे हैं, बहुत कम होता है ऐसा।

आप सुन रहे हैं फन एशिया 104.9 FM और मैं हूँ आरजे सिमी अपने शो आफ्टरनून अड्डा के साथ। और दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है ना कि कभी कभी ग्रॉसरी शॉपिंग जो है यहाँ पे काफी ज्यादा ही टायरिंग हो जाती है, भूख बहुत लग जाती है उसके बाद, और लगता है कि अब घर जाके खाना कौन बनाए। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ कि इस सब प्रॉब्लम्स का एक सोल्यूशन है जो कि है देसी मंडी, तो क्या आप लुइसविल जाके वो एक्सप्लोर नहीं करोगे? मतलब सब कुछ जो भी आपके एंड टू एंड ग्रॉसरी रिक्वायरमेंट्स है ना, चाहे आपको स्पाइसेस खरीदना हो, स्वीट्स खरीदना हो, हलाल मीट खरीदना हो, स्नैक्स खरीदना हो, सब कुछ देसी मंडी में मिल जाएगा। और सिर्फ इतना ही नहीं, उनका जो रेस्टोरेंट है विद इन द स्टोर वो भी काफी अमेजिंग है। मतलब शॉपिंग करो, थक गए कोई बात नहीं जी, आपको घर जाके खाना थोड़ी बनाना है, आपके बाप तो देसी मंडी में हो, सब कुछ अंडर वन रूफ है। तो अगली बार जब भी आप ग्रॉसरी शॉपिंग करने जाएं तो देसी मंडी जरूर जाएं।

0: is growing fast, and the future of our city needs experienced leadership. For more than 40 years, Rod Willhauer has helped build Frisco, creating jobs, supporting local businesses, improving infrastructure, and investing in the community he calls home. Rod believes in safer neighborhoods, smarter development, strong public services, and protecting the family values that makes Frisco special. This election, your vote matters. Vote Rod Willhauer for Frisco Mayor, because the next 4 years will define the next 40 for Frisco.
1: Did you know LASIK is just one of 6 ways to get rid of glasses and contacts? I'm Dr. Shahzad Batliwala. Yes, your eye surgeon is Desi. I'm a fellowship-trained surgeon and founder of Visionary Eye in Plano. My philosophy is simple. Educate first. Once you understand your options, the decision becomes easy.
2: Call 214-972-2020 or visit LASIK-Plano.com. Mention FunAsia 2020 for a free consultation.
1: Visionary Eye. See clearly. Live boldly.
3: Shaadi byah ka koi mauka ho ya koi tyohar. खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है
4: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स मान्यवर मोहे लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग
5: यार बॉस ने फिर से डांट दिया ट्रैफिक अलग और ऊपर से स्ट्रेस
6: अरे रिलैक्स यू नीड अ कूल थेरेपी
5: थेरेपी वो तो बहुत महंगी है
6: नहीं कूल मतलब कूल चा थेरेपी
5: ये क्या होता
6: सिंपल चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन
2: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नूस किचन सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल जस्ट टेक अ डोज ऑफ कुलचा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस
7: It's true, हम अपनी सद्बुद्धि से बहुत सी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं बट sometimes, इवन द बेस्ट नीड अ लिटिल गाइडेंस विद ओवर 400 years ऑफ फैमिली ट्रेडिशन थ्रू his एक्सटेंसिव नॉलेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी एंड palm रीडिंग पंडित ईश्वर जी कैन हेल्प यू विद एनी डिफिकल्टी इन योर पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ फ्रॉम रिलेशनशिप इश्यूज टू नेगेटिव एनर्जी रिमूवल कॉल द मोस्ट ट्रस्टेड एस्ट्रोलॉजर पंडित ईश्वर जी 9455270897 और विजिट astrologerishwar.com
8: दूर रहकर भी देसी रहना आसान नहीं होता पर जब मिले अपनी कल्चर की खुशबू अपने खाने का टेस्ट तो दिल कहता है दिस इज होम वेलकम टू देसी मंडी लुइसविल डैलस का सबसे बड़ा देसी ग्रोसरी स्टोर जहां हर देसी एक रूफ के नीचे नॉर्थ से साउथ स्ट्रीट से फेस्टिव हर टेस्ट हर कल्चर एक ही जगह प्योर देसी फुल मंडी एक्सपीरियंस अनमैच्ड वैरायटी अनबिलीवेबल डील्स ओनली एट देसी मंडी Desi Mandi, powered by Desis, loved by Dallas.
9: Hello? Accident claim? Okay. Name of the lawyer? Omar Khwaja.
10: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833 गेट उमर और विजिट अटर्नी उमर डॉट कॉम

आप सुन रहे हैं फन एशिया रेडियो 104.9 एफएम और शो का नाम है आफ्टरनून अड्डा और मैं हूं आरजे सिमी, आपकी आरजे देसी गर्ल। जी हां, अभी वक्त आ गया है गिव अवे राउंड का, सो तैयार हो जाइए। और आज का सेशन जो है वो थ्रोबैक थर्सडे था और हमने बहुत सारे समर वेकेशन की मेमोरीज डिस्कस की, तो हमारे गिव अवेज भी उसके अराउंड ही होने वाले हैं। जी हाँ, अगर आपने ये गिव अवे जीता तो आपको मिलता है नियॉन कैक्टस की तरफ से $20 का डिस्काउंट ऑन द डाइन इन, एंड दिस पर्टिकुलर रेस्टोरेंट इज फेमस फॉर इट्स मैक्सिकन फूड। तो ध्यान से सुनिए और तैयार रहिए बिल्कुल जवाब देने के लिए। गिव अवे क्वेश्चन ये है कि जो शक्तिमान का शो हुआ करता था उसमें शक्तिमान का पूरा नाम क्या था और उनका जो ह्यूमन फॉर्म था बेसिकली, प्रोफेशन अगर आपको पता है तो बता भी दे सकते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन है वो ये है कि उनका पूरा नाम जो है वो क्या था। और एक्टर का नाम मैं नहीं पूछ रही हूँ, मुकेश खन्ना जो एक्टर है उनका नहीं पूछ रही हूँ, आपको शक्तिमान का नाम बताना। अगर आपको जवाब पता है तो कॉल कीजिए 972-235-5555 पे।

बहुत सारे कॉल्स आ गए मुझे इस क्वेश्चन पे और बहुत मजा आया मुझे ये गिव अवे राउंड खेल के। और क्वेश्चन ये था कि शक्तिमान का जो शो है उसमें उनका पूरा नाम क्या था, और जवाब है पंडित गंगाधर विद्याधर मायाधर ओमकार नाथ शास्त्री जी। और ये इनका जो प्रोफेशन था वो था न्यूज़पेपर फोटोग्राफर का। और आज की विजेता हैं प्राजक्ता जी, सो कॉन्ग्रेचुलेशंस प्राजक्ता जी, आपको मिलता है नियॉन कैक्टस की तरफ से $20 का डिस्काउंट। और मैं आपको बता दूं नियॉन कैक्टस के बारे में कि यहाँ पे ना मैक्सिकन फूड जो है ग्लोबल इन्फ्लुएंस से मिलता है और फ्रेश इंग्रेडिएंट्स यूज़ करते हैं ये, जबीहा हलाल ऑप्शंस भी हैं इनके पास और बहुत सारे वेजिटेरियन चॉइसेस भी हैं। अगर आपको यंग कलरफुल या मॉडर्न फुल ऑफ एनर्जेटिक वाइब चाहिए चिल करने के लिए, हैंग आउट करने के लिए, किसी को डेट पे ले जाने के लिए, तो आप ज़रूर जाएं नियॉन कैक्टस। और यहाँ पे इन खाने ऑप्शंस के अलावा आपको बहुत सारा क्यूरेटेड मॉकटेल और कॉकटेल्स ऑप्शंस भी मिलेंगे। इनके हैप्पी आवर्स भी हैं मंडे टू फ्राइडे और हर दिन कुछ ना कुछ स्पेशल डील जरूर चल रहा होता है, तो आप बिल्कुल चाहिए नियॉन कैक्टस का और अच्छे अच्छे खाने का आनंद उठाइए।

अगर आप मलाबार गोल्ड एंड डायमंड की ज्वेलरी पहन के निकलोगे तो सब आपको यही कहेंगे कि तेरा मुखड़ा देख दे रहना जी जी हाँ, क्योंकि मलाबार गोल्ड एंड डायमंड्स के जो डायमंड ज्वेलरी कलेक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा स्टनिंग है, एलिगेंट है, टाइमलेस है और हर पीस ना बहुत ही ब्यूटीफुली क्राफ्ट किया गया है, जो कि आपके स्पेशल मोमेंट्स में थोड़ी और जान, थोड़ा और स्पार्कल ऐड कर देता है। जी हाँ, यहाँ आपको मिलते हैं ब्यूटीफुल रिंग्स एंड ईयरिंग्स से लेके डैजलिंग नेकलेसेस तक, कंटेम्प्रेरी डायमंड स्टाइल्स भी अवेलेबल हैं और यहाँ आपको मिल सकता है आपका परफेक्ट पीस एंगेजमेंट के लिए, एनिवर्सरीज के लिए, किसी भी सेलिब्रेशन के लिए, या फिर अगर आपको खुद को भी अगर ट्रीट देनी हो ना लड़कियों, तो भी आपको मलाबार गोल्ड्स एंड डायमंड जाके उनका कलेक्शन ज़रूर चेकआउट करना चाहिए। और अगर आप नहीं जा पा रहे तो भी कोई बात नहीं, आप उनका मोबाइल ऐप डाउनलोड कर लो ना, वहाँ पे भी आपको मिल जाएगा।

0: हाँ मतलब अगर पूरा जग भी घूम लीजिए ना, तो आपको फन एशिया जैसा एंटरटेनमेंट तो कहीं नहीं देखने मिलेगा। मैं हूँ आरजे सिमी और आप सुन रहे हैं फन एशिया रेडियो 104.9 FM। और मैं आपको इस वक्त बताना चाहती हूँ माई टाइम इक्विटी के बारे में, विच इज़ लेड बाई CPA सुधीर पाई। वो ना इंडिविजुअल्स और फैमिलीज को हेल्प करते हैं स्मार्टर फाइनेंशियल स्ट्रैटेजीज बनाने में थ्रू पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, रियल स्टेट अपॉर्चुनिटीज और बहुत सारे ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट प्लान्स के बारे में भी वो आपको बताएंगे। अगर आप प्लान कर रहे हैं लॉन्ग टर्म वेल्थ या फिर कोई रिटायरमेंट प्लान्स, या फिर अगर आप सिर्फ अपने इन्वेस्टमेंट्स को भी इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो माई टाइम इक्विटी कैन बी अ परफेक्ट सोल्यूशन फॉर यू, अ परफेक्ट स्टॉप फॉर यू, क्योंकि ये डिज़ाइन किया गया है अराउंड योर गोल्स। अगर आपको इस पे और जानकारी चाहिए तो आप कॉल कर सकते हैं mytimeequity.com पे या फिर 4697021272 पे भी कॉल कर सकते हैं। जी हाँ, वेबसाइट है mytimeequity.com और कॉलिंग नंबर है 4697021272 पे। अभी आने वाला है एक छोटा सा ब्रेक, बट ब्रेक के उस पर मैं लेके आ रही हूँ गिव अवेज।
1: दिस इज द फन एशिया नेटवर्क, यू आर लिसनिंग टू फन एशिया रेडियो 104.9 FM, KZMP 104.9 FM HD1, पायलट पॉइंट टेक्सास, साइमलकास्टिंग ऑन KTCG 104.1 FM HD2, सैंगर टेक्सास, ऑफिशियल टैक्स एंड फाइनेंस पार्टनर AG फिनटेक्स, पावर्ड बाय फन एशिया फिल्म्स एंड फन पिज़्ज़ा किचन, ऑफिशियल इंजरी लॉ पार्टनर, द लॉ ऑफिसेस ऑफ ओमर ख्वाजा।
2: कहाँ गया, कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
3: कौन सा?
2: अरे वो गोल वाला, थोड़ा ट्रेडिशनल, उसमें पोलकी भी है।
3: अरे सारे तो सेम है।
2: नहीं, वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने, ये देखो ये वाला।
3: ओ हाँ, ये तो अलग है।
4: अलग तो होगा ही, श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है। From timeless gold and radiant diamonds to heritage polkis, discover Texas's largest handcrafted jewelry collection now at Main Street in Frisco. Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
5: तुमने फिर कार्ड यूज किया?
6: करना पड़ा, फीस ड्यू थी और ऑलरेडी लेट हो चुके हैं पेमेंट्स में।
5: पर मैंने अभी चेक किया, हमारा क्रेडिट स्कोर और गिर गया, कैसे मैनेज होगा सब?
6: मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
4: हर घर की यही कहानी, पर सच यही है क्रेडिट स्कोर अपने आप ठीक नहीं होता। Zeno क्रेडिट रिपेयर हेल्प्स यू चैलेंज इनएक्यूरेट, आउटडेटेड या अनवेरिफाइबल आइटम्स ऑन योर रिपोर्ट। नो अपफ्रंट फीस, फुल ट्रांसपेरेंसी एंड द राइट टू कैंसिल एनी टाइम। कॉल 1-800-400-9468। Zeno Credit Repair. Fix your score. Fix your life. Zeno Credit Repair does not guarantee results. You have the right to dispute inaccurate information on your credit report yourself free of charge. Services provided under written contract with a 3-day right to cancel.
7: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
8: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
9: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
10: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
9: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
11: रितेश, कभी सोचा है कल अगर तुम नहीं रहे तो मेरा क्या होगा?
12: अरे रिलैक्स, सब तुम्हारा ही तो है।
11: सच? या फिर कोर्ट डिसाइड करेगा?
12: वेट, व्हाट?
4: यस, अगर प्रॉपर एस्टेट प्लान नहीं है तो आपकी फैमिली के डिसीजंस कोर्ट लेता है।
13: हाय, दिस इज दीप्ति वर्मा विद NRI वेल्थ। मैं फैमिलीज को हेल्प करती हूँ उनकी मेहनत को प्रोटेक्ट करने में, द राइट वे विद एस्टेट प्लानिंग।
4: अगर आपके पास सिर्फ विल है या कुछ भी नहीं है तो ये कॉल डिले मत कीजिए। कॉल 669-243-5799, दैट्स 669-243-5799 फॉर अ फ्री 15-मिनट कंसल्टेशन।
14: Same order again? Same pizza? Same taste? Same story? Time to upgrade your cravings, Dallas. Because Fun Pizza Kitchen just dropped a bold new Mexican-inspired menu. And trust us, this is not your regular slice. Fiesta Veggie, Pollo Loco, Senor Cameron, Mucho Macho Pork. Different names, crazy flavors. Once you try these, your old order might just get ghosted. Fun Pizza Kitchen. New flavors, new obsession.
15: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
8: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
15: Kya matlab?
8: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
15: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
8: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
15: Ab to karna hi padega, madam.
5: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.

आप सुन रहे हैं फनेशा रेडियो 104.9 FM और मैं हूँ आरजे सिमी, लेके आई हूँ अपना शो आफ्टरनून अड्डा विद माय प्यारे प्यारे लिसनर्स। और अभी वक्त हो गया है हमारे सेकेंड राउंड ऑफ गिव अवे का, तो जो लोग पिछली बार नहीं जीत पाए, थोड़ा लेट हो जाए कोई बात नहीं, एक और मौका है, फिर से ट्राई कीजिए, जिंदगी तो ट्राई करने का ही नाम है, है ना। और आज का जो सेगमेंट था वो था हमारे समर वेकेशन की मेमोरीज के बारे में। और अगर हम मेमोरीज के बारे में बात करते हैं ना, तो रसना जरूर याद आ जाता है, और मेरा नेक्स्ट गिव अवे क्वेश्चन भी उसके अराउंड ही होने वाला है। और मुझे पता है कि मुझे बहुत सारे कॉल्स आने वाले हैं, आपको जल्दी जल्दी से मुझे कॉल करना है। जीतने पे आपको मिलेगा फन पिज्जा किचन की तरफ से $10 का गिफ्ट कार्ड, तो तैयार हो जाइए। क्वेश्चन ये है कि रसना का फेमस जो टैगलाइन था वो क्या था, याद कीजिए, याद कीजिए और कॉल कीजिए 9722355555 पे।

दोस्तों अभी अभी हमने अपना गिव अवे राउंड जो है कंप्लीट किया है. क्वेश्चन था कि रसना का फेमस टैगलाइन क्या है, एंड आई लव्ड हाउ सम ऑफ द लिसनर्स उन्होंने मुझे कॉल किया और उन्होंने उसे एग्जैक्ट सेम फ्लो में बोला, आई लव यू रसना. जी हाँ, जवाब यही है और सबसे पहले सही जवाब दिया है रविकांत जी ने. रविकांत जी, आपको मिलता है फन पिज्जा किचन की तरफ से $10 का गिफ्ट कार्ड. कॉन्ग्रेचुलेशन. फन पिज्जा किचन जो है ना, ये ऐसी जगह है जहाँ पे फ्लेवर और फायर ऐसा मतलब मिल रहा है, संगम हो रहा है जैसे. और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आपके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है अचारी पनीर पिज्ज़ा. जी हाँ, यहाँ पे मस्त पनीर है ना, ऐसा खेलते रहते हैं, मेल्ट होते रहते हैं स्पाइसेस में. और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, आपको मीट बहुत पसंद है, देन तंदूरी चिकन पिज्ज़ा इज अ प्योर स्मोकी परफेक्शन, क्योंकि ये तंदूर से सीधे आपके टेस्ट बर्ड्स पे अटैक करता है और आपको बहुत ही मज़ा आता है इसको खाने में. या तो अगर आपको बोल्ड पसंद है, मतलब बहुत ज़्यादा स्पाइसी पसंद है ले, या तो फिर अगर आपको माइल्ड या ब्यूटीफुली बैलेंस्ड पिज्ज़ा चाहिए, किसी भी तरीके का पिज्जा चाहिए, यहाँ जरूर जाएं, क्योंकि फन पिज्जा किचन पे एक स्लाइस आपका इंतजार कर रहा है काफी देर से कि आओ और मुझे खा लो. फॉर डिटेल्स प्लीज विजिट funpizzakitchen.com. और रविकांत जी, आपको तो पता ही है आपको क्या करना है, जाइए फन पिज्जा किचन फ्रिस्को में और अपना गिफ्ट कार्ड को यूटिलाइज कीजिए, रिडीम कीजिए.

ऑल राइट डैलस, ध्यान से सुनिए। और अगर आप स्टोर ओनर है ना, तो आपको तो और भी ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए है। जी हाँ, रवि इम्पोर्ट्स वेयर हाउस जो है अपना समर किक ऑफ लेके आ गए हैं वापस से, और ये हो रहा है जून 3rd और 4th को सुबह 9 बजे से लेके शाम 5 बजे तक। और इस साल है ना, ये और भी अमेजिंग, और भी बेहतर, और भी बिगर होने वाला है, क्योंकि इनका पूरा का पूरा वेयर हाउस एक ट्रॉपिकल एक्सपीरियंस में बदलने वाला है। यहाँ आपको मिल सकते हैं क्रेजी डील्स, बहुत सारे नए प्रोडक्ट लॉन्चेस भी हो रहे हैं दोस्तों, और फ्री गिफ्ट्स तो हैं ही हैं, मतलब पूरे दिन, और आपको बिल्कुल चांस मिलता

एक ट्रॉपिकल एक्सपीरियंस में बदलने वाला है। यहाँ आपको मिल सकते हैं क्रेजी डील्स, बहुत सारे नए प्रोडक्ट लॉन्चेस भी हो रहे हैं दोस्तों, और फ्री गिफ्ट्स तो हैं ही हैं, मतलब पूरे दिन। और आपको बिल्कुल चांस मिलता है कि आप नए नए वेंडर्स से मिले, बहुत सारे बेस्ट सेलर आइटम्स भी आपको मिल सकते हैं, और आपको कुछ नहीं करना, आपको फटाफट स्टॉक कर लेना है फॉर रेस्ट ऑफ द ईयर। एंड पीपल हु डू नॉट नो द एड्रेस, इट्स 11029 Harry Hines Boulevard, Building 8, Dallas. Ravi Import Warehouse is the name, guys.

हाँ जी, आई ऑल्सो लव माई जिंदगी और इतना ही प्यार मैं अपने लिसनर्स से भी करती हूँ, लेकिन क्या करे, अब जाने का वक्त आ गया है और आज का आफ्टरनून अड्डा शो यहीं खत्म होता है और मिलेंगे मंडे को दोबारा ये शो लेके आएंगे आपके लिए। और तब तक के लिए मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो आफ्टरनून अड्डा शो है ना, दिस इज़ ब्रॉट टू यू बाई ओमर ख्वाजा विथ हिज ट्रैफिक अपडेट्स अराउंड DFW एंड एक्सीडेंट रिपोर्ट। अगर आप किसी कार या ट्रक एक्सीडेंट में अनफॉर्चुनेटली इन्वॉल्व हो गए हो या फिर किसी स्लिप एंड फॉल इंसिडेंट में, तो अटर्नी ओमर ख्वाजा विल हेल्प यू फाइट योर केस। जी हाँ, ये तब तक पे नहीं करने बोलते जब तक कि आप केस अपना जीत ना जाए, और आपको हेल्प भी करेंगे। जो इंश्योरेंस कंपनी के डॉक्यूमेंट्स हैं, उनका जो पूरा प्रोसेस है, उनके साथ डील करने में पूरा कभी कभी काफ़ी स्ट्रेसफुल हो जाता है, राइट? आई मीन, एक तो आपको इंजरी हुई है, गाड़ी टूटी हुई होती है, लेकिन ओमर ख्वाजा है ना रेस्क्यू के लिए। तो अगर आपको चाहिए किसी टाइप का फ्री कंसल्टेशन फ्रॉम ओमर ख्वाजा एंड हिज टीम, तो आप कॉल कर सकते हैं एट 4693005046 पे। एक और बार बता देती हूँ, 4693005046, या फिर आप उनका जो वेबसाइट है attorneyomar.com, उस पे भी विजिट करके डिटेल्स ले सकते हैं। तब तक के लिए इंजॉय कीजिए और फन एशिया सुनते रहिए, क्योंकि फन एशिया जैसा इंटरटेनमेंट ना मिलना जरा मुश्किल है। हम बड़े अच्छे अच्छे गाने बजाते रहते हैं आपके लिए, आपके एंजॉयमेंट के लिए। सो कीप लिसनिंग एंड कीप रॉकिंग गाइस, सी यू अगेन नेक्स्ट डे, सेम शो।

0: पंडित जी दूल्हा है दुल्हन है, हम हवन लगवा के फेरे ले ले।
1: ये मैं पंडित दिखता हूँ नहीं, मेरी तो बाहर आलू चाट की रेडी है।

A very good afternoon to the listeners of 104.9 FM Furniture Radio sun rahe hain aap. Main hu Kiran aapke saath. Thank you so much for connecting with us this afternoon. Monday to Friday, 2:30 PM till 5 PM. Main rehti hu aapke saath right here on the airwaves of 104.9 FM. Aur aap bhi mere saath rehte hain 972-235-5555 ke through. Aaj hai ji Thursday. Aap jante hain the first Thursday of every month. Main aapke liye lekar aati hu food junction. Yani ke hum usme baat karte hain different मुल्कों की उनमें जिन शहरों को हम एज अ टूरिस्ट विजिट करते हैं और वहां हमें क्या खाना चाहिए उनके लोकल फेवरेट्स क्या हैं उनके देसी फेवरेट्स क्या हैं और जो बाकी थर्सडेज होते हैं उसमें हम लेकर आते हैं वो 90s का बॉलीवुड वो जमाना वो दौर जब मोहब्बत रीडिफाइन हुई हीरोज रीडिफाइन हुए हीरोइंस रीडिफाइन हुई म्यूजिक रीडिफाइन हुआ सिंगर्स नए नए आ रहे थे एवरीथिंग न्यू वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन द 90s का दौर एंड आई एम ऑफिशियली इन लव विद वो 90s का बॉलीवुड.

90s का बॉलीवुड वो दौर, जैसे हम बात कर रहे थे, नए नए स्टार्स आ रहे थे, ये भी बॉबी देओल भी नए नए आए. वैसे तो स्टार्टिंग ही 90s का नए स्टार से हुआ. अगर हम 89-88 से उसको भी हम 90s में ही शुमार कर लेते हैं, 88 आमिर खान ने एंट्री ली, 89 सलमान खान ने एंट्री ली, 92 शाहरुख खान ने एंट्री ली, अक्षय कुमार भी अराउंड 91-92 में ही आए थे. एंड देन आगे आगे जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, बॉबी देओल और सो मेनी न्यू पीपल एज हीरोज, और इवन जो एक्ट्रेसेस नई नई आई बहुत सारी, वो अब तक हमें जो है यू नो स्टार्स नजर आते हैं स्क्रीन पे और अपना जादू बिखेरते हुए. ये है वो 90s का बॉलीवुड जिसने दिया वो बेस बॉलीवुड को, जो अब उस बेस के ऊपर बहुत बड़ी एक बिल्डिंग तैयार हो चुकी है जी. तो अगला गाना मैं आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत दिल है कि मानता नहीं से प्ले करने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले आपको बताऊं कि अगर आप यू लुकिंग फॉर अ ड्रीम होम, देन ड्रीम होम मॉर्गेज इज हेयर टू हेल्प यू. 1998 से हेल्प कर रहे हैं जी तमाम लोगों को जो अपने होम ओनरशिप की ड्रीम रखते हैं, वो ड्रीम होम मॉर्गेज के पास जाते हैं और उनको हेल्प करती है ड्रीम होम मॉर्गेज और उनकी पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस टीम. और खास तौर पे दे आर लाइसेंस्ड इन ऑल 50 states. स्मूथ और स्ट्रेस फ्री प्रोसेस आपके लिए होता है. और अगर आप नया घर खरीदना चाहते हैं, अपग्रेड करना चाहते हैं, रीफाइनेंस करना चाहते हैं, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, आप उसे ड्रीम होम मॉर्गेज से डिस्कस कीजिए एंड दे विल बी एबल टू हेल्प यू. 972-245-5626, 972-245-5626, या फिर उनकी वेबसाइट dreamhomemortgage.com.

0: In one moment, an accident can change everything. When it does, you don't need sympathy. You need strength. Attorney Omar Khawaja, the official injury partner of FunAsia Network, fights to get you every dollar you deserve. No upfront fees, no empty promises, just results. And if you don't win, hey, you don't pay. Call now for your free consultation at 833-GET-OMAR or visit attorneyomar.com. Omar Khawaja, your legal lifeline.
1: अरे भाई वही तो नहीं होता हर बार हर ट्रिप के इतने झंझट
2: बिकॉज यू डोंट ट्रैवल विद लॉसिन चाहे शादी के लिए इंडिया जाना हो दुबई की लग्जरी शॉपिंग या यूरोप की ड्रीमी वेकेशन फोटोज एक परफेक्ट ट्रिप के पीछे होता है एक परफेक्ट ट्रैवल पार्टनर लॉसिन ट्रैवल फॉर नियरली 30 इयर्स लॉसिन ट्रैवल हैज बीन हेल्पिंग फैमिलीज प्लान स्ट्रेस फ्री इंटरनेशनल ट्रिप्स विद द बेस्ट एयरफेयर्स वेकेशन पैकेजेस क्रूजेस एंड कस्टमाइज्ड ट्रैवल सॉल्यूशंस लॉसिन ट्रैवल मेक्स एवरी जर्नी स्मूथ अफोर्डेबल एंड टेंशन फ्री कॉल नाउ 214-631-2458 or visit lawsontravel.com.
3: Coughing or sneezing at home? Your air ducts may be to blame. And clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. FunAsia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with Duct Time.
4: Tune sunte hi brand click kar gaya na? Just like that. When it comes to taxes, only one name pops up. AG FinTax. This tax season, for a stress-free tax filing, file smart, file easy with Granthi Tax Pros, an associate of AG FinTax. Saath hi saath, aapka refund maximize karna aur aapka financial future plan karna. That's our commitment. So is baar delay kyun? Call 972-618-8555 or visit agfintax.com. Granthi Tax Pros, powered by AG FinTax. Plan today, profit tomorrow.
5: Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
6: Calculating Rerouting.
5: अरे ये क्या मुझे मेरे वाले ग्रोसरी स्टोर में जाना है
6: लोकेशन अपग्रेडेड नाउ हेडिंग टू इंडिया बाजार फोर्ट वर्थ
5: क्यों?
6: क्योंकि फोर्ट वर्थ केलर हैसलेट और हर्स्ट के स्मार्ट लोग जानते हैं डेली ग्रोसरीज हो या पूजा एसेंशियल्स ऑथेंटिक इंडियन प्रोडक्ट्स और घर की हर जरूरत फाइंड एवरीथिंग देसी एट इंडिया बाजार इन फोर्ट वर्थ
5: अच्छा तो सीधा वही ले चलो
3: इंडिया बाजार एट 5152 क्वाड्रेंट वे फोर्ट वर्थ स्विच द रूट
6: योर न्यू डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड
7: कभी कभी जिंदगी में कितनी भी कोशिश करो बस सब अटक सा जाता है पर दिक्कत आपके इंजन में नहीं आपकी एनर्जी में है और उसका एक ही समाधान कालीपुत्र मास्टर जोशी पीढ़ियों के अनुभव के साथ मास्टर जोशी जी पामिस्ट्री हॉरोस्कोप रीडिंग वास्तु और ग्रह शांति के विशेषज्ञ हैं प्रेम धन आरोग्य कोर्ट के मामले और बुरी नजर हर समस्या का समाधान यहां मिलता है साथ ही विवाह और गृह प्रवेश भी संपन्न कराते हैं आज ही संपर्क कीजिए कालीपुत्र मास्टर जोशी जी से 2346-4611 और विजिट masterjoshigram.com अपनी जिंदगी में शांति और समृद्धि वापस लाई
8: एस्ट्रोजी रीडिंग्स ऑफ गाइडेंस ओनली एंड रिसर्च में वेरी
9: ओए होए भाई एक और नई गाड़ी सच बता लॉटरी लगी है क्या
10: लॉटरी नहीं यार अच्छी क्रेडिट थी जीरो डाउन पे गाड़ी ली और सीधे के टू ड्राइव पे लिस्ट कर दी
9: के टू ड्राइव मतलब
10: गाड़ी खुद पैसे कमा रही है लिस्टिंग से लेके बुकिंग्स DFW और लवफील्ड एयरपोर्ट पे ड्रॉप ऑफ और पिकअप मेंटेनेंस सब के टू ड्राइव हैंडल करता है
9: वाह मैं भी अपनी पुरानी गाड़ी लिस्ट करा सकता हूँ
10: 100%
11: नई हो या पुरानी लिस्ट योर कार एट के टू ड्राइव एंड लेट योर कार अर्न यू मनी विजिट k2drive.com और कॉल 214-814-0402 Kato Drive, Dallas's smartest fleet partner.
12: Desi cravings simple nahi hoti. Unke levels hote hain. Level 1, mix veg pakora. Light, crispy, perfect shuruaat. Level 2, masala omelette aur dahi bhalla. Thora nostalgia, thora comfort. Level 3, Amritsari kulcha platter ya pindi chana. Full Punjabi mode on, fully loaded. Aur jab bhook ho next level, slow cooked keema matar. Rich, bold, no compromises.
13: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड पीजीबीटी तंदूरी फ्लेम नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ फ्लेवर हम संभाल लेंगे
14: कौन है ये लोग कहां से आते हैं
15: जो बॉलीवुड का असली मजा जानते हैं फन एशिया पर ही आते हैं
16: J जुड़ जाओ अपनी धरती से, देसियों का सच्चा रेडियो चैनल फन एशिया 104.9 FM।

You tuned into 104.9 FM Fun Asia Radio. Wo 90s ka Bollywood sun rahe hain aap on your afternoon drive time with Suneri Kiran. Thank you for all your calls, for your recommendations aur pasand karne ka 90s ka Bollywood leke hi aapki khwahish aur aapki request pe leke aayi hoon, kyunki aap sab bahut pasand karte hain un gaano ko, wo jo golden era tha. जब जैसे हम कह रहे हैं कुछ बेहतरीन सिंगर्स, अभी तक तो हम स्टार्स की बात कर रहे थे, कुछ बेहतरीन सिंगर्स देखे उस दौर ने, बॉलीवुड ने कुछ बेहतरीन सिंगर्स को इंट्रोड्यूस किया और आज तक उनका चार्म और उनकी जो ब्यूटी है उनके गाने की, वो हम रिलिव करते हैं, एंजॉय करते हैं. उन सिंगर्स में कुमार सानू, उदित नारायण, अलका याग्निक, कविता कृष्णमूर्ति, अभिजीत, ये कुछ ऐसे नाम हैं जो मतलब होता था ना कि हर अगला गाना इनमें से किसी एक का होता था, हर दूसरा गाना इनमें से किसी एक ने गाया होता था. जैसे कि ये गाना जो आप सुन रहे थे, ये कविता कृष्णमूर्ति की आवाज में आप सुन रहे थे. और अब जो मैं गाना आपके लिए प्ले कर रही हूँ, दैट इज ऑफकोर्स द किंग ऑफ रोमांस, कुमार सानू की आवाज में. 90s का दौर, 90s का रोमांस और 90s की आशिकी.

आई नो द मेमोरीज आर कमिंग बैक. कुमार सानू की आवाज में सुन रहे थे आप ये गाना. आगे बढ़ते हुए आपको बताएं जी, माई टाइम इक्विटी विच इज लेड बाय CPA सुधीर पाई. They help individuals as well as families build smarter financial strategies through portfolio management, real estate opportunities, ya phir alternative investments. Chahe aap long-term wealth ki planning karna chahte ho, ya retirement planning, ya phir you are planning on growing your investment, jo bhi aapka goal hai, motive hai, My Time Equity is here to help you. They will offer personalized solutions that are designed around your goals. So you can visit them at mytimeequity.com or then you can call them. That number is 469-702-1272. 469-702-1272 is that number. And now the song that I've been playing for you is taken from film Bazigar. बाजीगर की कहानी तो आप जानते ही हैं. अब्बास मस्तान साहब ने इस मूवी को डायरेक्ट किया था और एक इंटरव्यू में अब्बास मस्तान साहब ने बताया कि पहले सलमान खान को, आमिर खान को, इन सबको इस रोल के लिए अप्रोच किया गया. सलमान ने तो स्ट्रेट अवे इनकार कर दिया, आमिर खान ने भी नहीं किया कि भाई टू मच नेगेटिविटी. और जब शाहरुख खान को ये रोल सुनाया गया तो उन्होंने, अब्बास मस्तान की जबानी है कि उन्होंने ज़मीन पे बैठ के ये रोल सुना, वो बैठे उनको सुना रहे थे, तो अब्बास मस्तान से शाहरुख ने कहा कि आप ये मुझे खुद नरेट कीजिए. तो अब्बास मस्तान ने कहा भाई हम तो डायरेक्टर्स हैं, हम स्टोरी टेलर से, जिन्होंने लिखी है स्टोरी उनसे नरेट कराते हैं. उन्होंने कहा नो, आई वॉन्ट टू हेयर द नरेशन ऑफ द डायरेक्टर्स. तो डायरेक्टर्स ने जब उनको नरेट किया तो कहानी खत्म होते ही शाहरुख खान ने कहा आई एम गोइंग टू डू दिस फिल्म. और अब्बास मस्तान का कहना है कि द रेस्ट इज हिस्ट्री.

जी हाँ, किताबें तो बहुत सी पढ़ी थी शिल्पा शेट्टी ने, किताबें तो आई एम श्योर बहुत सारी पढ़ी होंगी, लेकिन वाकई वो चेहरा पढ़ना भूल गई तभी उनके साथ इस फिल्म में जो हुआ सो हुआ. सो दैट वाज अ वेरी वेरी ट्रॉमेटाइजिंग एक्सपीरियंस. डेफिनेटली एक बहुत ही खतरनाक सीन था वो, जब वो छत पे बैठी होती हैं और फिर उनके साथ जो होता है. आई स्टिल रिमेंबर, जाहिर हम स्कूल में हुआ करते थे और इट वॉज वेरी ट्रोमैटिक. आप एक जिसको आप हीरो की तरह देख रहे हो, वो हीरो ही जब हीरोइन को नीचे गिरा दे, और उसके बाद जो है जिस तरह से कहानी को आगे बढ़ाया गया और बाद में हमें बताया गया कि उनका यू नो जिंदगी में क्या क्या हुआ, तो एक सिंपथी भी क्रिएट हुई. बट टू बी वेरी फ्रैंक, गलत तो गलत ही रहेगा चाहे उसको कितना भी सही बनाने की कोशिश कर ली जाए. एनीवेज जी, ये तो हुई मेरा टेक ऑन बाजीगर. आपका टेक क्या है ये आप मुझे बता सकते हैं डेफिनेटली, लेकिन उसके लिए मैं कॉन्वर्सेशन कॉर्नर आपके लिए जरूर खोलूंगी. अभी मैं आपको ये बताती चलूं कि अगर आप ज्वेलरी की शॉपिंग करना चाहते हैं तो श्री कृष्णा ज्वेलर्स एक बेहतरीन स्पॉट है आपके लिए. यहाँ ज्वेलरी सिर्फ एक एक्सेसरी नहीं है बल्कि एक रिफ्लेक्शन है ट्रेडिशन, एलिगेंस और टाइमलेस ब्यूटी का. क्लासिक गोल्ड डिजाइन आप चाहते हैं, स्पार्कलिंग डायमंड्स की ज्वेलरी खरीदना चाहते हैं, या फिर आपको कुंदन पसंद है, या फिर वो ट्रेडिशनल पोलकी का जेवर आपको पसंद है जो कि कभी हमारी माएँ और दादी और दानियाँ पहना करती थी, तो जी हर पीस जो है वो क्राफ्ट किया जाता है आपके स्पेशल सेलिब्रेशन के लिए, आपके स्पेशल मोमेंट के लिए. लोकेटेड एट 13145 स्वीट 220 मेन स्ट्रीट फ्रिस्को में लोकेटेड हैं जी श्री कृष्णा ज्वेलर्स. उनकी नई लोकेशन है, जरूर चेकआउट कीजिए टू सी देयर कैटलॉग, व्हाट दे हैव, व्हाट आर दे ऑफरिंग. और आपको ये भी बता दी चलो 1967 से बिजनेस में है. दे हैव बीन क्राफ्टिंग fine timeless jewelry to cherish your memories. Do not forget to visit shrikrishnajewelers.com. aur is jewelry se mujhe yaad aaya, banda sachta hai samarta hai to ghungat ki aad se dilbar ka deedar adhura lagta hai, jab tak na pade aashiq ki nazar singhar adhura lagta hai.

0: सुन रहे हैं आप आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण में वो 90s का बॉलीवुड और लेके आई हूँ आपके लिए कॉन्वर्सेशन कॉर्नर. जी हाँ, कॉन्वर्सेशन कॉर्नर विद सुनहरी किरण ब्रॉट यू बाय द फ्लेवर लाउंज. आपके पास मौका है दाल मखनी या फिर ढाबा स्टाइल चिकन करी जीतने का. ब्रॉट यू बाय फ्लेवर लाउंज लोकेटेड ऑन प्रेस्टन रोड इन फ्रिस्को. दिस इज वैलिड फॉर डाइन इन ओनली. तो अगर आप जीतिएगा तो यू विल हैव टू गो टू द रेस्टोरेंट एंड अवेल दिस दाल मखनी या फिर ढाबा स्टाइल चिकन करी. एंड इफ यू हैव वन दिस गिव अवे इन एनी अदर शो एट फन एशिया इन द पास्ट वन मंथ तो मुझे बता दीजिएगा जब आप कॉल करें, क्योंकि यू कैन बी अ विनर. यू कैन ओनली बी विनर वंस अ मंथ, वरना वहां पे शायद ऑनर ना किया जाए आपकी विन को. अच्छा जी, ये तो हुई है बात और 90s का बॉलीवुड चल रहा है, तो मुझे बताइए कि कौन सा वो गाना है. देखिए 90s के दौर के बहुत सारे गाने जो हमारी शादी की प्लेलिस्ट में होते थे, यानी कि एज अ ग्रुप हम उस पर जरूर डांस करते थे, शादी ब्याह पे डांस करते थे, जैसे कि चल प्यार करेगी, हाँ जी ना जी ना जी हाँ जी, वो जो भी गाना है. और उसके अलावा भी मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, मतलब कितने सारे गाने हैं जो हमारी शादी की मेड उसके ऊपर परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती थी. तो यही आज हमारा कॉन्वर्सेशन कॉर्नर का कॉन्वर्सेशन पॉइंट है कि 90s का वो कौन सा गाना है जो शादी ब्याह में आपकी लिस्ट पे ज़रूर होता था कि भाई या तो ग्रुप में परफॉर्मेंस देनी है या इंडिविजुअल परफॉर्मेंस देनी है. कुछ लोग चने के खेत पर परफॉर्म करना बहुत पसंद करते थे. नौ नौ चूड़ियाँ, ऑफकोर्स वो 89 की मूवी थी, बट उसको आप कैरी ऑन 90s पे कर लीजिए. तो 9722355555 इज द नंबर टू द स्टूडियो. मुझे कॉल कीजिए और बताइए, डिस्कस कीजिए मेरे साथ कि वो कौन सा गाना है 90s का जो आपकी शादी की प्लेलिस्ट पे उन जमाने में जब आप डांस तैयार करते थे, प्रिपेयर करते थे अकेले या ग्रुप में. फ्लेवर लाउंज लेके आया है आपके लिए ये गिव अवे. दिस इज कॉन्वर्सेशन कॉर्नर विद सुनहरी किरण. फनी जे रेडियो, यू आर लाइव ऑन एयर. व्हाट इज योर नेम?
1: सुमेरा.
0: जी सुमेरा, बताइए.
1: I think there was a song I used dance with my cousins. Chal pyar karegi, haan ji haan ji.
0: जी बिल्कुल बिल्कुल,
1: मेरे साथ ही चलेगी
0: ना जी. हाँ जी हाँ जी ना जी, बिल्कुल सही है. तो ओके, सो ये आपका था शादी ब्याह का परफॉर्मेंस का गाना जिसपे आप परफॉर्म किया करती थी.
1: जी जी बिल्कुल
0: ठीक है, परफेक्ट. थैंक यू सुमेरा, सुनते रहिए. मैं अभी विनर अनाउंस करती हूँ. फनी जे रेडियो, यू आर लाइव ऑन एयर. व्हाट इज योर नेम?
2: Hi, my name is Fatma.
0: जी फातिमा, बताइए.
2: And the song is, I think that from हम आपके हैं कौन, जूते दे दो पैसे ले लो.
0: Oh right, जूते दे दो. तो इस पे आपने group performance दी थी कि solo performance तैयार की थी?
2: Yes, group.
0: Both. अच्छा ठीक है जी, बिल्कुल सही. That is जूते दे दो. फातिमा सुनते रहिए. I'm going to announce the winner in a bit. Funisha Radio, you are live in here. What is your name?
3: मीनाक्षी.
0: जी मीनाक्षी, बताइए.
3: So, मैं तब तो टीनेजर थी, तो मेरी शादी या शादी ब्याह में तो नहीं करती थी, बट देन आई ग्रो अप इन यूएस, तो वो डांस परफॉर्मेंसेस स्टेजेस पे बहुत की है. एक तो जोनी के पीछे क्या है,
0: ओके,
3: एंड के खेत में,
0: राइट,
3: एंड देन मेरे हाथों में नौ नौ चूड़ियां हैं. दैट आई रिमेम्बर आई वाज लाइक मे बी 10 इयर्स ओल्ड एट दैट टाइम. जी. और मैंने वो डांस करने के लिए कांच की चूड़ियां पहनी थी, तो चूड़ी टूट गई थी. एंड आई स्टिल हैव अ स्कार फ्रॉम दैट.
0: ओह,
3: आई रिमेम्बर.
0: वैसे आपके
3: स्टिचेस लगे थे मुझे.
0: ओह माय गॉड, इतनी जोर से टूट गई.
3: या क्योंकि मैं कांच की चूड़ियां पहन रही थी और वो चूड़ी टूटी. एंड आई वाज लाइक इन सच अ हरी कि आई डिडंट पे अटेंशन. आई वाज लाइक नहीं, मुझे डांस करना है तो चूड़ियां पहन के करना है और कांच की चूड़ियां ही पहननी है.
0: मेरे हाथों में नौ नौ चूड़ियां, चोली के पीछे क्या है, चने के खेत में, ये तो मतलब आइकॉनिक डांस नंबर्स होते थे जिनपे जरूर कोई ना कोई लड़की परफॉर्म कर रही होती
3: थी. एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ दावन थे.
0: परफेक्ट मीनाक्षी, थैंक यू फॉर योर कॉल. सुनते रहिए. आई एम गोइंग टू अनाउंस द विनर इन अ बिट. फनी इश्यू रेडियो, यू आर लाइव ऑन एयर. व्हाट इज योर नेम?
4: राम कुमार.
0: जी राम कुमार, बताइए.
4: अभी 25 साल शादी का मनाया है हमने, तो हमने गाना किया था वो शायद मेरी शादी का ख्याल आया है,
0: दिल में आया है, इसीलिए मम्मी ने
4: चाय में बुलाया.
0: आपने इस पे परफॉर्म किया था?
4: हाँ हाँ,
0: ओ लव,
4: पूरा गाया.
0: क्या बात है,
4: गाना गाया. हम दोनों ने गाना गाया पूरा.
0: क्या बात है जी, जबरदस्त. दिस वाज सच एन आइकॉनिक वेडिंग नंबर, शायद मेरी शादी का ख्याल. और 90s के दौर में तो मतलब ढोलकी पे तो ये गाना जरूर बजता था, जरूर गाया
4: जाता था.
0: जी राम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया. सुनते रहिए, आई एम गोइंग टू अनाउंस द विनर इन अ बिट. फाइनेंशियल रेडियो, यू आर लाइव ऑन एयर. अच्छा जी, इसके बाद हम एक सॉन्ग ब्रेक लेंगे और वी विल कंटिन्यू आफ्टर द सॉन्ग, बट दिस इज द लास्ट कॉलर फॉर बिफोर द सॉन्ग. बताइए, नाम बताइए.
5: बहुत पहले 90s में गाना था, बहुत पुराना, काली तेरी छोटी है पर अंदर तेरा लानी.
0: बिल्कुल सही.
5: मैंने डांस किया था. या सो व्हाइल आई एम डांसिंग आई थिंक आई वाज परफॉर्मिंग ऑन स्टेज एंड मेरी छोटी जो है खुल गई थी, बट मैं उसको पकड़ के फिर भी डांस कर रही थी. कैरी ऑन माय डांस.
0: ठीक है, बिल्कुल सही. अच्छा, काली तेरी छोटी का आपने नया वर्जन तो सुन लिया.
5: जी.
0: या अभी नहीं सुना. अच्छा, मुझे उस पे सबसे ज्यादा हैरत होती है कि वो तीन लड़कियां डांस कर रही हैं, उस पे एक लड़की ने भी चोटी नहीं बांधी हुई. किसी ने ना परांदा ना चोटी कुछ भी नहीं. ठीक है, ओके सोमी, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल. सुनते रहिए, आई विल अनाउंस द विनर इन अ बिट. ऑलराइट जी, वी आर गोइंग ऑन अ शॉर्ट सॉन्ग ब्रेक एंड आफ्टर दैट वी विल कंटिन्यू विद द कॉन्वर्सेशन कॉर्नर ब्रॉट टू यू बाय फ्लेवर लाउंज.

0: Hello. Fun Asia Radio, you are live on air. What is your name?
1: Hi, my name is Vanita.
0: All right. Is it Anita?
1: I have lot of songs in my mind, but Sajan Ji Ghar Aaye.
0: Okay, Sajan Ji Ghar Aaye, bilkul sahi.
1: And even that Mehndi Laga Ke Rakhna.
0: Mehndi Laga Ke. Aapne in gaano pe perform kiya hai?
1: Yes.
0: अच्छा परफेक्ट. कहाँ करा आपने? स्कूल में, कॉलेज में, शादी ब्याहों पे, कहाँ पे?
1: शादी में.
0: बिल्कुल सही. थैंक यू. सो अनीता, राइट? आपने अनीता नाम बताया.
1: वनीका.
0: ओके वनीता, थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल. सुनते रहिए, आई एम गोइंग टू अनाउंस द विनर इन अ बिट. ऑलराइट जी, फन एशिया रेडियो, यू आर लाइव ऑन एयर. बताइए, नाम बताइए.
2: हाय, दिस इज सारिका अटल.
0: जी सारिका.
2: आई यूज्ड टू डांस ऑन दिल्ली शहर में मारो घर जो घूमियो. एंड आई यूज्ड टू डू 25 राउंड्स नॉनस्टॉप विदाउट फॉलिंग.
0: लवली, वाओ, दैट इज गुड स्टेमिना. डिड यू यूज्ड टू प्रैक्टिस अ लॉट फॉर दोस 25 राउंड्स?
2: Yeah, I am from Rajasthan, so it's in the blood.
0: That's amazing. I'm so glad you told us that. Thank you so much, Sarika. Keep listening. I'll announce the winner in a bit. RIG, we just have one last caller and then we are going to announce the winner. Fun Asia Radio, you are live on air. What is your name?
3: Rosina.
0: Rubina?
3: Rosina.
0: Ji, Rosina, bataiye.
3: जी, मैं उस टाइम की जो सॉन्ग की बात कर रहे वो था चूड़ी जो खन के हाथों में, याद पिया की आने लगी भीगी भीगी रातों में.
0: बिल्कुल सही. अभी कोई 30 मिनट्स पहले मैंने ये गाना प्ले किया क्योंकि ये गाना मुझे भी बहुत पसंद है, फाल्गुनी पाठक का. थैंक यू सो मच रोजीना फॉर कनेक्टिंग. सुनते रहिए, आई एम गोइंग टू अनाउंस द विनर इन अ बिट. सुनते रहिए गाइज, यू हैव टू कॉल मी इफ यू आर द विनर, सो कीप लिसनिंग.

ऑलराइट जी, लकी विनर का नाम निकल आया है, मैथ के फॉर्मूले ने नाम नंबर निकाला है, फातिमा नंबर टू जिन्होंने मुझे कॉल किया था वो हैं लकी विनर आज के इस गिव अवे की। फातिमा प्लीज मुझे कॉल कीजिए ताकि मैं आपका नंबर ले सकूं टू सेंड टू फ्लेवर लाउंज। और आप तमाम लोग जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, थैंक यू सो मच, इट मैटर्स अ लॉट।

जो बन पे थे।

0: Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG FinTax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
3: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show sunata, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land. Oh, harap, ye $1 million property bhi.
4: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
5: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
6: Arey, sunna, aaj office se aate hue maine Frisco mein ek naya store dekha.
7: Kaun sa?
6: Carrot Lane.
7: Wait, what? Carrot Lane? India wala?
6: हाँ वही.
7: थैंक गॉड, यहाँ हर रोज पहनने लायक कुछ मिलता ही नहीं था इजीली.
6: देखा, ढूंढ के दिया ना.
8: India's most loved everyday jewelry brand, now in Frisco. Lightweight, real diamonds, made for everyday. Carrot Lane, a Tata product.
9: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना.
8: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं. 13 साल तक टेक्सस प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट, और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइजरवे लोकेशन पर. लुनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य. एडल्ट्स और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे. लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर, ओपन 7 days a week, 8 a.m. to 8 p.m. Walk in anytime. 9191 Kaiser Way, Suite 205, Frisco.
10: Aaja meri gaadi mein baith ja.
11: Baith jaau? Pakka? Kali to teri gaadi ne signal pe dam tod diya tha.
12: Wo thoda overheating tha.
11: Thoda? Teri gaadi date pe kam, workshop ke mood mein zyada lag rahi hai.
13: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है, टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव
14: इन प्लेनो.
13: एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स, मेंटेनेंस, रिपेयर्स, ऑनेस्ट प्राइसिंग, और हाँ, कंपेटिटर कोर्ट मैच भी. कॉल 4692983870. पहले गाड़ी ठीक कराओ, फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
10: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा.
15: दूर रहकर भी देसी रहना आसान नहीं होता, पर जब मिले अपने कल्चर की खुशबू, अपने खाने का टेस्ट, तो दिल कहता है दिस इज होम. वेलकम टू देसी मंडी लुइसविल, डैलस का सबसे बड़ा देसी ग्रोसरी स्टोर, जहां हर देसी एक रूफ के नीचे. नॉर्थ से साउथ, स्ट्रीट से फेस्टिव, हर टेस्ट, हर कल्चर एक ही जगह. प्योर देसी, फुल मंडी एक्सपीरियंस, अनमैच्ड वैरायटी, अनबिलीवेबल डील्स, ओनली एट देसी मंडी. देसी मंडी, पावर्ड बाय देसीज, लव्ड बाय डैलस.
16: I've been researching retirement planning.
17: Oh, really? Where?
16: Google, YouTube, a guy on TikTok.
17: Or you could just talk to Wealth Active.
16: What's the difference?
17: They create a real retirement strategy. Not just investments, but a plan for when your income stops.
8: Wealth Tactic. Because retirement needs a strategy, not a search bar. For free consultation, call 469-693-2077 or visit them at thewealthtactic.com.
18: Big achievements deserve unforgettable celebrations. Host your kids' graduation party at the Flavor Lounge in Frisco, where great food meets great memories. And if you want to host the party at your place, no worries. You can also order for catering services only. Fresh Tray Catering, custom menus for small or large gatherings. Everything in perfect style. Call now 469-712-3591 or visit theflavorlounge.com. The Flavor Lounge. You celebrate. Flavor hum sambhal lenge.
8: If you hold H-1B, F-1, L-1 or any other non-immigrant visa status and are considering the path to permanent residency, contact the law offices of Seema Mehta. Attorney Seema Mehta and her dedicated team of professionals can help you attain permanent residency through the EB-5 Investor Program. For more information on the EB-5 Investor Visa Program, please call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
19: डालस की धड़कन 104.9 FM,
14: Fun Asia Radio.

जी हाँ, सुन रहे हैं आप वो 90s का बॉलीवुड राइट हेयर ऑन योर आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण. दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे से ये गाना. अभी जब सवाल हमने पूछा था कि जो है सबसे ज्यादा आपका कौन सा फेवरेट डांस नंबर था उन दिनों शादी ब्याह का, तो इस गाने का भी 2-3 बार तस्करा हुआ. और अब मैं आपके लिए लेकर आई हूँ गिव अवे इंडिया बाजार की तरफ से, जो कि फोर्ट वर्थ में लोकेटेड है जी. इफ यू लिव इन फोर्ट वर्थ, केलर, हर्स्ट, हैसलेट, दिस इज अ वेरी इजी एंड कन्वीनियंट लोकेशन फॉर यू. आपकी तमाम इंडियन ग्रोसरी नीड्स के लिए फ्रेश प्रोड्यूस, स्पाइसेस, स्नैक्स, डेली वो कहते हैं ना देसी एसेंशियल्स, उसके लिए इंडिया बाजार से बेहतर जगह नहीं. लोकेटेड एट 5152 क्वाड्रेंट वे इन फोर्ट वर्थ. और आपके पास मौका है ये स्पेशल ग्रोसरी हैम्पर जीतने का, जो कि इंडिया बाजार की तरफ से आपके लिए आया है. फोर्ट वर्थ लोकेशन पे जाके आपको ये ग्रोसरी हैम्पर लेना होगा, तो ये बात का ध्यान रखिएगा जी. दिस इज स्पेसिफिक टू द फोर्ट वर्थ लोकेशन, 5152 क्वाड्रेंट वे इन फोर्ट वर्थ. दिल वाले दुल्हनिया का ये जो गाना आप सुन रहे थे, 90s के दौर की बात हो रही है, तो ये बताइए कि शाहरुख खान का इस फिल्म में पूरा नाम क्या था. बस सिंपल एज दैट. शाहरुख खान का इस फिल्म में पूरा नाम क्या था, नाम बताइए और जीत लीजिए ये ग्रोसरी हैम्पर ब्रॉट टू यू बाय इंडिया बाजार इन फोर्ट वर्थ.

इंडिया बाजार की तरफ से ये ग्रोसरी हैम्पर आपके लिए आया और फोर्टवर्थ में लोकेटेड हैं जी। आप तमाम लोगों की फोन कॉल्स का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले आपको सही जवाब बता दें, शाहरुख खान का नाम इस फिल्म में था राज मल्होत्रा। जी हाँ, और काजल का भी बताती चलती हूँ, सिमरन सिंह उनका पूरा नाम था इस फिल्म में। और मतलब फिल्म के बारे में क्या कहें जी, लॉन्गेस्ट रनिंग मूवी जो कि थिएटर्स में अब तक मैंने सुना था किसी थिएटर में लगी हुई है। दिस इज अ हिस्ट्री इन द मेकिंग, हिस्ट्री ऑलरेडी बन चुकी है और ऑलरेडी बन रही है, अभी भी बन रही है। अच्छा, विनर्स का सबसे पहले आप तमाम लोगों की फोन कॉल्स का बहुत बहुत शुक्रिया। श्रीकांत, शीतल, मोहसिन, पद्मा, ख्याति, शाहिना, आप सबने बिल्कुल सही जवाब दिया। थैंक यू सो मच फॉर योर पार्टिसिपेशन एंड योर कॉल्स। और आज के जो हमारी लकी विनर हैं वो हैं जी पद्मा कुमारी। पद्मा, कंग्रेचुलेशंस, जीत लिया है आपने ये गिव अवे। हमें दो दिन का टाइम दीजिए आपका नाम और नंबर इंडिया बाजार पहुंचाने के लिए, एंड देन यू विल हैव अबाउट 5 to 6 days टू गो टू इंडिया बाजार इन फोर्टवर्थ लोकेशन 5152 क्वाड्रेंट वे इन फोर्टवर्थ, और जाके आप अपना ग्रोसरी हैम्पर अवेल कर सकते हैं। और आप तमाम लोग जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। फनी जैसरा के बहुत सारे गिव अवेज आपके लिए लेकर आता है।

All right, and it is time now to give you the traffic update. Traffic hour शुरू हो चुका है. अगर आप रोड पे हैं या बस निकलने वाले हैं कहीं पहुंचना है तो जी दो इंसिडेंट्स हमें नजर आ रहे हैं. सबसे पहले तो आपको ये बताऊं, दिस ट्रैफिक अपडेट इज ब्रॉट टू यू बाय उमर ख्वाजा. और उमर, अगर आप किसी भी तरह के कार या ट्रक एक्सीडेंट में इन्वॉल्व हैं तो उमर ख्वाजा इज हेयर टू हेल्प, बट मोर ऑन दैट लेटर. फिलहाल द ट्रैफिक अपडेट, देर आर वन कोलिजन एंड वन डिसेबल्ड व्हीकल दैट आई कैन सी. द कोलिजन इज रिपोर्टेड एट 6:35 towards TI Boulevard eastbound, jiski wajah se three lanes are blocked. Lekin about 50 minutes ho gaye hain is collision ko report hue, to almost clearing up ho chuki hai ya almost hone wali hai. The severity of the incident was reported high, but that's pretty much all where collision is concerned. There is a disabled vehicle on US 75 towards Parker Road northbound, jiski wajah se two lanes are blocked. About 15 minutes pehle ye incident report hua hai, to disabled vehicle ka matlab hai lanes band hain, to zahir si baat hai backup abhi build हो रहा होगा. तो अगर आप इन दो जगहों में से किसी पे पहुंचने वाले हैं या जाने वाले हैं तो प्लीज बी वेरी केयरफुल एंड बी वेरी विजिलेंट. और इस ट्रैफिक की अपडेट एक बार फिर आपको बताते चलें, ब्रॉट टू यू बाय उमर ख्वाजा, द लॉ ऑफिसर्स ऑफ उमर ख्वाजा.

0: साजी लो थोड़ा थोड़ा मर लो
1: दुनिया में आए हो तो लव कर लो दुनिया में आए हो तो लव कर लो थोड़ा साजी लो थोड़ा थोड़ा मर लो
0: हाँ थोड़ा साजी लो थोड़ा थोड़ा मर लो।
2: अगर आप किसी कार या ट्रक एक्सीडेंट में अनफॉर्चुनेटली इन्वॉल्व हैं या फिर देयर इज अ स्लिप और अ फॉल इंसिडेंट तो अटर्नी ओमर ख्वाजा इज हेयर टू हेल्प यू। आप जानते हैं, हम सब जानते हैं कि दिस काइंड ऑफ सिचुएशन इज एक्सट्रीमली स्ट्रेसफुल। कोई सीरियस बात है तो आपको अपनी सेहत का ख्याल भी रखना है, इंश्योरेंस कंपनी के साथ भी डील करना है, पेपर वर्क, लीगैलिटी, द निटीग्रिटीज ऑफ द सिचुएशन, विच कई बार हमें एज रेगुलर सिटीजन इसका पता ही नहीं होता कि इनमें क्या निटीग्रिटीज इन्वॉल्व हैं। तो दैट इज द टाइम वेन यू नीड एन attorney by your side. तो ये वो अटर्नी है अटर्नी ओमर ख्वाजा। नॉट ओनली विल ही हेल्प फाइट योर केस बट ही विल हेल्प यू गेट द बेस्ट कॉम्पनसेशन दैट यू डिजर्व और द बेस्ट पार्ट इज दैट यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग अनटिल यू विन। सो इट इज अ विन विन सिचुएशन फॉर यू इन सच अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन। अगर आप ऐसी सिचुएशन से गुजर रहे हैं, यू नो समवन यू केयर फॉर इज गोइंग थ्रू सच अ सिचुएशन, प्लीज गिव देम देयर नंबर, शेयर अटर्नी ओमर ख्वाजा'स नंबर, मेक दैट कॉल फॉर फ्री कंसल्टेशन। यू माइट जस्ट यू नो इट माइट जस्ट बी द बेस्ट थिंग दैट यू विल डू for yourself or for that person that you care for. That number is 469-300-5046. 469-300-5046 is the number, or you can visit their website, which is attorneyomar.com.

0: With that, we are heading on to a short break. Break se wapas aakar, abhi aapke liye weather as well as currency update, gold price update lined up hai. Plus, we are going to connect you with the NRI Wealth. Deepthi Verma ji hamare saath maujood hongi. Bane rahiye mere saath, lots of things are lined up for you.
1: Frisco is growing fast and the future of our city needs experienced leadership. For more than 40 years, Rod Willhauer has helped build Frisco, creating jobs, supporting local businesses, improving infrastructure and investing in the community he calls home. Rod believes in safer neighborhoods, smarter development, strong public services and protecting the family values that makes Frisco special. This election, your vote matters. Vote Rod Willhauer for Frisco Mayor because the next 4 years will define the next 40 for Frisco.
2: अपनी रूट्स भी और टेक्सास का स्वैग भी दोनों एक साथ एक ही जगह HEB में रॉयल सोना मसूरी राइस हो नानक पनीर हो या पार्ले जी बिस्किट्स वही देसी टेस्ट जो दिल को घर जैसा फील दे और साथ ही HEB के एक्सक्लूसिव टेक्सन फेवरेट्स जो सिर्फ यहीं मिलते हैं एक ही ट्रिप एक ही स्टोर और सारा सामान डन तो आज ही जाइए अपने नियरेस्ट HEB पर और ले जाइए अपने ट्रेडिशनल और टेक्सन फेवरेट्स एक साथ HEB हियर एवरीथिंग्स बेटर
3: शादी ब्याह का कोई मौका हो या कोई त्योहार खूबसूरत लिबास खुशियों को दुगना कर देता है
4: हर खुशी में आपके साथ मान्यवर मोहे ट्रेडिशनल सेलिब्रेशन वेयर फॉर मेन वुमेन एंड चिल्ड्रन क्राफ्टेड विद एक्सक्विजिट ब्लेंडेड फैब्रिक्स मान्यवर मोहे लोकेटेड ऑन रीजेंट बुलेवार्ड ऑफ 635 ईस्ट इन इरविंग
5: तुमने फिर कार्ड यूज किया
6: करना पड़ा फीस ड्यू थी और ऑलरेडी लेट हो चुके हैं पेमेंट्स में
5: पर मैंने अभी चेक किया हमारा क्रेडिट स्कोर और गिर गया कैसे मैनेज होगा सब
6: मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं
4: हर घर की यही कहानी पर सच यही है क्रेडिट स्कोर अपने आप ठीक नहीं होता Zeno क्रेडिट रिपेयर हेल्प्स यू चैलेंज इनएक्यूरेट आउटडेटेड या अनवेरिफाइबल आइटम्स ऑन योर रिपोर्ट नो अपफ्रंट फीस फुल ट्रांसपेरेंसी एंड द राइट टू कैंसिल एनी टाइम कॉल 1-800-400-9468 Zeno क्रेडिट रिपेयर फिक्स योर स्कोर फिक्स योर लाइफ Zeno क्रेडिट रिपेयर डज नॉट गारंटी रिजल्ट्स यू हैव द राइट टू डिस्प्यूट इनएक्यूरेट इन्फॉर्मेशन ऑन योर क्रेडिट रिपोर्ट योरसेल्फ फ्री ऑफ चार्ज सर्विसेज प्रोवाइडेड अंडर रिटन कॉन्ट्रैक्ट विद अ 3-day राइट टू कैंसिल
2: Ladies and gentlemen, you're not ready for this. Frisco mein itna pyar milne ke baad, Panch Tara is now open at a new location in Allen. Wahi swad, wahi junoon aur wahi zabardast management aur customer service. Famous garma garam parhate, roze tazi bani mithaiya aur full service bar waiting just for you. Enjoy fine dining experience aur Punjabi buffet every day. Catering service is also available to make your every celebration memorable. Panch Tara now in Frisco and Allen. Mention Apna Punjab and get exclusive discount on your first visit.
7: My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
2: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
8: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
9: अरे सुन ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है
10: माँ रील्स पे सब लकी ही होते हैं जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो
11: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है पंडित राम तुलसी जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है करियर हो स्टडीज शादी या फ्यूचर प्लानिंग हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट
2: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com
12: Are you a self-employed or business owner and have profits? Stressed out business ke kuch symptoms hai. Profits hai, but no cash liquidity. हर साल टैक्स बिल्स के साथ टैक्स सीजन का एंग्जाइटी डायग्नोसिस क्लियर है आपके बिजनेस को चाहिए स्मार्ट टैक्स प्लानिंग क्लीन बुककीपिंग और एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल स्ट्रेटजी एजी फिनटैक्स फाउंडेड बाय फोर्ब्स काउंसिल मेंबर अनिल ग्रांथी फ्रॉम टैक्सेस टू CFO एडवाइजरी बिजनेस ओनर्स के हर चैलेंज का एक ही सोल्यूशन कॉल 4253954318 और विजिट agfintax.com प्लान टुडे ऑप्टिमाइज योर कैश फ्लोज विद AG फिनटैक्स एडवाइजरी सर्विसेज
2: Dallas, are you ready for a mini India in one evening? On Sunday, May 31st, 3 p.m. to 9 p.m., join us at the Haggard Park, Plano, near downtown for the Ambuj Basant Mela powered by Bana. Live performances, raffle prizes and touch the truck from 4 to 5 p.m. Plus, a Pan-India food festival from Litti Choka to Bengali, Marathi, Gujarati, Oriya, South Indian, Punjabi, Sindhi and so much more. Free entry, free parking, fun for the whole family. Ambuj Basant Mela powered by Bana, supported by major Indian non-profit organization in DAW.
12: For booth and sponsorship contact admin at ambuj.us.

और राइट जी, ये सुन रहे हैं आप आफ्टरनून ड्राइव टाइम विद सुनहरी किरण. मैं हूं किरण आपके साथ. और बताती चलूं आपको, अगर आपने अब तक पेज 3 ईट्री ट्राई नहीं किया तो यू आर डेफिनेटली मिसिंग आउट ऑन एन एब्सोल्युटली अमेजिंग डाइनिंग एक्सपीरियंस. मेकिनी में लोकेटेड हब 121 में दिस इज पेज 3 ईट्री, जहां पे आपको मिलता है बोल्ड इंडियन स्ट्रीट फूड यू नो विद अ मॉडर्न फ्लेयर. लंच, ब्रंच, डिनर, तमाम चीज़ों के लिए खुले हैं. आप फूडी हैं, अगर आप अच्छा खाना खाना चाहती हैं तो आप पेज 3 ईटरी को मिस मत कीजिए. इफ़ यू लव टू हैव दोज प्रेजेंटेबल प्लेट्स जिनको देख के लगता है दिल, तो फिर पेज 3 ईटरी इज़ द प्लेस फॉर यू टू गो. और अगर आप पसंद करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ एनर्जी वाइब, यू नो इट्स अ परफेक्ट मिक्स ऑफ फ्लेवर, एनर्जी एंड वाइब्रेंट वाइब्स, पेज 3 ईटरी ज़रूर विजिट कीजिए. उनकी वेबसाइट भी चेकआउट कीजिए, दैट इज पेज 3 एज इन नंबर 3, page3eatery.com. And with that, I am going to give you the weather update now. Aaj, which is Thursday, May the 28th, 4:47 p.m. in the studio. Aur city of Makini mein is waqt hai ji 83 degrees. However, it feels like 86 right now. दिन रहा बारिश होती रही ऑन एंड ऑफ, कुछ जगहों पे सनी, कुछ जगहों पे बारिश, और हाइज जो हैं वो मिड 80s तक रहे, जबकि शाम रहेगी मोस्टली क्लियर, 20% चांस ऑफ शावर्स एंड थंडरस्टॉर्म्स इन द इवनिंग, लोज इन द अपर 60s. पोलन काउंट आज का 6.5 विच इज मीडियम, जबकि यूवी इंडेक्स इज 9 विच इज वेरी हाई. तो प्लीज कीप योर सनस्क्रीन हैंडी, कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड. साथ ही साथ सनराइज आज का हुआ 6:19 AM पे, और आज का सनसेट होगा 8:28 PM. और इसी के साथ कल का दिन जो है वो मोस्टली सनी रहने वाला है. दिन रहेगा मोस्टली सनी विद हाईज इन द अपर 80s, जबकि शाम रहेगी पार्टली क्लाउडी विद लोज इन द मिड 70s. सो इट इज गोइंग टू बी अ ब्यूटिफुल, थैंक गॉड इट्स फ्राइडे, एंड फ्राइडे ऑलवेज कम विद मोस्टली गुड वेदर. कल भी कुछ ऐसा ही होने वाला है.

आपसे विदा लेने का वक्त आ चुका है, लेकिन उससे पहले as promised it is time now to give you the gold price update. Right now 4:56 PM and according to goldprice.org, gold price per ounce has worked $4,495.98, जबकि 1 ग्राम सोने की कीमत है जी $144.55. कल की निस्बत 1 ग्राम सोने की कीमत में आज $1.45 का इजाफा हुआ यानी कि इंक्रीज, और 1 आउंस गोल्ड प्राइस में $45.53 की इंक्रीज हुई. तो दैट्स प्रीटी मच ऑल दैट आई हैव फॉर यू वेयर योर फाइनेंस मैटर्स. और अब इट इज टाइम फॉर मी टू से बाय टू यू. थैंक यू सो मच फॉर कनेक्टिंग विद मी दिस आफ्टरनून. एज ऑलवेज मैं आपके साथ मौजूद रहती हूँ मंडे टू फ्राइडे 2:30 PM to 5 PM. और कल है बच्चा पार्टी, कल है जी किड्स जंक्शन. इट इज फ्राइडे, यस, एंड 3 PM to 4:30 PM आई विल बी टेकिंग योर कॉल्स लाइव. आई विल बी हियर फ्रॉम 2:30 to 5, लेकिन 3 बजे से 4:30 बजे इज एक्सक्लूसिवली डेडिकेटेड टू ऑल द किड्स, मिडिल स्कूलर्स, हाई स्कूलर्स, एलिमेंट्री स्कूलर्स, हूएवर व्हिच एवर ग्रेड यू आर इन, गिव मी अ कॉल. वैसे भी आजकल तो समर ब्रेक चल रही है, सो यू आर अबाउट टू चेंज योर ग्रेड, सो वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दैट एंड मच मोर, एंड आई एम गोइंग टू प्ले योर फेवरेट music. Thank you so much for connecting. I look forward to talking to you tomorrow. You have a lovely, lovely rest of your day.

दूंगा दिल तेरा ले कहीं तो लिख बेबी किसी से भी पूछ लौंडा टू मच बोली में थोड़ा रेयान भी टच है जितने भी रूमर सुने तूने अपनी सहेलियों से मेरे बारे में वो सारे सच है बेबी मैं हूँ वो जिसके बारे में चेतावनी देती होगी तुझे तेरी माँ BADSHA नाम बदल दियो मेरा बेबी जो ना कर रहा दी तेरी ना

0: Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG Fintax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
3: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha, and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, aur ab ye $1 million property bhi.
4: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
5: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
6: Heere moti, main na chahu.
7: Achha, manifest karne se pehle thoda dubara soch lo. Kyunki ab diamonds mein mil raha hai buy two, get one free offer. Tanmay Jewelers in Irving. Diamond rings, pendants, earrings aur bridal jewelry par buy two, get one free. Aur wo bhi sab kuch wholesale price par. Chahe proposal ho, wedding ho, ya bas apni sparkle upgrade karni ho. Ab shine double within budget. Luxury, brilliance, celebration. Tanmay Jewelers in Irving.
8: Computer ji ka sawal ye hai, business owners ko loan lena mushkil kyun lagta hai? Option A, slow process. Option B, zyada paperwork. Option C, credit score ka concern. Ya option D, loan decline hone ka dar.
9: Main expert lifeline use karna chahunga.
8: Computer ji, SBA loan experts se connect kiya jaye.
10: SBA loan experts ne business loan process bahut hi aasan bana diya hai. No tax returns needed to apply aur credit par hard check bhi nahi. Results sirf 10 minute mein.
11: Business loan options ko clarity se samajhne ke liye call kare 817-786-3338. 817-786-3338. The SBA loan experts. Faisla clarity ke saath.
12: Yaar, boss ne fir se daant diya. Traffic alag. और ऊपर से ये स्ट्रेस।
13: अरे रिलैक्स, यू नीड अ कूल थेरेपी।
12: थेरेपी? वो तो बहुत महंगी है।
13: नहीं, कूल मतलब कूल चा थेरेपी।
12: ये क्या होता है?
13: सिंपल, चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस इन एलन।
10: चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस सर्विंग सम ऑफ द बेस्ट पंजाबी फूड इन डैलस, फ्रॉम बटरी करीज टू ऑथेंटिक पंजाबी स्ट्रीट फूड फेवरेट्स, स्ट्रेट फ्रॉम शेफ गगन पन्नूस किचन। सो नेक्स्ट टाइम लाइफ गेट्स स्ट्रेसफुल, जस्ट टेक अ डोज ऑफ कुलचा थेरेपी एट चंडीगढ़ बाइट्स एक्सप्रेस।
14: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
15: Kuch bhi nahi. Ura Debt Relief will do it for us.
14: Kya matlab?
15: Ura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
14: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
15: Ura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
14: Ab to karna hi padega, madam.
16: Don't let debt ruin your life. Visit ura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
17: ओए होए भाई, एक और नई गाड़ी, सच बता लॉटरी लगी है क्या?
18: लॉटरी नहीं यार, अच्छी क्रेडिट थी। जीरो डाउन पे गाड़ी ली और सीधे K2 ड्राइव पे लिस्ट कर दी।
17: K2 ड्राइव मतलब?
18: मतलब गाड़ी खुद पैसे कमा रही है, लिस्टिंग से लेके बुकिंग्स, DFW और लवफील्ड एयरपोर्ट पे ड्रॉप ऑफ और पिकअप, मेंटेनेंस सब K2 ड्राइव हैंडल करता है।
17: वाह, मैं भी अपनी पुरानी गाड़ी लिस्ट करा सकता हूँ?
18: 100%
19: नई हो या पुरानी, लिस्ट योर कार एट K2 ड्राइव एंड लेट योर कार अर्न यू मनी। विजिट K2Drive.com और कॉल 214-814-0400 K2 Drive, Dallas's smartest fleet partner.
1: यार, बिजनेस चलाना दिन ब दिन महंगा होता जा रहा है। हर तरफ बस एक्सपेंसेस ही एक्सपेंसेस।
16: बिल्कुल, लेकिन तुझे पता है अब वही एक्सपेंसेस तुझे इनकम भी दे सकते हैं।
1: सच में? एक्सपेंसेस से इनकम कैसे?
16: कनेक्टिंग अमेरिका के थ्रू। उनके पास एक यूनिक इंश्योरेंस सॉल्यूशन है जो बिजनेस ओनर्स को अपने खर्चों को एक इनकम स्ट्रीम में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है।
1: वाह, मतलब पैसे सिर्फ जाएंगे नहीं, वापस भी आएंगे।
16: एग्जैक्टली, अगर तू अपनी बॉटम लाइन बूस्ट करना चाहता है तो जेम्स को आज ही कॉल कर।
1: नंबर बोल जल्दी।
16: कॉल जेम्स @321-888-734 1945 और विजिट connectingamericafinancials.com.
20: Connecting America, जहां स्मार्ट बिजनेस ओनर्स टर्न costs into cash.
21: Attention store owners, Ravi's summer kickoff is back June 3rd and June 4th, 9 a.m. to 5 p.m. And this year, it's different. We are turning the warehouse into a full tropical experience with crazy deals you won't find anywhere. New product launches and free gifts all day. Meet vendors, discover your next best sellers and stock up like never before. Same Ravi's, just bigger, bolder and way more fun. Ravi's Import Warehouse, 11029 Harry Hines Boulevard, Building A, Dallas, Texas 75229. Entry requires a valid tax number and tobacco license.
22: Hi, this is Janvi Kapoor and you're listening to the most popular FM station in the US, 104.9 FM, Fun Asia Radio.

वेलकम लिसनर्स, आप सबका 5 बजे के शो पे बहुत बहुत स्वागत है. मैं हूँ आपकी होस्ट पावन भाटिया, सिटिंग इन टुडे फॉर मार्विन दास, हु विल बी बैक होपफुली नेक्स्ट वीक. एंड उसके साथ साथ मैं आप लोगों के लिए ये भी बताना चाहती हूँ, खूब गप्पे वाली बातें लेके आई हूँ और कुछ मोटिवेटिंग बातें भी लेके आई हूँ. एंड ऑफकोर्स जहाँ गॉसिप की बात नहीं है, ये न्यूज़ की बात है कि इस वक्त बॉम्बे में, मुंबई में, दिल्ली में, इंडिया में क्या धमाकेदार बातें चल रही हैं. आपको समझ ही गए होंगे कि मैं धुरंधर की बात कर रही हूँ. उसके बारे में भी लेटेस्ट कुछ बहुत ही जूसी सी गॉसिप में लेके आई हूँ. चलिए लेकिन स्टार्ट करते हैं ऑन अ वेरी हाई मोटिवेशनल नोट. वन पर्टिकुलर पर्सन हु मोटिवेट्स सो मेनी पीपल इज द पर्सन हु दो नो मोर बट ही हैज लेफ्ट अ लेगेसी. आई एम टॉकिंग अबाउट द वन एंड ओनली स्टीव जॉब्स. You know, in a commencement address, the CEO and co-founder of Apple Inc. shared one of the keys to his success, and that was love. His love for the work he did kept him excited about going to work every day and working towards new goals. Often there is a big difference between what you want versus what other people want for you. Discovering what you're passionate about and working towards it with achievable goals will lead you to success and satisfaction. This is why it is important to give that kind of a, you know, information for you. And I'd like to quote Steve Jobs at this point before I go to the juicy part after the song. He said, and I quote, "Your work is going to fill a large part of your life. And the only way to be truly satisfied is to do what you believe is great work. And the only way to do great work is to love what you do. If you haven't found it yet, keep looking. Don't settle. As with all matters of the heart, you'll know when you find it." और juicy gossip ये है कि चलिए वो मैं आपको इस particular गाने के बाद बताती हूँ कि juicy gossip क्या है. Right now, this cool song coming your way.

What a beautiful, beautiful song. Very, very melodious, I would say. इस फिल्म में है आयुष्मान खुराना, सारा अली खान और बहुत सारे और लोग भी हैं. इसके फिल्म से और भी गाने मैं चलाऊंगी. ये श्रेया घोषाल की आवाज में आपने सुना. एंड अ न्यू सिंगर, आई हैवन हर्ड हिम बिफोर, आदित्य रुचिका और समथिंग लाइक दैट, रुचकारी, आई एम नॉट श्योर व्हाट इट सेज, बट या इट्स अ न्यू सिंगर आई थिंक, रिचारी. सो एंड ऑल्सो द थिंग इज दैट दिस सॉन्ग हैज ऑल्सो बिन सॉन्ग बाय आयुष्मान खुराना हिमसेल्फ. He had made an appearance in Indian Idol and he hummed that song and it was beautiful. So in the movie, his version has also been added. Pati Patni aur wo do twist hai na. Lekin abhi aapke liye maine kaha tha, main aapke liye scoop leke aayi hoon. To wo scoop definitely something, it's very interesting and definitely banta hai ki hum is baare mein baat karein. But before I move to that, I thought let me give you some information about AG Fintechs. This part of our show is brought to you by AG Fintechs, one of the fastest growing tax firms in the USA. They offer innovative financial services with untapped potential for both individuals and businesses. They are trusted, efficient, and they get you ready for the future. Call AG Fintechs. The number is 469-942-9888 or you could also visit agfintechs.com. All right, no further delay. न्यूज़ ये है, मैंने बताया था कि डॉन का जो था दैट यू नो ही वॉकड आउट ऑफ डॉन एंड दैट टू वेरी क्लोज टू द शूटिंग टाइम एंड ऑल दैट यू नो दैट ही हैज़ बीन दिस अ बैन ऑन हिम फ्रॉम द फेडरेशन. आई एम टॉकिंग अबाउट रणवीर सिंह एंड एक्सेल एंटरटेनमेंट विच इज़ फरहान अख्तर. दे बेसिकली आर आस्किंग फॉर 45 करोड़ रुपीज. स्कूप, सलमान खान, उनका रोल कहाँ से आ गया इसमें? वेल, ही हैज़ टर्न्ड क्यूपिड इन रणवीर सिंह फरहान अख्तर्स डॉन 3 वॉर. सुपरस्टार सलमान खान हैज़ स्टेप्ड इन टू ब्रोकर पीस. यस, ही इज़ राइटफुली कॉल्ड द गॉडफादर ऑफ द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री एज अ सुपरस्टार इज ऑलवेज देयर फॉर पीपल इन द टफ टाइम्स. एज द इंडस्ट्री इज डिवाइडेड ओवर द रणवीर सिंह फरहान अख्तर कॉन्फ्लिक्ट ओवर डॉन 3, सलमान खान हैज़ नाउ स्टेप्ड इन टू इंश्योर दैट द टू पार्टीज एमिकेबली रिजॉल्व द इश्यूज विदाउट क्रिएटिंग अ मीडिया सर्कस. हाँ, इमेजिन, अ सोर्स टोल्ड बॉलीवुड हंगामा, सलमान खान इज वेरी फॉन्ड ऑफ रणवीर सिंह एंड इज इक्वली फॉन्ड ऑफ द अख्तर्स टू. ही पिक्ड अप द कॉल ऑन बोथ द स्टेक होल्डर्स एंड हैज आस्क्ड देम टू रिजॉल्व देयर इश्यूज विदाउट हर्टिंग द फ्यूचर ऑफ देयर रिस्पेक्टिव प्रोजेक्ट्स. ही एक्सप्लेन टू फरहान अबाउट क्रिएटिव डिफरेंसेज बींग अ कॉमन थिंग इन द इंडस्ट्री फॉर डेकेड्स एंड ही ऑल्सो हैड अ लॉन्ग चैट विद रणवीर अंडरस्टैंडिंग हिज स्टैंड्स. He's playing the cupid to ensure that no one feels sabotaged. And the source further informs that Salman also informed both parties to think as one industry and work on another project together once the heat of this debate settles down. I will continue talking a little bit more about that, but right after this song. Ye gana itna cute hai ki Salman Khan ki jo ye act hai, the act of bringing the two together is absolutely commendable.

0: What a cute song. Suraj Barjatia ki film Hum Aapke Hain Kaun Se Liya Gaya Gana. Salman Khan the isme, Madhuri Dikshit and Renuka Shinde. Jinki abhi 25th anniversary hui thi, unke husband ke saath, office ke husband ke saath hi hogi. And they have renewed their vows. Ashutosh ke saath unhone jo ye kiya hai, ye jo unki 25th anniversary hai, they've actually, I'm talking about, you know, who her husband is. Aap chaliye mujhe call karke bataiye, Renuka Shinde ke husband ka kya naam hai. Aur uske saath saath, मैं आपको ये बता दूं कि ये जो बात सलमान खान ने इन दोनों के साथ करी है फरहान अख्तर और रणवीर सिंह के साथ अपेरेंटली दे बोथ आर टेकिंग हिज सजेशन सीरियसली दे आर कंसिडरिंग व्हाट ही हैज सेड अकॉर्डिंग टू दिस रिपोर्ट एंड नॉट ओनली दैट दे ऑल्सो आर थिंकिंग ऑफ एमिकेबली अराइविंग एट अ सोल्यूशन विदाउट क्रिएटिंग अ कॉन्ट्रोवर्सी बिकॉज सलमान खान सेड ही डजंट वॉन्ट एनी लीगल टर्बुलेंस बिटवीन रणवीर एंड फरहान Nor does he want the film bodies to take any uninformed decision. He has asked two to sort out their differences without involving any third party, which includes himself as well. He's standing up for Farhan for the losses and also pushing Ranveer to start a new project to capitalize on the historic success of Dhurandhar. With that, I'll be right back after a quick commercial break. Stay right here, listeners.
1: कहाँ गया? कहाँ रखा था? सुनो ना, मेरा वो वाला सेट कहाँ है?
2: कौन सा?
1: अरे वो गोल वाला थोड़ा ट्रेडिशनल उसमें पोलकी भी है
2: अरे सारे तो सेम है
1: नहीं वो श्री कृष्णा से जो लिया था ना हमने ये देखो ये वाला
2: ओ हाँ ये तो अलग है
3: अलग तो होगा ही श्री कृष्णा ज्वेलर्स से जो है फ्रॉम टाइमलेस गोल्ड एंड रेडियंट डायमंड्स टू हेरिटेज पोलकीज डिस्कवर टेक्सास लार्जेस्ट हैंडक्राफ्टेड ज्वेलरी कलेक्शन नाउ एट मेन स्ट्रीट इन फ्रिस्को Shri Krishna Jewelers, crafted for moments that matter. Visit shrikrishna.com.
4: Did you know LASIK is just one of six ways to get rid of glasses and contacts? I'm Dr. Shahzad Batliwala. Yes, your eye surgeon is Desi. I'm a fellowship-trained surgeon and founder of Visionary Eye in Plano. My philosophy is simple. Educate first. Once you understand your options, the decision becomes easy.
5: Call 214-972-2020 or visit LASIK-Plano.com. Mention FunAsia 2020 for a free consultation.
4: Visionary Eye. See clearly. Live boldly.
6: Sunita, तुम्हारे बेटे के मार्क्स काफी इम्प्रूव हुए हैं ना रिसेंटली
7: हाँ बस थोड़ा राइट गाइडेंस मिल गया है
6: सेम टीचर सेम स्कूल फिर भी मेरा बेटा स्ट्रगल कर रहा है
7: डिफरेंस स्कूल का नहीं है कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का होता है
3: Introducing Lumity Learning Center, Frisco Prosper or McKinney ISD aligned curriculum that doesn't just match, it exceeds. Personalized math or English plans, certified teachers, continuous feedback, on-demand support or har bacche ke liye competitive edge. Try Lumity, you'll see the difference. Kids ages 5 to 13, Coit and Panther Creek in Frisco. Call 972-666-1181. Mention Fun Asia. Get $100 off your first month. Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
8: Har samasya ka hal hai. एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में
3: दैट मैजिक रिमूवल हो लव एंड रिलेशनशिप इश्यूज हो गेट ट्रस्टेड सॉल्यूशंस विद 100% प्राइवेसी
8: थाउजेंड्स की लाइफ बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से नाउ इट्स योर टर्न समस्या का पक्का समाधान एस्ट्रोलॉजर ईश्वर कॉल नाउ 9455270897 और विजिट astrologerishwar.com
9: Coughing or sneezing at home? Your air duct may be to blame and clogged dry vents can even cause fires. Duct Time removes dust, pollen, allergens and lint, giving you cleaner air, better health, energy savings and peace of mind. Serving the DFW area and 15 plus years of experience with CSIA certified technicians and free estimates. Fun Asia listeners get $100 off duct cleaning plus free dryer vent cleaning and sanitizer with service. Call Jeetu Patel at 972-877-2500 or visit callducttime.com. Breathe easy, live safe with Duct Time.
10: Please don't say your usual place again. I'm tired of the same food.
11: Excuse me. It's called being loyal.
10: It's called being predictable.
11: Okay then. Let me surprise you. Let's go to Neon Cactus in Fairview.
10: And what's so special at Neon Cactus?
11: Went there with my office team last week. Mexican cuisine with global influences. Everything fresh, wonderful flavors, Zabia Halal options, and plenty of great vegetarian choices too.
10: Not bad.
11: Happy hours Monday to Friday, and amazing food and drink deals every day.

0: Went there with my office team last week. Mexican cuisine with global influences. Everything fresh, wonderful flavors, Zabia Halal options, and plenty of great vegetarian choices too.
1: Not bad.
0: Happy hours Monday to Friday and amazing food and drink deals every day.
1: Okay, this I didn't expect from you.
0: Wait till you experience Neon Cactus. Neon Cactus, Fairview, Mexican cuisine with global influences.
2: एक्सीडेंट के बाद इंश्योरेंस कंपनी से डील करना बहुत मुश्किल हो गया था ना वो हेल्प कर रहे थे ना मुझे समझ आ रहा था कि क्या करूं। आई फेल्ट कम्प्लीटली स्टक फिर मैंने ओमर ख्वाजा टीम को कॉल किया और सब कुछ चेंज हो गया उन्होंने सारे कॉल्स हैंडल किए मेरी तरफ से बात की और इंश्योर किया कि मुझे फेयर ट्रीटमेंट मिले हर स्टेप पे मुझे अपडेट किया सब कुछ क्लियरली समझाया और मेरी टेंशन कम कर दी उन्होंने मेरी केस के लिए सच में फाइट की और आज मैं दिल से थैंकफुल हूँ
3: कॉल नाउ टू 833-GET-OMAR द लॉ ऑफिसेज ऑफ ओमर ख्वाजा आपका हक उनके जिम्मेदारी
4: या दिस इज शक्ति कपूर एंड यू गाइस आर लिसनिंग टू मी ऑन द फन एशिया रेडियो
5: ऑलराइट थैंक यू लिसनर्स फॉर पार्टिसिपेटिंग बिल्कुल सही बोला आप लोगों ने और बिल्कुल करेक्ट भी किया रेणुका शिंदे नहीं है रेणुका शाने हैं उनका नाम रेणुका शाने ही है और उनके स्पाउस का नाम है आशुतोष राणा एंड द टू हैव जस्ट रिसेंटली लाइक दिस इज द लेटेस्ट न्यूज हैव रिन्यूड देयर wedding vows after 25 years of being married together and it was really nice what he said about why it's so important to do that so definitely you can check that out but I had Geeta calling me I had Renuka calling me Sanjay calling me and the first person who called I didn't ask his name but all of you were absolutely right aur bilkul ye aisi masti mein maine pucha tha aapne bilkul sahi jawab diya तो अभी आपने जो गाना सुना वो सलमान खान का था मैं डॉन 2 से गाना प्ले कर रही हूँ फरहान अख्तर का फर्रू का हुज सच अ टैलेंटेड डायरेक्टर एक्टर प्रोड्यूसर सिंगर ओह माय गॉड इवन अ डांसर दे से ही इज अ वेरी गुड डांसर सो चलिए अब मैं ये एंड राइटर हाउ कैन आई फॉरगेट अ लिरिसिस्ट जस्ट लाइक हिज डैड ही आल्सो डज दैट so here it is going out to Dawn 2 director who's soon to be directing Dawn 3. We don't know who Dawn will be. I'm not trying to put salt in the wound, but who knows? It'll be funny if it's Ranveer Singh. It'll be actually really great if it's Ranveer Singh. But anyways, I'm going to play the song. This one is going out to none other than Farhan Akhtar in the house. थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना अटक गया ये वाला गाना नहीं था ये गाना था ये वाला

0: தெரியுமா?
1: Frisco is growing fast and the future of our city needs experienced leadership. For more than 40 years, Rod Willhauer has helped build Frisco, creating jobs, supporting local businesses, improving infrastructure and investing in the community he calls home. Rod believes in safer neighborhoods, smarter development, strong public services and protecting the family values that makes Frisco special. This election, your vote matters. Vote Rod Willhauer for Frisco Mayor because the next 4 years will define the next 40 for Frisco.
2: देसी क्रेविंग्स सिंपल नहीं होती, उनके लेवल्स होते हैं. लेवल 1, मिक्स वेज पकोड़ा, लाइट क्रिस्पी परफेक्ट शुरुआत. लेवल 2, मसाला ऑमलेट और दही भल्ला, थोड़ा नॉस्टैल्जिया, थोड़ा कंफर्ट. लेवल 3, अमृतसरी कुलचा प्लेटर या पिंडी चना, फुल पंजाबी मोड ऑन, फुल्ली लोडेड. और जब भूख हो नेक्स्ट लेवल, स्लो कुक्ड कीमा मटर, रिच बोल्ड, नो कॉम्प्रोमाइजेस.
3: इसीलिए तंदूरी फ्लेम लेकर आया है न्यू ऑन द फ्लेम एंड न्यू वीकेंड मेन्यू. विजिट तंदूरी फ्लेम इन गार्लैंड एट शाइलो एंड पीजीबीटी. तंदूरी फ्लेम नाउ सर्विंग न्यू फेवरेट्स. क्रेविंग का लेवल बढ़ाओ, फ्लेवर हम संभाल लेंगे.
4: रितेश, कभी सोचा है कल अगर तुम नहीं रहे तो मेरा क्या होगा?
5: अरे रिलैक्स, सब तुम्हारा ही तो है.
4: सच? या फिर कोर्ट डिसाइड करेगा?
5: वेट, व्हाट?
3: यस, अगर प्रॉपर एस्टेट प्लान नहीं है तो आपकी फैमिली के डिसीजंस कोर्ट लेता है.
6: हाय, दिस इज दीप्ति वर्मा विद NRI वेल्थ. मैं फैमिलीज को हेल्प करती हूँ उनकी मेहनत को प्रोटेक्ट करने में, द राइट वे विद एस्टेट प्लानिंग.
3: अगर आपके पास सिर्फ विल है या कुछ भी नहीं है तो ये कॉल डिले मत कीजिए. कॉल 669-243-5799, दैट्स 669-243-5799 फॉर अ फ्री 15-मिनट कंसल्टेशन.
7: चिकन बनाना
8: ब्रो, बनाना नहीं, बनाना मतलब मेक द चिकन राइट.
9: That's exactly what happens at Sal's Nashville Hot Chicken. They don't just make it, they make it unforgettable. Fresh ingredients, bold flavors, jumbo chicken tenders, Nashville sandwiches that actually hit. Located in Plano and Richardson, Sal's Nashville Hot Chicken, we fix hangry.
10: कभी-कभी जिंदगी में कितनी भी कोशिश करो, बस सब अटक सा जाता है. पर दिक्कत आपके इंजन में नहीं, आपकी एनर्जी में है. और उसका एक ही समाधान, कालीपुत्र मास्टर जोशी. पीढ़ियों के अनुभव के साथ मास्टर जोशी जी पामिस्ट्री, हॉरोस्कोप रीडिंग, वास्तु और ग्रह शांति के विशेषज्ञ हैं. प्रेम, धन, आरोग्य, कोर्ट के मामले और बुरी नजर, हर समस्या का समाधान यहां मिलता है. साथ ही विवाह और गृह प्रवेश भी संपन्न कराते हैं. आज ही संपर्क कीजिए कालीपुत्र मास्टर जोशी जी से एट 6823464611 और विजिट masterjoshiram.com. अपनी जिंदगी में शांति और समृद्धि वापस
11: लाइए.
12: Craving delicious Indo-Chinese and North Indian food? Red Hot Chili Pepper is the place to go. With locations in Frisco, McKinney, Richardson and now our newest location in Allen at Waters and 121. Whether you are dining in, taking out or catering, Red Hot Chili Pepper is Dallas's number one choice for Indo-Chinese and North Indian cuisine.
13: Taxes are not complicated or stressful with CPA Shalini Kodial on your side. You focus on growing your business while she handles the planning to mitigate your tax liability. She's honest, transparent and accountable, ensuring your business stays fully IRS compliant. Unlike many other CPAs who meet just once a year, Shalini meets with you every quarter. Call 281-760-5573 today or visit the website www.skodialcpa.com.
14: Hi, this is Vinay Pathak and you're listening to me on Fun Asia Radio.

वेलकम लिसनर्स, अब्बास, एक गाने की रिक्वेस्ट आई है जो मैंने पहले कभी नहीं सुना था. शाहरुख खान का जबकि ये गाना है और इस गाने का नाम है लेविटेटिंग टाइम्स वो लड़की जो. तो डेफिनेटली इट्स लाइक इंस्टाग्राम ट्रेंडिंग रील, बट नॉट फ्रॉम नाउ, इट्स बिन सिंस 2023. आई एम गोना प्ले दैट ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ, आई बिलीव ही सेड कुमार और डॉन, आई एम नॉट श्योर. बट मालाबार के बारे में आपको बता दूं, शाइन ब्राइट विद डायमंड्स फ्रॉम मालाबार गोल्ड एंड डायमंड्स डैलस ऑन प्रेस्टन रोड इन फ्रिस्को, योर गो टू डेस्टिनेशन फॉर स्टनिंग डायमंड रिंग्स, इयररिंग्स, नेकलेसेस एंड मोर दैट स्पार्कल फॉर एवरी स्पेशल मोमेंट. फ्रॉम क्लासिक सॉलिटेयर्स टू कंटेम्प्रेरी स्टाइल्स, देयर डायमंड कलेक्शन ब्लेंड्स सुपीरियर क्वालिटी विद टाइमलेस डिजाइन, परफेक्ट फॉर सो मेनी ओकेजंस सच एज एंगेजमेंट्स, एनिवर्सरीज or just celebrating love. Download the mobile app now for more details. Malabar. With that, here is your song.

0: And now, listeners, like I had mentioned, ki ab interview ka time ho gaya hai. So I'd like to welcome URA Debt Relief segment to all you listeners. Today we have the pleasure of having URA Debt Relief Organization representative, Mr. Aman. He's going to tell us about URA Debt Relief programs. Hello, Mr. Aman. How are you?
1: All good. Fanishya sunne wale sabhi listeners ko URA aur Aman ki taraf se namaskar. So, dosto, ek baar phir se aapko baar baar ki tarah is baar phir se yaad kara dun, mahina khatam ho raha hai. और ये महीना फिर दोबारा नहीं आएगा और वो गलती दोबारा मत कीजिएगा जो हमने इस महीने या पिछले साल की थी. करते करते ये मई का महीना भी बाय बाय कहने को है. तो अगले महीने जब क्रेडिट कार्ड की मिनिमम की चिट्ठियां आएंगी तो उसको पढ़िएगा. उसमें से लिखा होगा कि अगर आप मिनिमम पेमेंट देते हैं तो मिनिमम पेमेंट से ये क्रेडिट कार्ड उतरते नहीं, सिर्फ टाइम पास होता है. और अगर आप भी परेशान हैं हाई इंटरेस्ट दे दे के क्रेडिट कार्ड टस से मस नहीं हो रहे हैं और आपका क्रेडिट कार्ड उतरने का नाम नहीं ले रहा है, तो URA इज द सोल्यूशन. क्योंकि क्रेडिट कार्ड कोई भी हो 28 to 40% इंटरेस्ट चार्ज करते हैं और वो भी कंपाउंड इंटरेस्ट. अगर आपने पुरानी ब्लैक एंड व्हाइट फिल्में देखी हो जिसमें मुनीम जी अंगूठा लगवाते थे और इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करते थे, ये मॉडर्न मुनीम जी हैं जो आपका क्रेडिट कार्ड कभी उतरने नहीं देंगे. तो अगर आप चाहते हैं कि क्रेडिट कार्ड का कर्जा उतर जाए तो जस्ट नोट कीजिए हमारा नंबर और कॉल कीजिए URA को. क्रेडिट कार्ड बिजनेस का हो, पर्सनल हो, स्टोर के हो, या फिर आपका पर्सनल लोन हो जो आपने शायद यूरोप की छुट्टियों के लिए लोन ले रखा था, या घर की रेनोवेशन के लिए, किचन अपग्रेडेशन के लिए, या कोई भी और पर्सनल लोन ले रखे हैं, या फिर गाड़ी के लोन भी हो सकते हैं. यस, गाड़ी का लोन जो रीपोजेस हो गई है, कार या ट्रक अगर रीपोजेस हो गया है, या फिर गाड़ी टोटल हो गई है लेकिन इंश्योरेंस ने पूरा क्लेम तो दिया नहीं होगा, तो जो बाकी बचा है वो आपको उतारना है. तो ऐसी सिचुएशन में इस तरह के लोन्स को अगर आप कंधों पर लाद कर चलते जाएंगे तो वो क्रेडिट कार्ड या इस तरह के लोन्स उतरते नहीं है, रादर आपका क्रेडिट खराब करते हैं और आपको नया लोन नहीं लेने देते क्योंकि डेट टू इनकम रेशियो इंक्रीज हो जाती है. तो ये सब बातें आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं, आप अपनी सिचुएशन को डिस्कस कर सकते हैं, बिल्कुल मुफ्त एनालाइज करा सकते हैं. जस्ट गिव अस अ कॉल. हमारा टोल फ्री नंबर है 1-888-888-9914, 1-888-888-9914, या फिर आप मुझसे यानी अपने दोस्त अमन से भी बात कर सकते हैं 9-1-6-7-7-6-3-5-5. Again, 9-1-6-7-7-6-3-5-5. Once again, 9-1-6-7-7-6-3-5-5. हमारी वेबसाइट है www.ura.org. URA spell as ORAA.org. तो मिनिमम पेमेंट करने से पहले एक बार हाथ रोक लीजिएगा और फोन कीजिएगा URA को ताकि आपका डेट माफ हो जाए, आधे से ज्यादा कर्जा माफ हो सकता है.
0: That is such a great news जो आपने बताई listeners को. I really would like to thank you for joining 104.9 FM Phoenicia Radio. Is there any last thing you want to tell our listeners before you go?
1: Last यही कहना चाहूंगा, मिनिमम पेमेंट प्लीज. मिनिमम पेमेंट से आप अपना टाइम और मनी दोनों खराब कर रहे हैं. आधे से ज्यादा कर्जा माफ करवाइए और URA को कॉल कीजिए ताकि आप डेट फ्री हो सकें, जिससे आपका क्रेडिट स्कोर इंप्रूव करेगा और आपका कर्जा उतर जाएगा.
0: Perfect. Thank you so much for joining us, Mr. Aman.
1: Thank you.
0: All right. Well, listeners, एक छोटा सा ब्रेक आने वाला है और ब्रेक के उस पार कहते हैं ना, उस नदियों पार, जब उस पार पहुंचेंगे, यू नो, जंप करके फलांग के उस पार जब पहुंचेंगे तब आपको चांस मिलने वाला है टू विन समथिंग एंड दैट टू इट्स गोना बी रियली नाइस. इट्स फ्रॉम चंडीगढ़ बाइट्स. मैं एक पहेली लेके आई हूँ आपके लिए, तो एक क्वेश्चन लेके आई हूँ एंड विद दैट यू कैन विन. और साथ साथ ऑफ कोर्स लिसनर्स और बातें होंगी, कुछ आपकी रिक्वेस्ट भी, मैं डेफिनेटली वुड लव टू प्ले योर रिक्वेस्ट, सो गिव मी योर कॉल. एंड विद दैट आई वुड लाइक टू शेयर दिस क्विक कोटेशन फ्रॉम अ मूवी. एंड जोडी फॉस्टर थी उस मूवी में, साइफाई क्लासिक थी ये फिल्म. और ये इसका कोई क्विज नहीं है, बट आई वॉन्ट टू टेल यू वॉट शी सेड. शी सेड, यू आर एन इंटरेस्टिंग स्पीशीज, एन इंटरेस्टिंग मिक्स. यू आर केपेबल ऑफ सच ब्यूटिफुल ड्रीम्स एंड सच हॉरिबल नाइटमेयर्स. यू फील सो लॉस्ट, सो कट ऑफ, सो अलोन. ओनली यू आर नॉट. सी, इन ऑल आर सर्चिंग, द ओनली थिंग दैट वी फाउंड दैट मेक्स द एम्प्टीनेस बेयरेबल इज ईच अदर. So that connection, listeners, is so important. This sci-fi classic might seem removed from reality, but it offers uplifting advice for the workplace and beyond. सो इसके बारे में और कुछ बात बताती हूँ. अब छोटा सा ब्रेक आ रहा है एंड आई विल सी यू.
2: This is the Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas. Official tax and finance partner, AG Fintax. Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
3: Beautiful home, Ravi. $1 million. Wow.
4: Thank you. Well, Sana and me just got lucky as Hussein Panjwani helped us with the purchase of our first home. He practically walked us through the entire process. Ever since, with his guidance and support, I've become a pretty savvy real estate investor myself. Unka radio show suna tha and then consulted with him for all my financing needs. Now my real estate portfolio has grown into many single family homes, apartment complexes, agricultural land, aur ab ye $1 million property bhi.
5: Hi, this is Hussein Panjwani. Dream Home will help you grow your real estate portfolio. Remember, we just don't promise, we deliver.
6: For details, visit dreamhomemortgage.com or call Dream Home Mortgage 972-245-5626 or email info@dreamhomemortgage.com. Some restrictions apply. Equal housing lender, NMLS 334616, Division of Brazos National Bank.
7: Laptop, charger, coffee, phone, oof. ऑफिस का चेकलिस्ट यार खत्म ही नहीं होता.
8: एग्जैक्टली और ऊपर से व्हाट टू वेयर का स्ट्रेस अलग.
7: ओ गॉड, पहले आउटफिट फिर उसके बाद उसके साथ क्या पहनना है.
8: आहा, आई कीप दैट पाथ सिंपल.
7: कैसे?
8: ज्वेलरीज जो ऑफिस, डिनर, वीकेंड, हर दिन हर ओकेजन को सूट करे.
7: ओ, दैट काइंड ऑफ ज्वेलरी.
8: या कैरेट लेन काइंड.
2: Lightweight, real diamonds, your everyday fine jewelry. Made to be worn, not stored. Carat Lane, a Tata product, now open in Frisco.
9: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
10: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
11: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं। जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
12: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहाँ एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है. करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट.
11: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com.
13: Are you a self-employed or business owner and have profits? Stressed out business ke kuch symptoms hai. Profits hai, but no cash liquidity. हर साल टैक्स बिल्स के साथ टैक्स सीजन का एंग्जाइटी. डायग्नोसिस क्लियर है. आपके बिजनेस को चाहिए स्मार्ट टैक्स प्लानिंग, क्लीन बुककीपिंग और एक स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल स्ट्रेटजी. एजी फिनटैक्स, फाउंडेड बाय फोर्ब्स काउंसिल मेंबर अनिल ग्रांथी. फ्रॉम टैक्सेस टू CFO एडवाइजरी, बिजनेस ओनर्स के हर चैलेंज का एक ही सोल्यूशन. कॉल 425-395-4318 और विजिट agfintax.com. प्लान टुडे, ऑप्टिमाइज योर कैश फ्लोज विद एजी फिनटैक्स एडवाइजरी सर्विसेज.
14: भूख लगी है या बस कुछ एक्सेप्शनल खाना है.
15: स्ट्रीट स्टाइल चाट्स, रिच अवधी फ्लेवर्स एंड दैट क्लासिक बटर चिकन यू कीप गोइंग बैक टू. ऑल अंडर वन रूफ एट Page 3 Eatery. ऑनेस्टली ये सिर्फ खाना नहीं है, इट्स व्हाट योर मूड इज एक्चुअली क्रेविंग.
13: अ क्विक बाइट, अ परफेक्ट लंच एम्बियंस एंड एन इवनिंग दैट जस्ट फ्लोज इनटू द नाइट. यू डोंट गो जस्ट एनीवेयर, यू गो टू Page 3, हब 121 McKinney.
16: One mistake doesn't have to define your future. A DWI or DUI charge can bring serious consequences, including license suspension, fines, and even jail time. But you don't have to face it alone. At Mathur Law Offices PC, we provide experienced legal representation in criminal defense matters, including DWI cases.
13: We also assist with related legal issues, including immigration consequences that may arise from criminal charges. Every case is different. The right legal strategy depends on your specific facts and circumstances. Call 214-378-8880. Mathur Law Offices PC. Right advice, right defense.
17: Paid spokesperson, Principal Office, Dallas, Texas.
18: Hey Maps, take me to my Desi grocery store.
19: Calculating route. Rerouting.
18: Are ye kya? Mujhe mere wale grocery store mein jana hai.
19: Location upgraded. Now heading to India Bazaar, Fort Worth.
18: Kyun?
19: Kyunki Fort Worth, Keller, Hazlitt aur Hearst ke smart log jante hain. Daily groceries ho ya puja essentials. Authentic Indian products aur ghar ki har zarurat. Find everything desi at India Bazaar in Fort Worth.
18: Achha. तो सीधा वही ले चलो।
16: इंडिया बाजार एट 5152 क्वाड्रेंट वे फोर्ट वर्थ। स्विच द रूट।
19: योर न्यू डेस्टिनेशन हैज अराइव्ड।
20: मामू देखो क्या हो गया।
21: ओ क्या हो गया?
20: नई गड्डी ली थी, इतने में दम तोड़ दिया, और आपकी इतनी पुरानी मर्सिडीज अभी भी नई जैसी कैसी चल रही है?
21: ओए जर्मन का कमाल है।
20: मेरी गड्डी भी तो जर्मन है।
21: ओए नहीं ओए, जर्मन मोटरवर्क्स रिचर्डसन, मर्सिडीज, ऑडी, बीएमडब्ल्यू, वीडब्ल्यू और सारी गाड़ियों का काम वही करते हैं और A1 करते हैं यार। तू नंबर लिख मुन्नी, 9726906623। कॉल कर दे और बोल गिरधारी लाल ने भेजा है यार।
22: जर्मन मोटर्स, कीप योर ड्राइव फ्लॉलेस।
23: हाय, दिस इज रानी मुखर्जी, यू आर लिसनिंग टू फन एशिया रेडियो।
0: वेलकम लिसनर्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है राइट हियर। ड्राइव टाइम शो इज गोइंग ऑन एंड यस, आई डू हैव अ गिव अवे। लेकिन गिव अवे में तुम्हें एक पर्टिकुलर गाना प्ले करने वाली हूँ जिसमें आपको चंडीगढ़ बाइट से कुछ यमी मिलने वाला है, लेकिन उसके बारे में बाद में बताऊंगी। अब सबसे पहले आई लाइक टू टेल यू अबाउट हेल टू नेल। वेरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिसनर्स, DFW होम ओनर्स एंड बिजनेस ओनर्स के लिए। इज योर रूफ रेडी फॉर द नेक्स्ट स्टॉर्म सीजन? वेल If not, then you don't have to look any further. Trust the experts at Hail to Nail Contracting for professional roof replacement and repairs. From shingles and TPO to metal roofing, they handle both commercial and residential projects with quality and care. And that's not all. They also offer general remodeling, painting, repairs, and concrete work to keep your property looking its best. Free inspection and claim assistance is also available. Check out their 5-star Google reviews. For dependable service, call Nisar Ahmed today. Nisar Ahmed ka number note kijiye, 682-561-9795. That's 682-561-9795. And unka Nisar Ahmed ka email hai, it is H2, that is the number 2, H2NG. contractors@gmail.com, h2ng contractors@gmail.com. we have a caller calling in. Hello, you're on air. Who's this?
24: Hi, I'm Hassan. Yes, I am.
0: I'm very good, Hassan. How are you doing?
24: Not too bad, going home.
0: All right.
24: Kal parso Eid thi hamari, hum job pe the.
0: Eid mubarak, Eid ki bahut bahut mubarakbad aapko.
24: थैंक यू। कोई भी अच्छा सा गाना आप अपने पसंद का लगा दीजिए, जबरदस्त सा।
0: डेफिनेटली,
24: जिसमें एनर्जी आ जाए।
0: एनर्जी आ जाए। एक्चुअली दो गाने अभी हैं, एक की रिक्वेस्ट है, इसके बाद उससे एनर्जी शायद कम आएगी, लेकिन बहुत ही गंभीर सा गाना है, लेकिन उसके बाद मैं आपके लिए एनर्जी वाला गाना दो गाने के बाद मैं प्ले करूंगी। लेकिन जो नेक्स्ट मैं करने वाली हूँ उसमें एनर्जी है, इनफैक्ट एक क्विज भी है। सो थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग।
24: क्योंकि मेरी छुट्टी कल है, तो कल मैं असल ईद बनाऊंगा।
0: बस तो क्या बात है, तो बढ़िया सा आपके लिए गाना हम प्ले करेंगे, ठीक है?
24: चले, थैंक यू, सो नाइस।
0: राइट, श्योर। सो लिसनर्स, लाइक आई मेंशन्ड, अब ये जो मैं गाना प्ले करने वाली हूँ, ये क्विज है, इसमें आपको ये बताना है कि ये गाना कौन सी फिल्म से लिया गया है, और नॉट जस्ट दैट, इस फिल्म में कौन एक्टर एक्ट्रेसेस हैं ये भी बताना है, और इसे किसने गाया है। So the main singer, you know, and as far as music composition, now if you tell me that, that'll be great. At least one name. So it's name of the film, name of the hero heroines, the singers, and the music composition. All right. So with that, here is the song for you to win something from Chandigarh Bites. Say what?

0: रही है My Time Equity, a registered investment advisory firm owned by CPA Sudhir Pai, offers investment as a service, financial planning, active portfolio management, tax planning, real estate, high yield notes and other alternative investments. For further details, visit mytimeequity.com or call Sudhir Pai at 972-330-2771 or email wealth@mytimeequity.com to help you achieve your financial objective today. Talk to Sudhir Pai about 2025 digital asset or crypto fund.
1: Information shared here is for informational purposes only and does not constitute financial or tax advice. Investing involves risk. Email wealth@mytimeequity.com for professional advice.
2: Heere moti maina chahu.
3: Achha, manifest karne se pehle thoda dobara soch lo. Kyunki ab diamonds mein mil raha hai buy 2 get 1 free offer. Tanmay Jewelers in Irving. Diamond rings, pendants, earrings aur bridal jewelry par buy 2 get 1 free. Aur wo bhi sab kuch wholesale price par. Chahe proposal ho, wedding ho ya bas apni sparkle upgrade karni ho. Ab shine double within budget. Luxury, brilliance, celebration. Tanmay Jewelers in Irving.
4: Safar khoobsurat hai manzil se bhi.
5: अरे भाई वही तो नहीं होता हर बार हर ट्रिप के इतने झंझट
6: बिकॉज यू डोंट ट्रैवल विद लॉसिन चाहे शादी के लिए इंडिया जाना हो दुबई की लग्जरी शॉपिंग या यूरोप की ड्रीमी वेकेशन फोटोज एक परफेक्ट ट्रिप के पीछे होता है एक परफेक्ट ट्रैवल पार्टनर लॉसिन ट्रैवल फॉर नियरली 30 इयर्स लॉसिन ट्रैवल हैज बीन हेल्पिंग फैमिलीज प्लान स्ट्रेस फ्री इंटरनेशनल ट्रिप्स विद द बेस्ट एयरफेयर्स वेकेशन पैकेजेस क्रूजेस एंड कस्टमाइज्ड ट्रैवल सॉल्यूशंस लॉसिन ट्रैवल मेक्स एवरी जर्नी स्मूथ अफोर्डेबल एंड टेंशन फ्री कॉल नाउ 214-631-2458 or visit lawsontravel.com.
7: मैं शादी करूंगी तो करीना वाला डिजाइनर लहंगा पहन के करूंगी वरना दूल्हे को टाटा बाय बाय कर दो
8: अरे मैडम करीना वाला लहंगा और आपका बजट मैच करेगा क्या
9: अब करेगा बिकॉज इंडियन अटायर फ्रिस्को समर सेल इज ऑन स्टनिंग लहंगास एलिगेंट साड़ीज ब्राइडल ज्वेलरी मेंस एंड किड्स वेयर
10: Na sab aur price?
9: Up to 25% off on lehengas and bridal collection. Summer sale through the end of August. Only at Indian Attire Frisco. Traditional ho ya fusion, ab har outfit bolega.
11: Main heroine hoon.
12: I am so stressed. Credit card bills, unsecured debts. What are we going to do?
13: Kuch bhi nahi. Oura Debt Relief will do it for us.
12: Kya matlab?
13: Oura can help us save up to 50% on our total debt and the rest we pay in easy monthly installments.
12: But what if it doesn't work? We cannot afford to lose more money. Hum khud hi manage kar lenge.
13: Oura Debt Relief is one of the leading debt settlement companies. They don't charge a single penny until our debt is settled. And they have a 100% money back guarantee. Call to karo 888-888-9914.
12: Ab to karna hi padega, madam.
14: Don't let debt ruin your life. Visit Oura.org or call 888-888-9914 and take control of your financial future.
15: Aaja meri gaadi mein baith ja.
16: Baith jao. पक्का कल ही तो तेरी गाड़ी ने सिग्नल पे दम तोड़ दिया था
17: वो थोड़ा ओवरहीटिंग था
16: थोड़ा तेरी गाड़ी डेट पे कम वर्कशॉप के मूड में ज्यादा लग रही है
18: अगर आपकी गाड़ी भी रोज नए नखरे दिखा रही है टेक इट टू ऑनेस्टी ऑटोमोटिव
19: इन प्लेनो एक्सपर्ट डायग्नोस्टिक्स मेंटेनेंस रिपेयर्स ऑनेस्ट प्राइसिंग और हाँ कंपटीटर कोर्ट मैच भी कॉल 469-298-3870 पहले गाड़ी ठीक कराओ फिर कॉन्फिडेंटली बोलो
15: आजा मेरी गाड़ी में बैठ जा
9: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
20: Har samasya ka hal hai astrologer Ishwar ke paas. 400 saal ki family wisdom ke saath world famous astrologer. Ab Dallas mein.
9: That magic removal ho, love and relationship issues ho, get trusted solutions with 100%

0: Are you seeking clarity in life? Wondering what destiny has in store for you?
1: हर समस्या का हल है एस्ट्रोलॉजर ईश्वर के पास 400 साल की फैमिली विजडम के साथ वर्ल्ड फेमस एस्ट्रोलॉजर अब डैलस में
0: दैट मैजिक रिमूवल हो लव एंड रिलेशनशिप इश्यूज हो गेट ट्रस्टेड सॉल्यूशंस विद 100% प्राइवेसी
1: थाउजेंड्स की लाइफ बदली उनकी डिवाइन गाइडेंस से नाउ इट्स योर टर्न समस्या का पक्का समाधान एस्ट्रोलॉजर ईश्वर कॉल नाउ 9455270897 और विजिट astrologerishwar.com.
2: Hello? Accident claim? Okay. Name of the lawyer?
3: उमर ख्वाजा।
4: जब इंश्योरेंस वाले सुनते हैं उमर ख्वाजा का नाम तो वो खुद आ जाते हैं टेंशन में क्योंकि वो जानते हैं अगर लॉयर उमर है तो नेगोशिएशन का मतलब है कॉम्पनसेशन फुल एंड फाइनल कॉल अटर्नी उमर ख्वाजा नाउ फॉर अ फ्री कंसल्टेशन एट 833-GET-UMAR और विजिट attorneyumar.com.
5: Attention store owners, Ravi's summer kickoff is back June 3rd and June 4th, 9 a.m. to 5 p.m. And this year, it's different. We are turning the warehouse into a full tropical experience with crazy deals you won't find anywhere. New product launches and free gifts all day. Meet vendors, discover your next best sellers and stock up like never before. Same Ravi's, just bigger, bolder and way more fun. Ravi's Import Warehouse, 11029 Harry Hines Boulevard, Building A, Dallas, Texas 75229. Entry requires a valid tax number and tobacco license.

What a lovely song. और बहुत ही मुबारक ईद के मौके पे ये गाना भी प्ले हो गया, तो दैट इज़ अमेजिंग. एंड लिसनर्स, एक और बहुत ही प्यारा मैं आपके लिए लेके आई हूँ ये बात, दैट इन अ वर्ल्ड फुल ऑफ नेसेयर्स इट्स ईजी टू बिकम डिस्करेज्ड. ने मीन्स नहीं हो सकता, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, तुम कुछ भी कर लो. आर यू क्रेजी? वाई यू ड्रीमिंग दैट? वी हैव हर्ड दैट बिफोर. And it's easy to get discouraged. In this scene, जो कि लिया है एक particular film से, उसका एक dialogue मैं play करने वाली हूँ. Play क्या मैं आपको बताने वाली हूँ. From the heart-winning film, this one is called In Pursuit of Happiness. आपने देखी होगी Pursuit of Happiness, जिसमें ये particular speech में बोला जाता है. बहुत ही heartwarming है ये. इसमें Chris अपने son को बोलता है, priceless advice देता है. To pursue his dreams mercilessly without letting other people's ideas of him get in the way. And what does he say? Don't ever let someone tell you you can't do something. Not even me. You got a dream, you got to protect it. People can't do something themselves. They want to tell you you can't do it. You want something, go get it. Period. Itna zyada encouraging dialogue hai. One should remind that to the kids also, and that way is you become a sense of, you know, you become a ray of light in someone's life, because who knows,

0: 像这么漂亮吗？真的。
1: Singles are Varun Dhawan, Shankar Mahadevan, Hema Sardesai, Ranj and Earl Edgar. Music by Javed Mohsin and Anu Malik. Lyrics by Sameer Anjan and Ranj and Mohsin. Kya cool tha gana hai. Ye film to badhiya chalegi hi, 100%. Usme, jise kehte hain, paisa vasool hai is film mein. And Varun Dhawan ka ek tarah se comeback bhi hai. So hopefully he'll do really well in this film. David Dhawan ne direct kari hai ye film. Next gana bhi bahut hi happening hai listeners. Aur ye gana hai taken from the movie Welcome to the Jungle. Is gaane ke baad a quick break and we'll be right back after that. Meanwhile, you enjoy the song Welcome to it says that's what Akshay Kumar is saying and isme Akshara Singh bhi hai and ye gana kafi crazy sa hai. Lot of people are talking about it already. Ki gana kya hai bhai? लेकिन डेफिनेटली क्योंकि इतना डिफरेंट सा गाना है इट हैज़ कॉट द अटेंशन ऑफ अ लॉट ऑफ पीपल एंड इन फैक्ट लॉट ऑफ पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट अक्षय कुमार एंड अक्षरा सिंह इस पर्टिकुलर फिल्म में वेलकम टू द जंगल एंड अक्षय सिंह ही इज प्रॉमिसिंग दिस फिल्म टू बी टोटल पैसा वसूल चलिए देखेंगे कैसी रहेगी ये फिल्म थोड़े डिफरेंट किरदार डिफरेंट रोल में है अक्षय कुमार
2: है आपकी नजर में
3: अरे हीरो जो पहले टॉप का हीरो था अब फ्लॉप का हीरो आइटम बॉय बनकर भोजपुरी में घिस रहा है

0: Frisco is growing fast, and the future of our city needs experienced leadership. For more than 40 years, Rod Wilhauer has helped build Frisco, creating jobs, supporting local businesses, improving infrastructure, and investing in the community he calls home. Rod believes in safer neighborhoods, smarter development, strong public services, and protecting the family values that makes Frisco special. This election, your vote matters. Vote Rod Wilhauer for Frisco Mayor, because the next 4 years will define the next 40 for Frisco.
1: डॉक्यूमेंट्स या पार्सल भेजनी है?
2: हाँ।
1: घर रिलोकेट करनी है?
2: हाँ।
1: गाड़ी भी ट्रांसपोर्ट करना है?
2: हाँ भाई हाँ।
1: तो फिर टेंशन क्यों ले रहा है? SFL Worldwide को कॉल कर।
0: डॉक्यूमेंट्स शिपिंग, बॉक्सेस शिपिंग, कंप्लीट डोर टू डोर रिलोकेशन, ऑटो ट्रांसपोर्ट, सिर्फ इंडिया नहीं USA और दुनिया भर में ट्रस्टेड शिपिंग और मूविंग सर्विसेज। SFL Worldwide, हर मूव का परफेक्ट सोल्यूशन। विजिट SFLWorldwide.com और कॉल 1-800-691-2335।
3: ओए होए भाई, एक और नई गाड़ी। सच बता, लॉटरी लगी है क्या?
4: लॉटरी नहीं यार, अच्छी क्रेडिट थी। जीरो डाउन पे गाड़ी ली और सीधे K2 ड्राइव पे लिस्ट कर दी।
3: K2 ड्राइव मतलब?
4: मतलब गाड़ी खुद पैसे कमा रही है, लिस्टिंग से लेके बुकिंग्स, EFW और लवफील्ड एयरपोर्ट पे ड्रॉप ऑफ और पिकअप, मेंटेनेंस सब K2 ड्राइव हैंडल करता है।
3: वाह, मैं भी अपनी पुरानी गाड़ी लिस्ट करा सकता हूँ?
4: 100%
5: नई हो या पुरानी, लिस्ट योर कार एट K2 ड्राइव एंड लेट योर कार अर्न यू मनी। विजिट K2Drive.com और कॉल 214-814-0402 Cato Drive, Dallas's smartest fleet partner.
6: If you hold H-1B, F-1, L-1 or any other non-immigrant visa status and are considering the path to permanent residency, contact the law offices of Seema Mehta. Attorney Seema Mehta and her dedicated team of professionals can help you attain permanent residency through the EB-5 Investor Program. For more information on the EB-5 Investor Visa Program, please call 214-432-2499 or email at info@seemamehtalawfirm.com.
7: Big achievements deserve unforgettable celebrations. Host your kids' graduation party at the Flavor Lounge in Frisco, where great food meets great memories. And if you want to host the party at your place, no worries. You can also order for catering services only. Fresh Tray Catering, custom menus for small or large gatherings. Everything in perfect style. Call now 469-712-3591 or visit theflavorlounge.com. The Flavor Lounge. You celebrate. Flavor hum sambhal lenge.
8: मेरा रिटायरमेंट प्लान रेडी है।
9: प्लान या होप?
8: मतलब?
9: मतलब है प्लान मतलब स्ट्रेटजी, होप मतलब देखते हैं क्या होता है।
8: ओके, तो मेरा वाला होप है।
9: तभी तो लोग वेल्थ टैक्टिक्स से बात करते हैं।
8: क्यों?
9: बिकॉज रिटायरमेंट को होप पे नहीं, स्ट्रेटजी पे प्लान करना पड़ता है।
10: वेल्थ टैक्टिक, रिटायरमेंट प्लानिंग विद क्लैरिटी एंड स्ट्रेटजी। फॉर फ्री कंसल्टेशन कॉल 469-693-2077 और विजिट देम एट thewealthtactic.com।
11: इस शहर को हुआ क्या? कहीं पे अंधविश्वास का काला साया, कहीं पे काला जादू, धुआं धुआं। क्यों सब उलझे हैं पारिवारिक समस्याओं में? कभी पढ़ाई तो कभी नौकरी की चिंता। जिंदगी के रास्ते धुंधले हो गए हों तो वक्त है सही दिशा का।
12: पंडित रामनाथ जी, जिन पे हजारों लोगों ने किया भरोसा। लव प्रॉब्लम, शादी में डिले, करियर ब्लॉक या पारिवारिक तनाव,
10: विजिट psychicramnath.com, कॉल 469-347-4401। प्लेनो, मैकिनी, अर्बिंग और गार्लिन में उपलब्ध।
13: वेलकम सर, सुन रहे हैं इस वक्त आप ड्राइव टाइम, दिस इज पावल भाटिया एंड बात हो रही थी मोटिवेशन की और अलग अलग भांति भांति गानों की। और अब बस जो मैंने गाना प्ले किया था, इट हैड अ वेरी भोजपुरी फील। ये जो नेक्स्ट गाना मैं प्ले करने वाली हूँ वो है हरियाणवी गाना, और ये नया गाना है, न्यू हरियाणवी सॉन्ग कह सकते हैं इसको। और इस सॉन्ग का नाम है किताब, तनु रावत की आवाज़ में आप सुनेंगे। एंड इट्स फीचरिंग मिस्टर दत्त फीचरिंग विपिन फौजी। चलिए ये गाना थोड़ी देर में सुनते हैं, उससे पहले मैं आपको कुछ जानकारी देना चाहती हूँ, वो भी देसी मंडी के बारे में। अटेंशन देसी फूड लवर्स एंड स्मार्ट शॉपर्स, योर नेक्स्ट ग्रोसरी रन जस्ट गॉट अ होल लॉट बेटर एट देसी मंडी इन लुइसविल। कैसे? From fresh vegetables and authentic Indian groceries to halal meat, spices, sweets, snacks and delicious hot food, Desi Mandi brings the taste of home all under one roof. Whether you're shopping for daily essentials or planning a family feast, you'll find quality, variety, and unbeatable desi flavor waiting for you. So grab your shopping list and head to Desi Mandi today. Desi Mandi, where the Desi community shops, eats, and feels at home. With that, here is the Haryanvi song, Kitab.

All right, what a different song, very club feel. अभी आपको बस different जगह दे रही हूँ मैं. एक तरफ से आपने सुना भोजपुरी म्यूजिक घिस घिस घिस, उसके बाद आपने सुना हरियाणवी म्यूजिक किताब, और अब ये क्लब म्यूजिक माशूका फ्रॉम कॉकटेल 2. उससे पहले कवाली भी थी और पुराने गाने भी थे, इन द सेंस 90s के एक दो थे, और देन ऑफ कोर्स द लेटेस्ट सॉन्ग्स वर आल्सो देयर, जिसमें ऑफ कोर्स धुरंधर था, डॉन 2 था, एंड ऑल दैट न्यूज दैट्स गोइंग ऑन अबाउट फरहान अख्तर एंड रणवीर सिंह. वी विश एवरीथिंग कम्स टू अ ग्रेट एडजस्टमेंट बिटवीन द टू, लाइक सलमान खान इज ट्राइंग. आई हैव टू गिव कूडोज टू सलमान खान. And with that, this next song is going out to Vihan. Good luck on your tryout, Vihan. It's a very cool song. And here is something. A lot of people feel that rewards and punishments work. Sometimes you feel that, you know, employees perform better if you give them rewards, or sometimes if you even punish them in some ways. But according to an article, you know what? The secret to high performance isn't reward and punishments, but that unseen intrinsic drive, the drive to do things for their own sake, the drive to do things cause they matter. The song is for Vihan. Go get him, boy.

0: The Fun Asia Network. You are listening to Fun Asia Radio 104.9 FM. KZMP 104.9 FM HD1, Pilot Point, Texas. Simulcasting on KTCG 104.1 FM HD2, Sanger, Texas.
1: Official tax and finance partner, AG Fintax.
0: Powered by Fun Asia Films and Fun Pizza Kitchen. Official injury law partner, the law offices of Omar Khwaja.
2: Frisco is growing fast, and the future of our city needs experienced leadership. For more than 40 years, Rod Willhauer has helped build Frisco, creating jobs, supporting local businesses, improving infrastructure, and investing in the community he calls home. Rod believes in safer neighborhoods, smarter development, strong public services, and protecting the family values that makes Frisco special. This election, your vote matters. Vote Rod Willhauer for Frisco Mayor, because the next 4 years will define the next 40 for Frisco.
3: जिंदगी एक सफर है सुहाना, यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
4: लाइफ हो या हेल्थ, कब क्या हो जाए पता नहीं। 13 साल तक टेक्सास प्राइमरी केयर क्लिनिक ने जीता आपका ट्रस्ट, और अब वही ट्रस्टेड केयर अर्जेंट केयर सर्विसेज के साथ नए काइज़रवे लोकेशन पर। लुनॉक्सी मेडिकल, फाउंडेड बाय डॉक्टर मनदीप आचार्य, एडल्ट और बच्चों के लिए प्राइमरी केयर, अर्जेंट केयर, एक्सरे, सीटी स्कैन, हार्ट टेस्टिंग और मेड स्पा, सब कुछ एक ही रूफ के नीचे। लुनॉक्सी मेडिकल अर्जेंट केयर, ओपन 7 days a week, 8 a.m. to 8 p.m. Walk in anytime. 9191 Kaiser Way, Suite 205, Frisco.
5: कंप्यूटर जी का सवाल ये है, बिजनेस ओनर्स को लोन लेना मुश्किल क्यों लगता है? ऑप्शन ए, स्लो प्रोसेस। ऑप्शन बी, ज्यादा पेपर वर्क। ऑप्शन सी, क्रेडिट स्कोर का कंसर्न। या ऑप्शन डी, लोन डिक्लाइन होने का डर।
6: मैं एक्सपर्ट लाइफलाइन यूज करना चाहूंगा।
5: कंप्यूटर जी, SBA लोन एक्सपर्ट से कनेक्ट किया जाए।
7: SBA लोन एक्सपर्ट्स ने बिजनेस लोन प्रोसेस बहुत ही आसान बना दिया है। नो टैक्स रिटर्न्स नीडेड टू अप्लाई, और क्रेडिट पर हार्ड चेक भी नहीं। रिजल्ट्स सिर्फ 10 मिनट में।
4: बिजनेस लोन ऑप्शंस को क्लैरिटी से समझने के लिए कॉल करें 817-786-3338, 817-786-3338। The SBA लोन एक्सपर्ट्स, फैसला क्लैरिटी के साथ।
8: 2026 में आपकी राशि के लिए धन और सफलता के योग हैं।
9: अरे सुन, ये एस्ट्रोलॉजर बोल रहा है 2026 तेरी राशि वालों के लिए बहुत लकी है।
10: माँ, रील्स पे सब लकी ही होते हैं, जेनेरिक प्रेडिक्शंस सबको थोड़ी हेल्प करती हैं। तो फिर अगर रियल क्लैरिटी चाहिए तो पर्सनलाइज्ड गाइडेंस लो।
11: गाइडेंस की बात हो तो एक ही नाम है, पंडित राम तुलसी, जहां एस्ट्रोलॉजी सिर्फ राशियों तक लिमिटेड नहीं बल्कि आपकी पर्सनल जर्नी के हिसाब से गाइड करता है। करियर हो, स्टडीज, शादी या फ्यूचर प्लानिंग, हर डिसीजन अब होगा क्लियर और कॉन्फिडेंट।
10: कॉल पंडित राम तुलसी एट 9797972654 और विजिट astroramji.com।
12: सुनीता, तुम्हारे बेटे के मार्क्स काफी इम्प्रूव हुए हैं ना रिसेंटली?
13: हाँ, बस थोड़ा राइट गाइडेंस मिल गया है।
12: सेम टीचर, सेम स्कूल, फिर भी मेरा बेटा स्ट्रगल कर रहा है।
13: डिफरेंस स्कूल का नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लैरिटी का होता है।
4: इंट्रोड्यूसिंग लुमिटी लर्निंग सेंटर, फ्रिस्को, प्रॉस्पर और मैकिनी ISD अलाइंड करिकुलम दैट डजंट जस्ट मैच, इट एक्सीड्स। पर्सनलाइज्ड मैथ और इंग्लिश प्लान्स, सर्टिफाइड टीचर्स, कंटीन्यूअस फीडबैक, ऑन डिमांड सपोर्ट।